FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 हो रहे हैं। आरंभ हो रही है हमारी आज की सभा। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 ज्येष्ठ माह की तिथि 5, तदनुसार 26 मई ईस्वी सन 2026।

0: FM के 101.7 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये चायपासा केंद्र है। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6 बजने वाले हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताज़ा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई SOP जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, PPE किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। IPL क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रकेल। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and U.S. Secretary of State Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives, and reflect on recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. The foreign ministers of Australia and Japan arrived in Delhi yesterday. U.S. Secretary of State Marco Rubio had arrived for a four-day visit to India on the 23rd of this month. More from our correspondent.
2: The foreign ministers' meeting this year comes at a time of global uncertainty and West Asia crisis. The Quad, comprising India, the US, Australia and Japan, has emerged as a key grouping largely focusing on peace, security and stability in the Indo-Pacific region. The Quad nations have come together with a commitment to work as a force for global good and to support an open, free and inclusive Indo-Pacific that is prosperous and resilient. Quad has adopted a positive and practical agenda focusing on contemporary issues and challenges such as health security, climate change, critical and emerging technologies and strengthening the maritime domain awareness of regional countries. Suparna Saikia, Akashwani News, Delhi.
0: President Draupadi Murmu will

शिवजी का धनुष कठोर है, उसे सुकुमार श्रीराम किस प्रकार तोड़ पाएंगे। उधर पिता का अटल प्रण। पुष्प वाटिका में गौरी पूजन को जाती सीता मन ही मन विलाप करने लगी, किंतु भगवान के प्रताप का स्मरण होते ही उनके हृदय में हर्ष का संचार हुआ और वो जगत जननी के पूजन में लीन हो गईं। भक्तों को मोह मांगा वर

वाली हे देवी, आपकी सेवा करने से चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। आपके चरणों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। गौरी की प्रतिमा मानो सीता जी के विनय और प्रेम के वशीभूत हो गई। गले में झूलती माला खिसक आई और प्रतिमा मुस्कुराती हुई जान पड़ी। लगा कह रही हो, हे सीते, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नारद जी का वचन पवित्र और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुम्हें अवश्य मिलेगा।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। आज के कलाकार थे अनुराधा पौडवाल और साथ ही संगीत था सतीश भाटिया का। आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:20 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम समर्पण। करते हैं भक्ति गीतों के कार्यक्रम समर्पण की शुरुआत भजन गायक ओम व्यास के स्वर में गाई हुई इस भक्ति रचना के साथ।

गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी और साथियों के स्वरों में ये भक्ति रचना आपने सुनी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना भजन गायक ओम व्यास के स्वर में।

गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी के स्वर में गायी हुई इस भक्ति रचना के साथ ही हमारा आज का ये भक्ति गीतों का कार्यक्रम समर्पण अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे भक्ति गीतों का कार्यक्रम समर्पण। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर।

स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:40 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब हम आपको हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी दे दें।

श्रोताओं, अब हम आपको हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा देने जा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद श्रोताओं, यानी कि सुबह

के 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे एक ही गायक कलाकार सरस्वती मुखर्जी को। आप सभी श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम जोहार चाय बाजार, इस कार्यक्रम का आनंद आप लेंगे सुबह के 7 बजे। सुबह के 8 बजे हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप सुनेंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। सुबह के 8:30 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। लोक गीतों का कार्यक्रम माटी की महक, इस कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे सुबह के 8:40 पर। आज इस कार्यक्रम के तहत हम आपको सुनवाएंगे कुरमाली लोकगीत कलाकार अंगद महतो और उनके साथियों के स्वरों में। कार्यक्रम विविधा, इस कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा सुबह के 9 बजे का। सुबह के 9:30 पर प्रसारित होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। NCERT के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, इस कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे पूर्वाहन के 10 बजे। पूर्वाहन के 10:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को, जो कि प्रसारित किए जाएंगे हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। दोपहर के 1:10 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। यहीं से प्रसारित आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का आनंद आप लेंगे दोपहर के 1:20 पर। दोपहर के 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। दोपहर के 3 बजे आप सुन सकेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को। संध्या 4 बजे प्रसारित होंगे आकाशवाणी रांची से मुख्य समाचार और 4:02 पर आप एक बार फिर से आनंद लेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का। संध्या 5 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रसारित मुख्य समाचार और 5:02 पर आप जानकारी लेंगे हमारे यहां से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। संध्या के 5:05 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के कार्यक्रम गुलदस्ता में हम आपको सुनवाएंगे एक ही संगीतकार के संगीत पर चनचुनिंदा नगमे। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी, इस कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा संध्या के 5:30 का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। संध्या के 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रसारित मुख्य समाचार और संध्या के 6:02 पर आप सुनेंगे बांग्ला कार्यक्रम सात रंग। संध्या के 6:30 पर प्रसारित होगा संथाली कार्यक्रम। संध्या 7 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। यहीं से प्रसारित जिले में आजकल का प्रसारण होगा संध्या 7:10 पर। संध्या के 7:15 पर आप आनंद लेंगे आप सभी श्रोताओं के फरमाइशी खतों पर आधारित हिंदी फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपकी पसंद का। फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम रजनीगंधा को आप सुनेंगे रात्रि के 8 बजे। रात्रि के 8:45 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप सुनेंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। रात्रि के 9:15 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रसारित आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को। रात्रि के 10 बजे आप सुन सकेंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। 10:30 पर प्रसारित होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि के 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। यहीं से प्रसारित अंग्रेजी समाचारों को आप सुनेंगे रात्रि के 11:05 पर। और रात्रि के 11:10 पर श्रोताओं हमारे आज के सभा सपामत की उद्घोषणा होगी। तो श्रोताओं ये थी हमारे यहां से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

आकाशवाणी चायबासा से आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही गायक कलाकार शाश्वती मुखर्जी को।

0: श्रोताओं, सरस्वती मुखर्जी के स्वर में गाए हुए इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है।
1: आज यह दीवार पर्दों की तरह।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। यह आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर।

स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज चुके हैं। वक्त है आप सभी श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत के कार्यक्रम जोहार चायबासा का। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार चायबासा। कार्यक्रम जोहार चायबासा सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में मैं संगीता तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों को मेरा नमस्कार जोहार। आइए श्रोताओं करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत और सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत गायक कलाकार किशोर कुमार के स्वर में फिल्म भूत बांग्ला से।

ईश्वर कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनवा रहे हैं इसी फिल्म से। आवाजें हैं गायक कलाकार नितिन मुकेश और कविता कृष्णमूर्ति की, बोल लिखे हैं अनजान ने और धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

रोजा कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं इसी फिल्म से। आवाजें हैं गायक कलाकार एसपी बालासुब्रमण्यम और चित्रा सिंह की।

फिल्म रोजा का ये गीत आप सुन रहे थे गायक कलाकार एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा सिंह के स्वर में। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज के कार्यक्रम का ये अगला गीत गायक कलाकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में फिल्म देश परदेश से।

0: importante pour... फिल्म सौदागर से ये गीत आपने सुना गायक कलाकार लता मंगेशकर के स्वर में। इस गीत के बाद श्रोताओं आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
4: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
5: तीन नाले बड़ा परिवार जो तो बनमा

0: ᱥᱮᱨᱟ ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟᱜᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱯᱚᱨᱤᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱨᱮ ᱵᱚᱞᱮ ᱥᱚᱵ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱟᱯᱟᱥ ᱠᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱨᱟᱨᱮ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱟᱢᱦᱚᱸ ᱵᱚᱞᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱚᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱟᱞᱮ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱡ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱤᱭᱟᱹ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
1: ᱵᱚᱨᱱᱟ ᱢᱚᱝᱜᱚᱞᱚᱨ ᱮᱠ ᱜᱟᱶ ᱵᱟᱲᱤᱜᱟᱲᱟ ᱟᱲᱠᱤ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱡᱟᱝᱜᱟᱞ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱣᱠᱟ ᱠᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱞᱮ ᱟᱦᱮ ᱵᱚᱞᱮ ᱟᱹᱣᱠᱟ ᱩ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱦᱮᱱᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱟᱦᱮ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱱᱟᱢᱨᱮ ᱥᱩᱱᱮ ᱯᱟᱨᱞᱤ ᱚᱦᱮ ᱪᱟᱞᱛᱮ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱦᱟᱢᱨᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱮᱠᱷᱚᱱ ᱛᱚ ᱛᱚᱢᱤ ᱴᱷᱤᱠ ᱦᱚᱭ ᱦᱮᱱᱟ ᱛᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ
2: ᱱᱟᱢ ᱦᱮ ᱨᱟᱱ ᱵᱟᱞᱟ ᱫᱮᱵᱤ ᱜᱟᱶ ᱵᱟᱨᱮ ᱦᱟᱛᱚ ᱛᱚᱠᱷᱟ ᱛᱟ ᱜᱚᱨ ᱟᱭᱱᱮ ᱦᱟᱢᱨᱮ ᱜᱚᱨᱮ ᱵᱚᱦᱩᱛ ᱫᱩᱠ ᱠᱮ ᱵᱟᱛ ᱦᱮ ᱛᱚ ᱮᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱛ ᱦᱚᱭ ᱡᱟ ᱦᱮ
3: ᱱᱤᱛᱚᱢ ᱫᱚ ᱵᱚᱨᱮᱱ ᱥᱤᱱ ᱛᱟᱢᱥᱟᱭ ᱟᱹᱱᱤᱛᱟ ᱛᱟᱢᱥᱟᱭ ᱵᱷᱩᱨᱩᱯᱟ ᱥᱮᱱᱟᱠᱟᱱᱟ ᱮᱥᱚ ᱫᱩᱠᱩᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱤᱧᱟᱹ ᱡᱟᱯᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱨᱮ ᱛᱟᱯᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱨᱮ ᱚᱣᱟ ᱵᱤᱴᱟᱱ ᱠᱟ
4: ᱟᱹᱱᱤᱭᱟ ᱱᱤᱛᱚᱢ ᱫᱚ ᱵᱩᱢᱵᱟᱭ ᱠᱚᱲᱟ ᱯᱟᱴᱟ ᱱᱤᱛᱚᱢ ᱜᱩᱢᱨᱮ ᱠᱚᱲᱟ ᱟᱹᱱᱤᱭᱟ ᱦᱚᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱫᱚᱢᱲᱤ ᱠᱚᱲᱟ ᱩᱲᱚ ᱯᱟᱴᱟᱱ ᱯᱟᱴᱟ ᱱᱤᱛᱚᱢ ᱠᱤᱛᱢᱟᱭ ᱠᱚᱲᱟ ᱱᱩᱱᱤᱢᱮ ᱩᱲᱤ ᱩᱲᱤ ᱱᱮ ᱵᱟᱜᱮᱭᱟ ᱛᱚᱴ ᱠᱤᱧ ᱱᱩᱱᱟ ᱥᱮ ᱟᱨᱛᱤ ᱠᱚᱞᱚ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱚᱞᱚ ᱮᱢᱤ ᱞᱟᱲᱟᱭ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱛᱟᱢᱟ ᱵᱩᱨᱩᱨᱮᱢ ᱜᱩᱭᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱟᱭ ᱛᱟᱭᱨᱮ ᱠᱟᱠᱟ ᱜᱩᱝ ᱦᱚ ᱩᱱᱤ ᱵᱚᱠᱚ ᱠᱚ ᱠᱟᱠᱚ ᱢᱮᱞ ᱢᱤᱭᱟ
5: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱢᱩᱱᱤ ᱥᱩᱨᱮᱱ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱟᱯᱤᱞᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱮ ᱡᱟ ᱦᱩᱨᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱱᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱡᱤᱛᱟ ᱦᱩᱨᱟ ᱨᱮ ᱢᱤᱱᱟᱹᱭ ᱨᱚ ᱛᱚ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱦᱩᱨᱟ ᱛᱮ ᱥᱮᱥᱮᱱ ᱠᱟᱜᱼᱮ ᱩᱣᱟᱜᱮ ᱵᱤᱴᱟ ᱩᱨᱮ ᱮᱱᱠᱟ ᱟᱞᱮ ᱟᱭᱟ ᱱᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹᱢ ᱟᱯᱤᱞᱮ ᱛᱟᱱᱟ
6: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
7: इस छोटे से विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम जोहर चायबासा में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज के कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म खेल खेल में से। आवाजें हैं गायक कलाकार आशा भोसले और किशोर कुमार की, बोल लिखे हैं गुलशन बावरा ने और धुन है राहुल देव वर्मन की।

अजनबी कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं। इसी फिल्म से आवाजें हैं गायक कलाकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन है राहुल देव बर्मन की।

मुकद्दर का सिकंदर कार्यक्रम के आखिर में सुनवा रहे हैं इस फिल्म से ये गीत, आवाज़ें हैं गायक कलाकार किशोर कुमार की।

0: गायक कलाकार किशोर कुमार के स्वर में गाए हुए फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम जोहार चाय बसा अब यहीं समाप्त होता है। अब इस कार्यक्रम से मुझे यानी संगीता को विदा दें, नमस्कार। आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार चाय बसा। ये आकाशवाणी का चाय बसा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं। वक्त है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली।
1: छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। DGCA ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटोक।
3: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
6: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, PPE किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
3: दिल्ली में CNG के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में CNG की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। NDRF, SDRF, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। की गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
3: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
8: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को

0: ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
2: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
1: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमरीका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61 करोड़ 75 लाख अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स्ड डबल्स में तनीषा क्रस्तो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने

0: भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान देश बंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं, ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और AI में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रुपये बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में दीप को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on a 3-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak declared health emergency by WHO. CNG price hiked by 2 rupees per kg in Delhi. India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of SAF Women's Football Championship at Margao in Goa. And in IPL cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru to take on Gujarat Titans in Qualifier 1 in Dharamshala this evening. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. The foreign ministers of Australia and Japan arrived in Delhi yesterday. US Secretary of State Marco Rubio had arrived for a 4-day visit to India on the 23rd of this month. Our correspondent has filed this report.
3: The foreign ministers' meeting this year comes at a time of global uncertainty and West Asia crisis. The Quad, comprising India, the US, Australia and Japan, has emerged as a key grouping largely focusing on peace, security and stability in the Indo-Pacific region. India is hosting the meeting in its capacity as the current chair of the coalition. The Quad nations have come together with a commitment to work as a force for global good and to support an open, free and inclusive Indo-Pacific that is prosperous and resilient. Quad has adopted a positive and practical agenda focusing on contemporary issues and challenges such as health security, climate change, critical and emerging technologies, and strengthening the maritime domain awareness of regional countries. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
2: President Draupadi Murmu will undertake a 3-day visit to Sikkim beginning today. During her stay in Sikkim, she will attend various events and visit several places. A report.

0: It's about a two-judge bench issuing notice to the Union Ministry of Education, NTA, and others on pleas to replace on or fundamentally restructure the exam body and make it answerable to Parliament. The editorial in the Tribune talks about renewable energy generation growing up by leaps and bounds and accounting for about a quarter of electricity production. Under the headline, "Time to Stop Slipping on Oil," the paper says how renewable energy can make India resilient to oil price shocks. The Indian Express states, live-in rules, polygamy ban as Assam introduces uniform civil code bill. With Trump administration's new policy, 7 lakh green card seekers left U.S. in state of anxiety, writes Economic Times. City swelters, warmest May night in 14 years, says the Times of India. And finally, the Tribune cites Chhattisgarh government turns former Naxal hit areas into tourist hubs, with tribal culture helping the communities develop a sense of ownership while generating income. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on a three-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak declared health emergency by WHO. CNG price hiked by 2 rupees per kg in Delhi. India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of SAF Women's Football Championship. And in IPL cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru to take on Gujarat Titans this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, महिला एवं बाल विकास विभाग विकसित भारत के लक्ष्य पर कर रहा कार्य, महिला सशक्तिकरण और बच्चों के समग्र विकास पर जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिनिवास डिजिटल ऐप का किया शुभारंभ, कहा रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसरों को मिलेगा बढ़ावा। धनबाद सदर अस्पताल के युवा मैत्री केंद्र को राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में देश भर में मिला तीसरा स्थान। राज्य भर में पड़ रही है भीषण गर्मी, राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों में आज और कल लू की चेतावनी। और रांची में आयोजित 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में एक दर्जन से अधिक खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किया क्वालिफाई। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि उनका मंत्रालय वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के एजेंडे पर कार्य कर रहा है। गिरिडीह परिसदन में अपने 3 दिवसीय दौरे के बीच पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मंत्रालय महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर बच्चों के शारीरिक और समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काम कर रहा है।
3: अगर महिला बाल विकास विभाग की हम करें, सबसे पहले तो उन्होंने इसको शुरुआत की महिलाओं का सशक्तिकरण, सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.2 इस कार्यक्रम के माध्यम से कैसे बच्चों को स्वस्थ पोषण मुक्त किया जाए, बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए।
2: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित ऑड्रे हाउस में आदिनिवास डिजिटल ऐप का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह ऐप देश भर के आदिवासी समुदाय को एक मंच पर जोड़ने के साथ साथ उनकी संस्कृति, भाषा, परंपरा और जीवन शैली के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिनिवास ऐप रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसरों को बढ़ावा देगा।
4: एक सोच हमारे सामने फेस हुआ है कि ऐप पूरे दुनिया भर में सभी लोगों को जोड़ पाए और जो विचारों का आदान प्रदान है, हो सकता है कि हम यहाँ कुछ सोच रहे हैं, कहीं किसी दूसरे देश में या किसी राज्य के किसी कोने में कोई एक नौजवान अपनी बात कह रहा हो तो उसे समझने का भी आज एक कनेक्टिविटी भी इसको कह सकते हैं। एक बहुत बड़ा कदम आदिनिवास ऐप के माध्यम से यहाँ शुरू की गई है।
2: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ऐप के संस्थापक नितिन कुजूर और उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए इसे आदिवासी समाज के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज स्कूली शिक्षा, साक्षरता, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कल वित्त और जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया है। राज्यभर में आज से एक महीने तक विशेष महाअभियान चलाकर दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में छापामारी कर नियमों के अनुपालन की जांच की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा बाजार में अनियमितताओं पर रोक लगाना है। रांची के कई वार्डों के पार्षदों ने उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री से मुलाकात कर शहर की मूलभूत समस्याओं, स्वच्छता व्यवस्था तथा सरकारी योजनाओं को लागू करने की चर्चा की। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के समन्वय से आम लोगों तक योजनाओं का लाभ बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सकता है। बैठक में महिला सुरक्षा, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण को लेकर जागरूकता अभियान चलाने पर विशेष जोर दिया गया। उपायुक्त ने सभी पार्षदों को प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। धनबाद के सदर अस्पताल के युवा मैत्री केंद्र को राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में देशभर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह सम्मान युवाओं को स्वास्थ्य संबंधी बेहतर परामर्श और सुविधाएं उपलब्ध कराने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। सदर अस्पताल को किशोर अनुकूल स्वास्थ्य सेवा, साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम, मासिक धर्म स्वच्छता योजना समेत अन्य सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए यह उपलब्धि हासिल हुई है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने यह बात कही।
5: रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
2: जमशेदपुर पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिटी SP ललित मीणा ने बताया कि पुलिस ने इन अपराधियों के पास से चोरी की 5 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं।
6: शमशाद ने जो बाइक चोरी की वो अरुण मुखर्जी को जाकर ये देता था। अब वो उसको किस तरीके से आगे या तो उसको बिकवाता था या फिर कई बार डिसमेंटल करता था, रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर से छेड़छाड़ भी करता था। इस प्रकार की चीजें अभी तक की प्रारंभिक जांच में सामने आई है, हो सकता है कुछ और भी तथ्य सामने आएंगे। तो कुल मिला के 5 मोटरसाइकिल और 2 लोगों को गिरफ्तार किया।
2: राज्य भर में भीषण गर्मी पड़ रही है। पलामू, गढ़वा, चतरा समेत राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में आज और कल लू की चेतावनी जारी की गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मौसम विभाग ने धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा में वज्रपात और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि रांची, खूंटी, गुमला और रामगढ़ में वज्रपात का पूर्वानुमान है। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में एक दर्जन से अधिक खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। एक रिपोर्ट।
7: महिलाओं की 500 मीटर दौड़ में रिलायंस की स्टार एथलीट सीमा ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं पुरुष वर्ग की 500 मीटर दौड़ में कर्नाटक के शिवाजी परशुरामा सबसे आगे रहे। महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में हिमाचल प्रदेश की कुसुम ठाकुर, जबकि पुरुषों में अनिमेश कुजूर जो हमारे स्टार धावक हैं उन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया। पुरुषों की

0: मीटर हर्डल में तमिलनाडु की आर रिताया रामराज ने बाज भी मारी, जबकि महिलाओं के हाई जंप में उत्तर प्रदेश की ख्याति माथुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। पुरुष पोल वॉल्ट में मध्य प्रदेश के देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार ने 5.45 मीटर की ऊंचाई पार कर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। देव कुमार को स्वर्ण और कुलदीप को रजत पदक मिला और दोनों ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया।
1: आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
2: राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने पेट्रोल डीजल में हुई मूल्य वृद्धि की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है 11 दिन में पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये हुआ महंगा। दैनिक भास्कर ने राज्य में बालू की किल्लत की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। हिन्दुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है एनटीए ने गलतियों से नहीं ली कोई सबक। दैनिक जागरण ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार उतारने के निर्णय की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा महिला एवं बाल विकास विभाग विकसित भारत के लक्ष्य पर कर रहा कार्य, महिला सशक्तिकरण और बच्चों के समग्र विकास पर जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिनिवास डिजिटल ऐप का किया शुभारंभ, कहा रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसरों को मिलेगा बढ़ावा। धनबाद सदर अस्पताल के युवा मैत्री केंद्र को राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में देशभर में मिला तीसरा स्थान। राज्यभर में पड़ रही है भीषण गर्मी, राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों में आज और कल लू की चेतावनी। और रांची में आयोजित 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में एक दर्जन से अधिक खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किया क्वालिफाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

ये आकाशवाणी रांची है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर 8:42 मिनट

भाषा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:43 हो रहे हैं। वक्त है लोकगीतों के कार्यक्रम माटी की महक का। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम माटी की महक।

कार्यक्रम माटी की महक सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, लोकगीतों के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कुरमाली लोकगीत, कलाकार अंगद महतो और उनके साथियों के स्वरों में। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये पहला लोकगीत।

आकाशवाणी चाईबासा से आप इस समय आनंद ले रहे हैं लोक गीतों के कार्यक्रम माटी की महक का। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कुरमाली लोकगीत कलाकार अंगद महतो और उनके साथियों के स्वरों में।

कलाकार अंगद महतो और उनके साथियों के स्वरों में गाए हुए इस कुर्माली लोकगीत के साथ ही हमारा आज का ये लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटी की महक।

स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बज चुके हैं। वक्त है कार्यक्रम विविधा का, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

कार्यक्रम विविधा सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों को मेरा यानी कि आपकी रेडियो सखी संगीता का प्यार भरा नमस्कार जोहार।

नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी ये जानते हैं कि हर दिन कार्यक्रम विविधा में हम आपके लिए लेकर हाजिर रहते हैं अनेकों तरह की जानकारियाँ। वो जानकारी आपके व्यक्तिगत जीवन में भी आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाती है। तो श्रोताओं, आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और देते हैं आपको बहुत सारी जानकारियाँ, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ही है आप तक नित नई जानकारी पहुंचाना। ये जानकारियाँ श्रोताओं आपको बहुत तरह से काम आ सकती हैं। आप चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें आपको काम आएगी, आपके व्यक्तिगत जीवन में काम आएगी, आपके शारीरिक शरीर से जुड़ी कोई समस्या हो तो उसमें भी आपकी ये जानकारियाँ काम आएगी। तो आइए अब हम आपके साथ करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। श्रोताओं, हम सभी ये महसूस कर रहे हैं कि इन दिनों गर्मी अपने चरम पे है और अभी ये देखा जा रहा है कि दिन के 10 बजे से पहले ही, यानी कि 9 बजे से ही और शाम के 4 बजे के बाद तक लू बहुत तेज चल रही है, है ना श्रोताओं? काफ़ी तेज लू चल रही है, हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है इसकी वजह से। और अत्यधिक गर्मी के कारण इस समय लू यानी कि तापाघात का खतरा भी बढ़ गया है। समय रहते आप इसके लिए अपने आप को तैयार करें, यानी कि आप लू से बचने की कोशिश करें, और यदि आपको लू लग भी जाए तो समय रहते आप डॉक्टर से मिलें और उसका इलाज कराएं, क्योंकि कभी कभी तापाघात यानी कि लू भी जानलेवा हो सकती है। डॉक्टर्स के मुताबिक लू से बचाव के साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमें इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज हम आपसे साथ इस सभी विषय पर बात करेंगे। तो श्रोताओं, सबसे पहली और जो ज़रूरी बात है कि अगर आपको कोई आवश्यक काम ना हो तो आप घर से बाहर अनावश्यक बिल्कुल भी ना निकलें, और अगर निकलना ही पड़े तो आप ये कोशिश कीजिए कि ठंडे ठंडे मौसम में, यानी कि सुबह के 6 बजे से लेकर 9 बजे तक में आप अपना सारा काम कर लें और उसके बाद आप बाहर ना निकलें, और शाम के 4 बजे के बाद ही आप घर से बाहर निकलें। और अगर आपको घर से बाहर निकलना भी पड़ रहा है श्रोताओं, तो आप ये सुनिश्चित करें कि आपने अपना चेहरा, हाथ, मुंह सबको ढक के रखा हो, और भूखे पेट घर से बाहर आप बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे और हल्का खाना खाएंगे, यानी कि तले भुने भोजन से आप इस समय परहेज करें। ज़्यादा मसालेदार खाना भी इस समय आपको हानि पहुंचा सकता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि आप हल्का खाना खाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थ का इस्तेमाल करेंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे। पेय पदार्थ कहने से हमारा तात्पर्य है कि आप चना, भुने हुए चने का आटा, यानी कि जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में सत्तू कहते हैं, उसे घोल करके पिए। इस समय बाजार में आम, बाजार हमारा आम से पटा पड़ा है, तो आप कच्चे आम से आम का पना बनाएं, उसका इस्तेमाल करें, पुदीने का इस्तेमाल करें, दही, लस्सी, छाछ, तरबूज, जितने भी पानी जाती है फल हैं जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है और विटामिन सी जिसमें ज़्यादा होता है, आप ऐसे फलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। गन्ने का रस पिएं, और अगर आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपने अपने साथ एक पानी की बोतल रखी हो, और हो सके तो उस पानी में आप थोड़ा सा ग्लूकोन डी, ग्लूकोज, या फिर अगर आपके पास इन दोनों में से कुछ भी ना हो तो थोड़ा सा नमक और चीनी ज़रूर डाल लें, जो कि आपके शरीर से नमक चीनी यानी कि ग्लूकोज की मात्रा को बैलेंस करता रहेगा और आपके अंदर ये एनर्जी की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देगा। और क्योंकि इस समय ना श्रोताओं, पसीना बहुत ज़्यादा आता है। एक तरीके से शरीर से पसीना निकलना अच्छा होता है, लेकिन इन दिनों जो गर्मी पड़ रही है इसमें ऐसा पसीना आता है कि हम बिल्कुल नहा ही लेते हैं। तो ऐसे पसीने निकलने से होता क्या है कि हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है और हम अपने आप में
कमज़ोर महसूस करने लग जाते हैं। तो उस कमज़ोरी से बचने के लिए आपको पानी पीते रहना है। पानी में भी आप ग्लूकोज वाला पानी पियेंगे, नारियल पानी पियेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ ही साथ जब आप घर से बाहर निकले तो आप हल्के रंग के कपड़े पहने, गहरे रंग के कपड़े आप बिल्कुल भी ना पहने। गहरे रंग कहने से हमारा तात्पर्य है ब्लू कलर, नेवी ब्लू, ब्लैक, काला और गहरा हरा रंग, बैगनी रंग, ये सब रंग के कपड़े आप पहनने से बचें। और सिंथेटिक कपड़े भी आप बिल्कुल ना पहने, आप सूती और हल्के ढीले कपड़े पहने जिससे कि आपके शरीर में हवा का आवागमन होता रहेगा और आपको अपने आप में अच्छा फील होगा। इसके अलावा आप अपने सर को ढककर रखें, और लड़कियां जो होती हैं वो स्टॉल से, अपने दुपट्टे से औरतें अपने सर को ढक के रखें, जो पुरुष हैं वो तौलिए से अपने सर को या फिर टोपी लगा करके अपने सर को ढककर निकले। और इसके साथ ही साथ आप छतरी का इस्तेमाल भी ज़रूर करें, आँखों पर रंगीन चश्मा लगाएं जिससे कि जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं वो आपको हानि ना पहुंचाए। और हो सके तो आप अपने हाथ और पैर को भी पूरी तरीके से ढक के रखें, क्योंकि जो अभी सूर्य की पराबैंगनी किरणें निकलती हैं ना श्रोताओं, वो आपके हाथ के रंग को काला कर सकती है। इस हाथ के रंग को काला कहने से तात्पर्य हमारा ये है कि आपके हाथों में टैनिंग पड़ जा सकती है और आपकी त्वचा झुलस सकती है। तो आप ऐसे में अपने हाथों को भी ढक करके निकले, और हो सके तो जब आपका पसीना आए ना तो वो आप खुरदरे किसी भी कपड़े से आप अपनी त्वचा को ना रगड़ के

कुछ है, आप किसी हल्के सूती कपड़े से थपथपा के अपने चेहरे को पोंछें। इससे आपका शरीर झुलस जाता है वो खुरचाएगा नहीं, यानी कि आपके शरीर के ऊपर किसी भी तरह के स्क्रैच नहीं पड़ेंगे और आपको आराम लगेगा। और हो सके तो आप बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी ना जाएं, गर्म घुटन भरे कमरे में आप ना रहें, घर की खिड़की दरवाजे खोल कर रखें, घर में कूलर का इस्तेमाल करें, पंखा चलाएं। और जो महिलाएं हमारी हैं उनको भी हम ये कहना चाहेंगे कि आपका काम, आप घर में रहती हैं तो आप दिन भर किचन में लगी रहती हैं, और वैसे भी इन दिनों तो गर्मी छुट्टियां चल रही हैं बहनों, तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी यानी कि दिन के 10-11 बजे से पहले ही अपने किचन का काम सलटा लें, बाहर निकल के आपको जो भी काम करना हो उसे सलटा लें और आप अपने आप को आराम दें और बचें। आप 10 से लेके 4 बजे के टाइम में किचन में गैस के सामने, चूल्हे के सामने काम करने से, क्योंकि इस समय किचन का तापमान भी बहुत ज़्यादा ऊंचा रहता है, तो आप इस समय अपने आप को इन सब चीज़ों से बचाएं। और एक और अहम बात श्रोताओं की, अगर आपको ये थोड़ा भी महसूस हो कि आपको घुटन हो रही है या आपको सांस लेने में थोड़ी भी दिक्कत हो रही है, आपको हाँफ रहे हैं आप सांस लेने में, तो आप इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे, आप तुरंत डॉक्टर से मिलेंगे और पानी पिएंगे, लंबी लंबी सांसें लेंगे और तुरंत आप जाके डॉक्टर से दिखाएंगे। और ऐसे में एक और जो सब जरूरी चीज़ आपको देखी जाती है, ये हम कह सकते हैं कि शुरुआती लक्षण है कि आपके हथेली में, पांव के तलवे में जलन होगी, आपके बदन में जलन होगी, और अगर आपको फीवर आ जाता है तो ये आपके लू लगने के लक्षण हो सकते हैं। और इस दौरान आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आपको घुटन का अनुभव हो सकता है और आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी, तो आपको इसका मतलब ये समझना है कि आपको लू लग गई है। तो ऐसे में घरेलू उपचार भी आपको करना है। घरेलू उपचार कहने से हमारा तात्पर्य है कि जो कच्चे आम बाज़ार में इस समय मिलते हैं उन्हें आप उबाल लें या जला लें, उसे पानी में घोल करके उसका आम पन्ना बनाएं। उस पानी में जो आम का पानी आप बनाएंगे उसमें थोड़ा सा काला नमक, भुना हुआ जीरा, सादा नमक, सेंधा नमक और चीनी डाल करके आप इसका एक तरल पेय पदार्थ बनाएं। और इसमें हो सके तो आप थोड़े से पुदीने के पत्ते भी काट करके या हल्का पीस करके इसमें मिलाएं, तो ये स्वाद में भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगेगा। आप इसे पीने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और आपके शरीर के लिए तो ये रामबाण की तरह इस काम करेगा। तो इसे हम कहते हैं आम के आम, गुठलियों के भी दाम। तो आप आम पना जरूर पिए, और जो आम आप जला के रखते हैं और आपके शरीर में जलन वाली, अगर आपको जलन का एहसास अगर आपको हो रहा है, तो उस आम के छिलके को हटा करके उस आम को आप साबुन की तरह पूरे बदन पर लगा लें और उसे आप 10 मिनट तक यूं ही आपके बदन पर रहने दें, और उसके बाद जाके आप ठंडे पानी से नहा लीजिए। देखिए, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा तरोताज़ा महसूस करेंगे। इसके साथ ही साथ आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पियेंगे, और इस समय आप बचिए चाय और कॉफ़ी के ज़्यादा इस्तेमाल से, क्योंकि इसमें कैफीन होता है जो आपके शरीर के अंदर जाकर गर्मी पैदा करती है, और आपको इस समय अपने आप को गर्माहट से बचाना है। यानी कि जो भी फल, पेय पदार्थ या फिर भोजन जो भी तासीर में ठंडा हो वो आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। और एक बात श्रोताओं, हम ये कहना चाहेंगे कि जो इस समय आप चावल का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और अगर आपका चावल थोड़ा बच भी जाता है ना, तो आप उसे मिट्टी के बर्तन में रख करके उसमें थोड़ा सा दही का पानी डाल करके 5-6 घंटे के लिए रख दीजिए, और फिर उसके बाद उसमें आप कच्चा प्याज, थोड़ा सा आलू का चोखा और हल्का सा तेल में कड़ी पत्ता और हरी मिर्च का छौंका डाल करके अगर आप उसे खाएंगे तो वो स्वाद में बहुत ही लाजवाब आपको लगेगा, और साथ ही साथ आपको शरीर के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं श्रोताओं कि हमने जो भी आज आपके साथ बातें की लू से बचने की, हीट वेव से बचने की, आप इसका ज़रूर ध्यान रखेंगे और अपना ध्यान रखेंगे, क्योंकि याद रखें दोस्तों, सावधानी ही बचाव है। खुद भी स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इस संदेश के साथ श्रोताओं, आइए अब हम आपको सुनवाते हैं कुछ और जरूरी संदेश।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इन जरूरी संदेशों के बाद श्रोताओं, आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम विविधा में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आपकी रेडियो सखी संगीता के साथ। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको एक और जानकारी देते हैं हम आज, वो है काजी नजरुल इस्लाम के बारे में। श्रोताओं, आज काजी नजरुल इस्लाम की जयंती है, यानी कि आज इनका जन्मदिन है। तो आइए इनके बारे में हम आपको संक्षिप्त रूप से बताते हैं। तो श्रोताओं, आज 26 मई का दिन बेहद खास है। आज क्योंकि जयंती है भारतीय उपमहाद्वीप के एक ऐसे महान रचनाकार की, जिन्होंने अपनी कलम से सोए हुए स्वाभिमान को जगा दिया था। जी हाँ श्रोताओं, मैं बात कर रही हूँ काजी नजरुल इस्लाम की जयंती के बारे में। तो आइए इनके बारे में हम आपको संक्षिप्त रूप में जानकारी देते चलते हैं। तो श्रोताओं, इनका जन्म पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के चुरुलिया गांव में हुआ था। इनका परिवार काफ़ी गरीब था। उनके पिता स्थानीय मस्जिद में इमाम हुआ करते थे। बचपन में पिता के निधन के कारण कम उम्र में ही इन्हें परिवार के भरण पोषण के लिए मस्जिद में मुअज्जिन यानी कि अजान देने का काम करना पड़ा। बचपन के कष्टों को झेलते हुए और इनके दुखों को देखते हुए इन्हें दुखों मियाँ के नाम से बुलाया जाने लगा था और लोग उन्हें इस नाम से जानते भी थे। किशोरा अवस्था में ये एक थिएटर से जुड़े और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने 1917 में ब्रिटिश भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी। सेना में बीतते समय के दौरान ही उनका झुकाव साहित्य और संगीत की ओर हुआ और इसके बाद वे कोलकाता में आकर पत्रकारिता में जुड़ गए। विद्रोही कवि की उपाधि इन्हें मिली। 1922 में प्रकाशित उनकी प्रसिद्ध कविता विद्रोही ने उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई और इसी रचना ने उन्हें विद्रोही कवि की पहचान दी, यानी कि इन्हें उपनाम मिला विद्रोही कवि का। उनकी क्रांतिकारी और साम्राज्यवाद विरोधी कविताओं के कारण ब्रिटिश सरकार ने इन्हें जेल भी भेजा। नजरुल संगीत, इनके द्वारा जो लिखा हुआ संगीत है उसे नजरुल गीति या नजरुल संगीत कहा जाता है। इन्होंने कई गीतों में अपना संगीत भी स्वयं ही दिया। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को गहरा संदेश दिया। सन 1942 में ये एक रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आ गए जिससे उनकी याददाश्त और आवाज़ चली गई। सन 1972 में बांग्लादेश सरकार के आमंत्रण पर वे सपरिवार ढाका चले गए और 29 अगस्त सन 1976 को वहीं इनका निधन हो गया। आज इस महानायक की जयंती पर मानवता और क्रांति के इस महान संवाहक को आकाशवाणी चाईबासा परिवार की ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि और हम नमन करते हैं। तो श्रोताओं, अभी हमने आपको जानकारी दी काजी नजरुल इस्लाम के बारे में। अब आइए हम आपका मनोरंजन करते हैं इस गीत के साथ।

तो श्रोताओ, आज 26 मई है और 26 मई के दिन भारतीय राजनीति और सार्वजनिक प्रसारण के इतिहास में भी 26 मई का 2014 का दिन बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस दिन नरेंद्र मोदी, या जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा देश विदेश में सीधा प्रसारण किया गया था। यह पहला मौका था जब सार्क देश के नेताओं की मौजूदगी वाले किसी घरेलू राजनीति समारोह को आकाशवाणी ने इतने व्यापक स्तर पर बहुभाषी कमेंट्री के साथ रेडियो तरंगों के जरिए जन जन तक पहुंचाया था। आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे होने पर आप सभी हमारे प्यारे श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। श्रोताओं, हमारी आकाशवाणी 90 साल का सफ़र तय कर चुकी है और 9 दशकों से आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, बल्कि हर भारतीय के सुख दुख का साथी और हमारी संस्कृति की आवाज़ रहा है। खेत खलिहान से लेकर सरहद तक देश के कोने कोने को एक सूत्र में पिरोने के लिए हम अपने करोड़ों श्रोताओं का सदैव आभारी रहेंगे। विश्वास और सूचना का यह सफ़र आपके बिना अधूरा ही रहता। श्रोताओं, तो आइए रेडियो की इस सुरीली विरासत को यूं ही संजोए रखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। और इसके लिए हम आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि सुनते रहिए आकाशवाणी को, और आकाशवाणी में भी आप सुनते रहिए आकाशवाणी के चायबासा केंद्र को। तो श्रोताओं, इन सभी बातों के साथ ही अब हमारे स्टूडियो की घड़ी ने भी ये इशारा कर दिया है कि कार्यक्रम से विदा लेने का वक्त हो चला है। तो अब इस कार्यक्रम से मुझे, यानी कि आपकी रेडियो सखी संगीता को विदा दें। नमस्कार। तो आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा।

FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:30 हो चुके हैं। वक्त है हमारे आज के अगले कार्यक्रम फिल्म संगीत के कार्यक्रम रस रंजन का। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रस रंजन। कार्यक्रम रसरंजन सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत गायक कलाकार उदित नारायण के स्वर में फिल्म डर से। बोल आनंद बख्शी के हैं, धुन है शिव हरि की।

0: और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

आकाशवाणी चायबासा से आप इस समय आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम रसरंजन का। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म एक पहेली लीला से, आवाज का कलाकार तुलसी कुमार की।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले?
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और?
1: नहीं, पहले बजट बनाओ।

0: कि छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया,
0: जाओ भाई।
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: आकाशवाणी चायबासा से आप इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं फिल्म एक था दिल एक थी धड़कन से ये गीत, गायक कलाकार अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति के स्वरों में।

0: गायक कलाकार अभिजीत भट्टाचार्य और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वरों में गाए हुए फिल्म एक था दिल एक थी धड़कन के इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम रस रंजन अब यहीं समाप्त होता है।
1: तो कौन हो? मैं इतनी देर से हैरानी में हूं।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम रस रंजन, ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाहन के 10 बज चुके हैं। वक्त है NCERT के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। तो लीजिए, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
0: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया।
2: जी।
0: योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
2: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
0: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा
0: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
2: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
0: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
0: जी मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
2: बिल्कुल।
0: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
2: अजीत जी आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
0: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
2: जी श्रोताओ, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
0: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
2: बिल्कुल सही। जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
0: विमलेश जी आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा।
2: जी।
0: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
2: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
0: विमलेश जी एक और बेहद रोचक बात मैंने फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
2: जी बिल्कुल सही। और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
2: जी
0: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
2: इस समय शहरों, गाँवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
0: इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
2: जी
0: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
2: जी दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं।
0: जी
2: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं, जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
0: और दूसरा व्यंजन है डांगो। जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
2: जी,
0: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
2: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही हैं। इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसकी पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
0: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं।
2: जी,
0: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं, कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
2: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है।
0: जी,
2: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
0: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
2: जी,
0: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
2: जी बिल्कुल। तो श्रोताओ, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
2: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की, सुनते हैं कार्यक्रम।
0: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू। सिंगिंग द पोएम श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।
3: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ जू?
4: अ जू?
3: यस, अ जू।
4: Oh yes.
3: All right. So tell me, what do you see in a zoo?
4: Tiger. Lion.
3: Yes.
4: Monkey. Birds of different kind.
3: Very nice.
4: Camel. Giraffe. And so on.
3: Oh wow. So, here is a child like you. Who wants to go to a zoo? Now, let's recite this poem. And you all repeat after me. Ready?
4: Ready!

0: Dear friends, you have just heard the sounds of different animals in this song. Now, listen to the sounds again and try to identify them by yourself. This was elephant. This was monkey. And this was tiger. This was polar bear. And this was skunk. And this was kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
0: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,
2: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
3: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
4: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है।
5: बिल्कुल ठीक
4: है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
6: वीर जोरावर की
7: जय।
6: वीर जोरावर की
7: जय।
3: राजा जोरावर सिंह, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जीरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
8: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
3: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर

0: Gone.
1: But how? तुम चारों तरफ से गिर चुके हो.
0: ये क्या है?
1: You are under arrest.
0: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ. आओ सामने.
1: बाउट हो गई तुम्हारी बहादुरी. फौजियो,
2: हुजूर,
1: बांधो इस बच्चे को जंजीर से.
2: जी.
3: छोड़ो मुझे. हाथ मत लगाओ मुझे. मुझसे हाथ हटाओ. मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से.
1: शाबाश, शाबाश, सारा जंग. मैं खुश हुआ. तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा
2: हुजूर.
0: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है. एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है. लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है. लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था.
1: फौजियो, ले चलो इसको.
3: छोड़ो मुझे. छोड़ो मुझे.
4: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए. उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया. उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए. तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े. और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों ना गंवानी पड़े.
5: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया. लेकिन वो जितना ही सख्त था, उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था. उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी. वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे.
6: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी, और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा.
0: अप्पा, ये नहीं हो सकता.
6: देखो देखो, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा.
0: ये नामुमकिन है.
6: Why?
0: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते. हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे. अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं. हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है.
6: तो नहीं मानोगे. देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें. ये सजा.
0: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा. हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए. हमने जो किया हमें उस पर गर्व है. कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है. इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा. हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं.
6: एक्चुअली यू आर अ फूल.
4: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा. बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई.
5: काला पानी की सजा?
4: हाँ, काला पानी की सजा. भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी.
5: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे.
4: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली.
0: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं. भारत माँ का बहादुर बेटा हूं. इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा. फिर मैं तो राजा हूं.
5: छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
2: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
8: अभी आप सुन रहे थे NCERT के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के चायपासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाह्न के 10:30 हो चुके हैं। हमारा आज का अगला प्रसारण आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का होगा, जो कि प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। तो आइए, इन कार्यक्रमों के लिए हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र। कृपया प्रतीक्षा करें।
9: उनके विचार जैसे उत्पन्न होंगे, उसके कर्म भी वैसे ही होंगे। इसलिए हमें अपने कर्मों का, अपने व्यवहार पर खास ध्यान रखना है, ताकि हमारे कारण किसी और को कोई भी तकलीफ ना हो, बल्कि हमारे कारण अगर किसी के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत होगी। और कहते हैं ना, जब तक जिंदगी पटरी पर दौड़ती है तो हमें लगता है हम कुशल चालक हैं, लेकिन जब हमारी जिंदगी पटरी से उतरती है तो एहसास होता है कि जिंदगी कोई और चला रहा है, और हमें इस बात का एहसास हमेशा होता है।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: ಸ್ವಯಂ ಈ ಕಟ್ಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: जी हाँ, हमारी भारतीय सेना हर संघर्ष में हमेशा जीत हासिल करने की उम्मीद और उसे बनाए रखने की ताकत हमारी भारतीय सेना में. इसीलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि कभी ये मत सोचो कि संघर्ष खत्म हो जाएंगे. ये जीवन जब तक रहेगा संघर्ष हर रोज रूप बदल बदल कर आएंगे. इसलिए अच्छे परिणाम के लिए मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है और हर दिन अपने जिंदगी को एक नया ख्वाब दो. चाहे पूरा ना हो पर आवाज़ तो दो. एक पूरे हो जाएंगे सारे ख्वाब तुम्हारे, सिर्फ एक नई शुरुआत तो दो. जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो. और इतनी अच्छी हौसला अफजाई वाली बात हम आपसे जब करते हैं तो हमें लगता है हर किसी के ज़िंदगी में एक नए मुकाम आती है और उसे सफलता मिलती है ज़रूर. किसी भी काम को करने के लिए किसी का साथ ज़रूरी होता है ताकि मिल बांट कर उसे हम पूरा कर सकें. और ये हो सकता है कि उसमें कोई परेशानी आए, लेकिन हंसते गाते उस परेशानियों को हमें दूर करना है. और कहते हैं ना, इस संसार में साथ रहते हैं हम क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं. अपनी भागीदारी तो हम हमेशा देना ही चाहते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन औरों का भी साथ उसमें उसी दम से होना चाहिए. और हम चाहते हैं कि अगर अपने ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए हम एक दूसरे का साथ लेते हैं और देते हैं, तो फिर इस दुनिया की दी हुई प्यारी सी नेमत पर्यावरण को, अपने आसपास की दुनिया को संवारने में भी हम अपना साथ क्यों ना दें. क्योंकि इस पर्यावरण के संरक्षण में जितनी भागीदारी हम देंगे उतना ही इसका सुख हमें मिलेगा. और मौसम, प्रकृति, इन सभी बातों को हम अगर अपने ज़िंदगी से जोड़ लेते हैं, यानी उसे दरकिनार नहीं करते हैं और अपने काम से काम रखते हैं, तो फिर इसका नतीजा आज हम सबके सामने है. इतनी तेज़ गर्मी, इतनी तेज़ बारिश और हमेशा हर मौसम का बदलाव हम झेलते हैं. तो इसमें से बस एक ही काम हमें करना है. हम अगर लाख लोगों के बीच में अपनी बातों को रखते हैं तो उसमें से ज़रूर कोई 10 आदमी ऐसे मिलेंगे जो प्रकृति को बचाने से उन्हें सरोकार होगा. और हम सभी की पूर्ण भागीदारी नहीं भी होती है, लेकिन थोड़ी तो भागीदारी हम अपनी निभाएं इस पर्यावरण को बचाने के लिए. इस प्रकृति में जो प्यारे सुंदर पेड़ और फूल पौधे हमारे भगवान ने हमें दिए हैं उसे बचाने के लिए, तो फिर आने वाले दिन में थोड़े से कष्ट कम हो सकते हैं. और मौसम, इसका तो कोई अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता. देखिए ना, कभी इतनी तेज़ गर्मी होती है और अचानक आकाश में इतने बादल छाए रहते हैं कि आशाएं उगने लगती है कि थोड़ी सी बारिश हो जाए और मौसम थोड़ा सा बदल जाए. लेकिन

ही देर में लुका छिपी का खेल होकर धूप फिर से अपने पंख फैलाने लगता है और ठंडी हवा का जो आनंद है वो हमें नहीं मिल पाता है। और यही हम कहते हैं कि जानकारी जैसी है मई के अंत तक लू चलने की संभावना है। शहर के स्तर तक अगले 5 से 7 दिनों में मौसम का अनुमान और चेतावनी जारी कर रहा है, जिससे निपटने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर की आपदा प्रबंधन एजेंसियां हीट एक्शन प्लान के तहत जरूरी कदम भी उठा रही है ताकि लोग लू की चपेट में ना आए। और अगर कोई परेशानी होती है तो फिर मॉनसून में भी दिखेगा अलनीनो का असर। ये मई की लू है, इसका कारण अलनीनो नहीं है, लेकिन अलनीनो एक वैश्विक जलवायु पैटर्न है जिसका सीधा असर दुनिया भर के मौसम पर पड़ता है। अलनीनो एक न्यूट्रल कंडीशन है। IMD का अनुमान है कि मॉनसून सीजन यानी जून, जुलाई और अगस्त में अलनीनो डेवलप हो सकता है और इसका संबंध भीषण गर्मी और कमजोर मॉनसून से होता है। और समय समय पर रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किए जाते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम अपने श्रोताओं को देना चाहते हैं कि ऐसे क्षेत्र जिनमें रेड कैटेगरी की चेतावनी जारी होती है वहां सभी उम्र के लोगों में लू लगने और हीट स्ट्रोक होने की आशंका बढ़ सकती है। संवेदनशील लोगों को ज्यादा सतर्क रहना होता है। और ऑरेंज अलर्ट का मतलब है भीषण गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ने वाला है, जो विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए जब भी रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट की जानकारी दी जाए तो इन लोगों को सचेत रहना चाहिए। और इसके लिए बस गर्मी से बचने का एक ही उपाय है, हाइड्रेटेड रहें, पानी पीते रहें, जहां भी खड़े रहें छांव में रहें, यानी सीधी धूप से बचे अपने सर पर छाता रखें, मोटे तौलिए, सूती तौलिए को रख सकते हैं और हो सके तो दोपहर 12 से 4 बजे तक बाहर जाने से बचें। अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो बाहर जाने से बचना चाहिए। और अगर ही हल्के ढीले और सूती वस्त्र आप पहनते हैं तो उससे भी पसीने अगर शरीर से सूख जाते हैं तो परेशानी कम होगी। और समय हो तो घर पर है तो पंखे और कूलर का उपयोग करें। अपने घर को ठंडा रखने का हर तरह से उपाय आप कर सकते हैं। और अगर थोड़ी भी परेशानी होती है तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। लेकिन हम ये कहेंगे कि हमारे घर को ठंडा रखना ही नहीं, अपने आसपास को भी थोड़ा ठंडा रखने की कोशिश कीजिए। और ये कोशिश तभी हो सकती है जब हम अपने आसपास हरियाली बिखेरेंगे, हरे भरे पौधों को लगाएंगे ताकि उनसे जो हवा आएगी वो हमें ठंडी हवा दे सकती है और परेशानी से हम थोड़ा सा बच सकते हैं। और जहाँ तक बात होती है परेशानी की और गर्मी की, तो हम ये भी बता दें अपने श्रोताओं को कि कई जिलों में आंधी बारिश के भी आसार हैं आज और कल रांची समेत। इसलिए थोड़ा सा हमें इतना सुनने के बाद तो थोड़ा सुकून तो मिलता ही है। और येलो अलर्ट भी है 27 मई को गढ़वा, पलामू, चतरा में, और जहां की लू का प्रकोप रह सकता है। और 25 मई को रांची में अधिकतम तापमान रहा 39.8 डिग्री सेल्सियस और 24 घंटों में 8 डिग्री सेल्सियस की जो वृद्धि हुई है। और मेदिनीनगर में 45.7 डिग्री सेल्सियस है, जो 24 घंटे में 1.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होकर बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि हम अपने आसपास जो गर्मी बढ़ रही है और जहाँ जहाँ पर पानी की किल्लत हो रही है, इन सभी का समाधान अगर ढूंढे जितना जल्दी हो सके तो फिर इस गर्मी की जो मौसम का जो परेशानी है, जितनी भी परेशानियाँ हैं, उससे हम बच सकते हैं। और थोड़ा हो सके अगर आपके यहाँ कुआं है या फिर हैंडपम्प है जहाँ पर पानी अच्छी तरह से आता है, तो अपने आसपास जिन जरूरतमंदों को भी थोड़ी पानी की दे सकते हैं, उन्हें दान कर सकते हैं या फिर उन्हें जरूरत को उनको पूरा कर सकते हैं, ताकि इस गर्मी में अगर आप जल दान करते हैं तो ये आपके लिए भी पुण्य का भी काम होगा और औरों के लिए ये बहुत ही जीवन दान हो जाएगा। इसलिए हम अपने जिंदगी में बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, बहुत कुछ दान देते हैं। अगर जरूरत हो सके तो गरीब लोगों के बीच में, मजदूरों के बीच में
पानी की बोतलें भी आप बांट सकते हैं, जिससे उन्हें तो सुकून मिलेगा ही,

श्रोताओं, अपने जिंदगी का नाम तो चलने का है, अगर हम सही में रुक जाएं तो फिर ये जिंदगी बेकार है। और लेकिन ये जिंदगी को चलाने के लिए जो रेलगाड़ी होती है ना, वो भी अगर रुक जाए तो हमारी जिंदगी थम जाती है। जी हाँ, लेकिन हम ये भी जानकारी आपको देते हैं कि जून माह में हटिया और रांची स्टेशन से रवाना होने वाली या उनसे होकर गुजरने वाली 20 ट्रेनें रद्द रहेंगी, जिससे यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में चल रहे विकास कार्यों के कारण रेलवे प्रशासन ने 10 से 15 जून के बीच 14 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा रांची मंडल में विकास कार्य के कारण 4 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी, जबकि चक्रधरपुर मंडल के अंतर्गत राउरकेला क्षेत्र में चल रहे कार्य की वजह से 1 जोड़ी ट्रेनें रद्द की गई हैं। इससे खामियाजा भुगतना पड़ेगा हम सभी अधिक यात्रियों को, जो 40,000 से ज़्यादा होंगे। और बहुत सारी ट्रेनें हैं जो रद्द हो गई हैं, और कई ट्रेनों लंबी दूरी की जो ट्रेन हैं उनमें नो रूम रिग्रेट की स्थिति है, कंफर्म सीट भी उनके लिए नहीं मिल रही है। तो बहुत सारी जो परेशानियां हैं इन्हीं विकास कार्यों के कारण है। इसलिए आप इसकी पूरी जानकारी कर लें, तभी ट्रेन के टिकट कटाएं या फिर अपनी यात्रा को अंजाम दें। और इसके लिए आपको गर्मी का मौसम जो है, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी रखकर ही कहीं यात्रा करनी चाहिए, तभी आप आनंद ले सकते हैं अपनी यात्रा का, अपनी छुट्टियों का। और ये भी एक अच्छी सी जानकारी है कि झारखंड डाक परिमंडल और JSLPS की बैठक में आम की बेहतर मार्केटिंग और परिवहन व्यवस्था पर चर्चा हुई, और समझौते में के तहत डाक विभाग अपनी लॉजिस्टिक सेवाओं से झारखंड के आम को राज्य और देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने में मदद करेगा। यानी कि यहाँ के जो रसीले और बहुत ही प्रसिद्ध आम है, वो अब कहीं भी देश में आप इसे पा सकते हैं। हमारी डाक विभाग के द्वारा इसकी जानकारी आपको हम दिए हैं, ताकि इस मौसम में आप आम का आनंद उठा सकें। एक और अच्छी जानकारी है सेहत के लिए। डेंटिस्ट की कुर्सी, जहाँ पर सुइयां और दांतों को छेद करने वाले ड्रिल मशीन की आवाज़, इससे हर कोई बचना चाहता है, लेकिन दांतों के इलाज का तरीका बदलने वाला है अब। ऐसा अब नैनो रोबोट के कारण हुआ है, जो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में रोबोट तैयार किए गए हैं। वो मुंह के अंदर जाकर बिना किसी दर्द के खराब दांतों की खुद मरम्मत कर देंगे। और वैज्ञानिकों का कहना है कि नैनो का मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। ये रोबोट इतने बारीक हैं कि इन्हें केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। इन सूक्ष्म रोबोट को इस तरह तैयार किया जाता है कि ये दांतों के अंदरूनी हिस्से में जाकर उस खराब हिस्से को ठीक कर सकते हैं। और जब दांतों में कीड़ा या कैविटी लगता है, तो डॉक्टर इसे साफ करके उसमें फिलिंग भरते हैं, लेकिन ये नैनो रोबोट दांत के भीतर जाकर प्राकृतिक रूप से दांत की ऊपरी परत एनामेल और डेंटिन को दोबारा से बनाने में मदद करेंगे। और दांतों में झंझनाहट जब होती है, दांतों की परत घिस जाती है, बारीक नसें खुल जाती हैं, ये सारे काम ये नैनो रोबोट करेंगे।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर कर लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
6: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
7: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूं?
7: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
7: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
8: श्रोताओं, इतनी सारी जानकारियां हम आपको देते हैं और उसके साथ ही साथ कुछ मनोरंजन भी होता है, लेकिन मनोरंजन हम करेंगे थोड़ी सी और जानकारी के बाद। मौसम कितनी भी करवटें बदले, हमारा जीवन तो चलेगा और चलना भी चाहिए, खुशियों के साथ चलनी चाहिए, है ना। और हम जब अपने पूर्वजों के साथ रहते थे, हमारे परिवार के साथ रहते थे, तो उनका यही कहना होता था कि अपने परिवार को जोड़ कर रखें, और यही उनकी शिक्षा होती थी। तो इनका अनुसरण हम सभी को करना चाहिए और हमें कभी भी पीछे की तरफ मुड़कर नहीं देखना चाहिए। बस ये देखना चाहिए कि पीछे हमारे हुआ क्या था, और जो अच्छा हुआ था उसका अनुसरण हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे इतिहास में बना रहता है। तो चलिए अब इतिहास के पन्ने हम भी पलटते हैं कि आज के दिन यानी 26 मई को क्या क्या हुआ था। आज के दिन राष्ट्रीय क्षमा दिवस मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, स्वदेशी आदिवासियों और टोरिस स्ट्रेट आइलैंडर्स के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय के लिए क्षमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्विट्जरलैंड में 26 मई को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में विज्ञान दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। जॉर्जिया और गुयाना में 26 मई को उनके राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज ही के दिन अमेरिका में कई जगहों पर यह दिवस मनाया जाता है, जहां सैली राइड दिवस, राष्ट्रीय कागजी हवाई जहाज दिवस भी मनाया जाता है। यानी कि जो हमारे पुराने यादें हैं उन्हें ताज़ा किया जाता है आज के दिन को मनाकर। हम ये भी बता दें कि भारत की राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं अरुणा रॉय। इन्होंने 1968 से 1975 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्य किया और इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन 1946 ईस्वी में। इनके योगदान के लिए उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार और मेवाड़ सेवाश्री आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। वे राजस्थान के निर्धन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयास के लिए विशेष रूप से जानी जाती हैं। भारत में सूचना का अधिकार लागू करने के लिए 6 अप्रैल 1995 को अजमेर के ब्यावर में आंदोलन की शुरुआत की। उनके प्रयत्न और योगदान उल्लेखनीय हैं। वे मेवाड़ के राजसमंद जिले में स्थित देवडोंगरी गांव में संपूर्ण देश में संचालित मजदूर किसान शक्ति संगठन के संस्थापिका और अध्यक्ष भी हैं। इनके जन्मदिन पर हम इन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। और आज के दिन ही भारत में प्रसिद्ध मूर्तिकार राम किंकर बजाज का जन्म हुआ था 1906 ईस्वी में। 1912 में प्रसिद्ध क्रांतिकारी में से एक हैं छगन राज चौपासनी, इनका जन्म हुआ था। 1926 में लेबनान ने संविधान बनाया था। दक्षिण भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध हास्य अभिनेत्री मनोरमा का जन्म हुआ था 1937 में। अपोलो 10 अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर उतरा था 1969 में। बीजिंग ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार का जन्म 1983 ईस्वी में हुआ था और हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार, लेखक, समीक्षक और साहित्यकार वर्मा का निधन हुआ था 1986 ईस्वी में। इसरो ने भारत, जर्मनी और दक्षिण कोरिया के 3 उपग्रहों की अंतरिक्ष कक्षा में स्थापना की आज ही के दिन 1999 में, और आज ही के दिन 2006 में विज्ञान जगत में एक शोध के अनुसार एड्स के विषाणु कैमरून में पाए जाने वाले

कैरेबियन में पता चला था इसका। 1969 में नासा का एक महत्वपूर्ण मिशन था अपोलो 10 मिशन पृथ्वी पर वापसी का, जो चांद पर इंसानियत को उतारने की अंतिम तैयारी का हिस्सा था। यह मिशन 18 मई 1969 को लॉन्च हुआ और 26 मई यानी आज ही के दिन 1969 को पृथ्वी पर वापस लौटा। 8 दिन के इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की कक्षा में विक्रेता लूनर पैनर की झलकियां थी, ताकि अगले मिशन अपोलो 11 को चांद पर उतारा जा सके और अपोलो 10 का चंद्रमा की सतह से केवल 15.6 किलोमीटर की दूरी तक गया था, जो अब तक की सबसे करीबी उड़ान थी। इस मिशन में 3 क्रू मेंबर थे, थॉमस स्टैनफोर्ड कमांडर थे, जॉन यंग और यूजीन सरनान। ये यान धरती पर प्रशांत महासागर में उतरा था और 1999 में इसरो ने एक साथ 3 सैटेलाइट लॉन्च की थी। आज ही के दिन पहली बार एक साथ 3 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे, इनमें से भारत, कोरिया और जर्मनी के एक एक उपग्रह थे। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्टेशन से सुबह 11:52 पर 294 टन वजनी PSLV ने भारी उड़ान भरी और प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे, वैलेरी खूंटी श्री हरिकोटा लॉन्च स्टेशन पर उपस्थित थे। इसरो ने पहली बार किसी दूसरे देश के तहत कॉमर्शियल एग्रीमेंट लॉन्च किया और इस चुनौती के लिए भारत की ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आज ही के दिन 1946 में भारतीय अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर अरुण नेत्रावली का जन्म हुआ था 1946 में, जिन्हें HDTV सहित डिजिटल प्रौद्योगिकी में योगदान का श्रेय दिया गया था। 1961 में भारतीय निर्देशक तरसेम सिंह का जन्म हुआ था, जिन्होंने फिल्मों, संगीत वीडियो और विज्ञापनों में अपने योगदान दिए थे। भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता दिलीप जोशी का जन्म भी आज ही के दिन 1968 में हुआ था। हमारे भारतीय राजनेता कलिकेश नारायण सिंह देव का भी जन्म आज ही के दिन 1974 में हुआ था, जो बोलनगीर से लोकसभा में सांसद थे और 2013 को 26 मई को मुंबई इंडियंस ने इंडियन 2020 प्रीमियर लीग जीतने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था। ये थे हमारे आज के इतिहास के बारे में, और इतनी सारी जानकारियां होती है, लेकिन इसमें से कुछ कुछ अच्छी अच्छी जानकारियां हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, और उसके बाद हम बहुत अच्छी जानकारी लेते हैं तो अपने मन को थोड़ा सुकून भी देते हैं प्यारे से संगीत के साथ।

श्रोताओं, जब बातें होती हैं ना तो सबसे पहले अपने ज़िंदगी की बातें होती हैं, खुद की बातें होती हैं, और जब खुद की बातें होती हैं तो हमारे साथ हमारा पूरा परिवार जुड़ा है। और कोई भी मौसम हो, कोई भी समय हो, किसी भी परिस्थिति में हम अपने साथ में सभी को लेकर चलते हैं, क्योंकि परिस्थितियां कभी हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हमारी मानसिक स्थिति हमेशा हमारे हाथ में होती है। हम अपने जीवन के किसी विशेष पहलू को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने परिवार को साथ लेकर चलते हैं। इसके लिए कई सारी बातें होती हैं जो आजकल हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अपने जीवन में सकारात्मकता लाना है तो सिर्फ ये सोचने से नहीं होता, अपने रोजमर्रा की आदतों में इसे ढालना पड़ता है। जैसे अपनों की शिकायत करना हमेशा छोड़िए, और अगर हम अपनों की अच्छी चीज़ों को देखते हैं बल्कि शिकायत नहीं करते हैं तो रिश्ता मजबूत होता है और आपसी प्यार बढ़ता है। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, और बात बात में जो कमियां निकालते हैं उनसे आप दूरी बना सकते हैं। खुद से बात करते समय कभी भी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें। मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये सीखने की कोशिश करूंगा, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, इस तरह की बातें अपने अंदर ना भरें। अपने अंदर ब्रह्मांड की जितनी सारी शक्तियां हैं उन्हें धन्यवाद देकर आप हमेशा ये कहें कि मैं ये कर सकता हूँ, इसे करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, इस तरह की बातें अपने अंदर आप भरिए। असफलता एक सीख होती है, और इसका मतलब ये नहीं कि आप अयोग्य होते हैं, इसका सीधा मतलब होता है आपकी कोशिश में कुछ कमी है, इसे आप सुधार लीजिए और सीधे मंजिल की ओर बढ़ने की तैयारी कर सकते हैं। और एक और बात होती है कल की चिंता। कल की चिंता में आज का सुकून न खोएं। आज का जो पल है वो हमेशा सुपल होता है, बहुत ही खुशगवार होता है। इस आज के वर्तमान के पल को जीने के लिए अपने आप को थोड़ा सा बदलिए, और अपनी तुलना दूसरों से कभी ना कीजिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी की जो यात्रा है इसे हम खुद ही निभाएंगे, खुद ही इसे पूरा करेंगे। तो दूसरे के जीवन की परिस्थिति, दूसरे की मानसिक स्थिति अलग होती है, उनसे अपनी बराबरी ना करें, अपनी तुलना ना करें, औरों के साथ बराबरी ना करें, जिससे हमारे दिल को ठेस नहीं पहुँचेगी और हमारे जीवन में सकारात्मक पहलू आएंगे। और ये प्रकृति का मतलब है बदलाव। समय हमेशा एक जैसा नहीं होता, आज बुरा है तो कल ये गुजर के अच्छा भी हो जाएगा। इसीलिए अपने जीवन को सही दिशा देने, मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है सकारात्मक सोच, जो हमें सही मार्गदर्शन दिखाती है अपने जीवन को चलने के लिए और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा देती है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी जानकारी हम आपको क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आए दिन हम हर तरफ समाचारों में भी ये पढ़ते हैं कि मानसिक तनाव के कारण, कुछ अपने नियंत्रण को खो देने के कारण हम किसी के लिए हानि पहुंचाते हैं, किसी की ज़िंदगी ले लेते हैं, या फिर किसी को कुछ बातें ऐसी कह देते हैं जिनसे उन्हें दुख हो जाता है और हमारे रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। तो इन सभी बातों को एक तरफ लाने का मतलब ये होता है कि हम परिस्थितियों में भी अपने आप को, अपने मानसिक स्थिति को इतना संभाल कर रखें कि हमें तनाव ही ना हो। तनाव होने से कई सारी परेशानियां होती हैं, कितनी बीमारियां होती हैं, और हम खुद तो परेशान होते हैं औरों को भी परेशान करते हैं। और अपने ज़िंदगी में जब खुशियां लाने की जब हम बातें करते हैं तो बस एक ही बात होना चाहिए, आपको मन करे आप कहीं घूम आए, और घूमने के लिए अभी का मौसम सही नहीं है। घूमने की बात तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन सही इसलिए नहीं है क्योंकि मौसम सही नहीं है। गर्मियां छुट्टी हैं, गर्मी की छुट्टियों में हम घूमने जाने की बातें हमेशा करते हैं, लेकिन सभी बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा समय है। हो सकता है प्रकृति ने हमें ये समय दिया है कि
अच्छी अच्छी बातें अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ में साझा करें, उनसे कुछ बातें करें, उनके जीवन में जो भी बदलाव हो रहे हैं, जो तनाव है, उसे समेटने के लिए, उसे बांटने के लिए, उसे हल करने के लिए बहुत ही अच्छा समय मिला है। आप गर्मी के मौसम में एक जगह, एक रूम में ठंडक बनाकर अपने अपने दिमाग को ठंडक में लाइए और परिवार में इतना प्यार भर दीजिए कि फिर आने वाला समय हमें खुशगवार लगे और उसके बाद लगे कि बस कितनी प्यारी है ये।

श्रोताओं, हमने बातें तो बहुत सारी की और अपने ज़िंदगी को संवारने की कोशिश अब आप और हम मिलकर ही कर सकते हैं। और अपने चलते चलते अब अपने श्रोताओं से बस यही कहना चाहेंगे कि अच्छे मित्र, अच्छे रिश्तेदार और अच्छे विचार जिसके पास होते हैं, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। बस ज़रूरत है उन्हें समेट कर रखने की। इसी के साथ अब सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और इस मौसम का आनंद लेते रहें। और हमें दीजिए इजाज़त, यानी अपनी दोस्त उषा जायसवाल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जुहार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। चलिए अगला कार्यक्रम हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद। आप अपने फरमाइशी गीत इस कार्यक्रम में सुनेंगे, तो चलिए सबसे पहले आपको बेमिसाल फिल्म का ये प्यारा सा नगमा सुनवाते हैं। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं चेपाकला बड़का गांव से श्री बाबूलाल ठाकुर, श्रीमती साबिया ठाकुर, तिलेश्वरी श्री भरत ठाकुर, मंजू संतोष, विकास कुमार, प्रभात कुमार, जीतेश आदर्श, अनुराधा रुक्मिणी और प्रियंका दीपिका, तेनुघाट बोकारो से भगवान प्रसाद ठाकुर और उनका पूरा परिवार, गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में बेमिसाल फिल्म का ये प्यारा सनदवा। और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं आप ही के पसंद का अगला गीत छाया फिल्म से। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक। लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वली उल्लाह, डबुल उल्लाह और परवीन आसमा। बुलंदशहर से बदरुवली, फर्जुवली और फर्जीवली अंसारी।

यशुदास बनश्री गुप्ता और हेमलता की आवाज में अभी आप ये गीत सुन रहे थे, दुल्हन वही जो पिया मन भाए फिल्म का। और अब आइए अगला गीत आप ही के पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं। लोफर फिल्म का ये गीत है, आवाज है लता मंगेशकर की। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं कोल सिटी बरकाखाना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम और मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी, ग्राम पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम, महसूल सीतामढ़ी से हैं अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अमन, ममता रानी और पूनम कुमारी शर्मा। आप सभी हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापाड़ा ततरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा। लीजिए अपनी पसंद का ये गीत सुनिए।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: Medicina!
1: Hey girls!
2: Hi! Congratulations!
1: आज तो पार्टी चाहिए.
3: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे.
4: आइडिया, यहीं करते हैं पार्टी.
1: पिज्जा पार्टी, ये. चल अपना कार्ड और पिन दे.
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी. आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें. ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें.
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग.
5: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
6: श्रोताओं, आप सुन रहे थे आपके पसंद कार्यक्रम. तो इस कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आइए हम आपको सुनवा देते हैं अलका याग्निक की आवाज में. दिल क्या करे फिल्म का गीत है. पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं बाबा बैद्यनाथ धाम से मनोज केसरी, पूजा केसरी, महादेव केसरी, श्रद्धानंद केसरी और रोशनी केसरी, राजा बाजार बिहिया आरा से सुरेश केसरी, पूनम केसरी, प्रतीक केसरी, थाना रोड बक्सर से ओमान

आनंद धनानंद और विनोद केसरी, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा उल्लाह आसमा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन सरफुद्दीन, कुमारी वली, कुमारी डब्लू और सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा और रेशमा थापा। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, इसी प्यारे से गीत के साथ आपके पसंद का ये कार्यक्रम अब समाप्त करने की दीजिए इजाजत अपनी दोस्त उषा जायसवाल को। नमस्कार, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं अगला कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। और गृहलक्ष्मी में आपकी दोनों सखियां हैं रानी शुक्ला और महजबीन परवीन।

0: नमस्कार बहनों, स्वागत अभिनंदन। रोजाना की तरह हम फिर से हाजिर हैं आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी को लेकर। मैं महजबीन और हमारे साथ एक और प्यारी सी सखी है।
1: बहनों, मैं हूँ रानी। स्वीकार कीजिए मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। और जिस तरह से आपको इंतजार रहता है कि कब दोपहर के 12 बजे और गृह लक्ष्मी शुरू हो, रोज की तरह आज भी कार्यक्रम में है बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें और जानकारी भी, और साथ में होगी मेहमान से मुलाकात भी।
0: वो तो ठीक है रानी। हम ये भी बता दें कि आपके मनोरंजन का भी हमने ख्याल रखा है, तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहनों, गर्मी तेज पड़ रही है, बहुत ज्यादा तेज, और इस मौसम में अक्सर शरीर में कुछ न कुछ दिक्कत पेश आती है।
1: हाँ बहनों, इस मौसम में आज हम आपको त्वचा और बालों में होने वाली परेशानी और समाधान बताएंगे। सबसे पहले तो बहनों, आपको अपनी साफ सफाई का ध्यान पूरी तरह से रखना चाहिए।
0: गर्मियों में तेज धूप, पसीना और धूल से त्वचा और बालों को जरूर बचाएं। और अगर आप किसी भी उत्पाद का इस्तेमाल करती हैं तो सही चुनाव करें। फेस के लिए सनस्क्रीन, और अगर आप घर से बाहर निकल रही हैं तो सनस्क्रीन फेस पर और हाथों पर ज़रूर लगाएं। और शैम्पू जिसमें ज़्यादा केमिकल ना हो, या फिर हल्के शैम्पू जिसका मतलब हल्का, जिसमें केमिकल कम हो, कहीं
1: हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल करें,
0: ज़्यादा अच्छा रहेगा कि
1: बिल्कुल
0: आप हर्बल शैम्पू इस्तेमाल करें।
1: और जिस तरह से महजबीन ने बताया कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, SPF 30 या 50 ही लगाएं। और अगर ज़्यादा देर घर से बाहर है तो 2 से 3 बार जरूर लगाएं, और घर आए तो अपना चेहरा अच्छे से साफ करें।
0: हाँ रानी, पसीने और चिपचिपाहट से बचने के लिए जेल बेस्ड फेस वॉश से चेहरा धोएं, हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर का उपयोग करें बहनों, और साथ ही साथ इस गर्मी के मौसम में पानी खूब पिएं ताकि आपकी त्वचा में जो चमक है, जो शाइन है, वो बरकरार रहे।
1: बिल्कुल बहनों, इसके अलावा बाजार में उपलब्ध हर्बल फेस पैक भी जरूर लगाएं। त्वचा को ठंडक देने के लिए एलोवेरा जेल या गुलाब जल भी आप लगा सकते हैं। बहनों, दही भी एक अच्छा फेस पैक हो सकता है गर्मी में, और गर्मी में पसीने से बचने के लिए बचने का ध्यान रखने के लिए सबसे ज्यादा है पानी पीना जरूरी। और इसमें बहुत ज्यादा परेशानी भी होती है गर्मी में पसीने के कारण, फेस को ठंडे पानी से धोते रहें।
0: ठंडे पानी से तो जैसे कि अगर हम पीते हैं तो भी तो राहत मिलती है, और चेहरे के को धोते हैं तो उससे भी राहत मिलती है।
1: बिल्कुल
0: बहनों, इसके अलावा आप सूती और ढीले कपड़े, यानी अगर आप कपड़े पहन रहे हैं तो उसका भी चुनाव सही से करें। दोपहर 12 से 4 के बीच सीधी धूप से बचें, क्योंकि उस वक्त धूप में तेजी रहती है। बहनों, ये भी जानकारी त्वचा में, और आपको ये भी दे देते हैं कि जिस तरह से हमने जो जानकारी दी आगे त्वचा की और बालों के लिए, तो त्वचा में तो आपने समझ लिया कि आपको किस तरह से काम करना है, और अब बालों की बारी है, तो हम आपको आगे बताएंगे कि बालों का किस तरह से आप ख्याल रख सकते हैं।
1: बिल्कुल है। अभी तो हमने आपको कुछ उपाय बताया है बहनों, जिससे आप इस्तेमाल कर सकती हैं, और अपने खान पान का भी खास ध्यान रखें। बहनों, जिस तरह त्वचा की देखभाल हम कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार बालों का भी खास ख्याल रखें। बालों की नियमित सफाई करें, पसीने और धूल को हटाने के लिए सप्ताह में 2 से 3 बार माइल्ड शैम्पू से बाल धोएं।
0: और अगर बाहर निकलें तो बालों को, जो बालों में है ना, स्कार्फ या टोपी जरूर लगाएं ताकि यूवी किरणें से बचा जा सके, और सुरक्षा, बालों की सुरक्षा हो। और बालों में नमी बनाए रखने के लिए शैम्पू के बाद ध्यान रहे कि जो इसमें जो साफ कंडीशनिंग करने का जो तरीका है उसे ज़रूर अपनाएं। जिस तरह एलोवेरा त्वचा के लिए फ़ायदेमंद है, उसी तरह बालों के लिए भी ये ठंडा रखता है, बालों को भी अच्छा पोषण देता है और नमी देता है। तेल की मालिश सप्ताह में एक बार जरूर करें।
1: बिल्कुल बहनों, एक बात का ख्याल और रखें कि स्ट्रेटनर या कोई भी मशीन का उपयोग गर्मियों में ना करें। साथ ही साथ दही और शहद का मास्क पूरे बालों में लगा सकती हैं अगर आपको ये सूट करता है। बहनों, चाहे त्वचा की बात हो या फिर बालों की, दोनों में पानी खूब पिए।
0: पानी तो रानी, जिस तरह से हम बार बार कह रहे हैं अपनी बहनों को कि पानी खूब पिए, पानी खूब पिए, बिल्कुल पानी बहुत ज़्यादा ही पिए। और इस तरह से हम एक बात और ये बता देते हैं कि जो त्वचा के जिस तरह चमक को बरकरार रखने के लिए हम ऐसे भी हर मौसम के हिसाब से खान पान रखते हैं, मौसमी फल लेते हैं, मौसमी सब्जियाँ लेते हैं, जो कि हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और हम अक्सर देखे हैं कि महिलाएँ, जो हमारी घरेलू महिलाएँ हैं, वो थोड़ा देखभाल से दूर रहती है, तो बालों और त्वचा की देखभाल के लिए आप इसका ख्याल जरूर रखें।
1: बिल्कुल, कम तला भुना, कम मसालेदार खाना खाएं और सलाद को अपने खाने में शामिल करें, और ये सारा कुछ करेंगे और खुश रहे बहनों, आप खुश रहेंगी तो आपका त्वचा खुद ही बहुत खुश खुश लगेगा और आपको देखकर फिर सभी लोग यही कहेंगे।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम,
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम, और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम।
2: पर दादी आपके नाम?
3: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी होगी।

0: तो नॉमिनी बना है।
1: कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो क्या।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
5: पर्सनल लोन ऑफर
6: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
5: फ्री ट्रिप टू दुबई
6: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार।

0: बहनों एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। और महजबी आप आगे क्या है खास?
1: अब अपनी बहनों को हम ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में बहुत सारी जानकारियां देंगे। हमारी आज की मेहमान हैं डॉक्टर रश्मि मिश्रा और इनसे बातचीत कर रही हैं हमारी रेडियो सखी रानी शुक्ला।
2: बहनों प्रकृति हमें जीवन देती है और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन आज बढ़ता प्रदूषण, घटते जंगल और तेजी से खत्म होते ऊर्जा संसाधन हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या हम सचमुच अपने पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार हैं? बहनों आज बढ़ता प्रदूषण और तेजी से घटते प्राकृतिक संसाधन हम सभी के लिए चिंता का विषय बन चुके हैं। ऐसे में ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा केवल जरूरत ही नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है, और आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं विशेष अतिथि DSPMU के पर्यावरण विज्ञान विभाग की विभाग प्रभारी डॉक्टर रश्मि मिश्रा। नमस्कार रश्मि जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में।
3: नमस्कार रानी जी।
2: रश्मि जी, आज के समय में ऊर्जा संरक्षण एक गंभीर मुद्दा बन गया है, इसका क्या अर्थ है?
3: आज के आधुनिक युग में ऊर्जा मानव जीवन का तो आधार बन चुकी है, जिसमें उद्योग, परिवहन, कृषि,

0: यदि हम इनका अति उपयोग करते रहे तो ये जल्द ही समाप्त हो जाएंगे और इनके अत्यधिक उपयोग से भविष्य में ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता है। दूसरा कारण है पर्यावरण का संरक्षण, क्योंकि जीवाश्म ईंधन के दहन से वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। तीसरा कारण है आर्थिक बचत। ऊर्जा संरक्षण से बिजली और ईंधन की बचत होती है, जिससे आर्थिक लाभ भी होता है। चौथा कारण है ऊर्जा सुरक्षा। ऊर्जा की बचत से आयातित ईंधनों पर निर्भरता कम होगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होगी।
1: बिल्कुल।
0: पांचवा और अंतिम कारण है इसका सतत विकास, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच संसाधनों को संतुलित बनाए रखने में सहायक है। इसका निष्कर्ष ये है कि ऊर्जा संरक्षण केवल ऊर्जा बचाने का उपाय ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास और मानव जीवन के सुरक्षित भविष्य का आधार भी है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह ऊर्जा का सावधानी पूर्वक उपयोग करे और ऊर्जा संरक्षण को अपनी दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बनाए।
1: जी बिल्कुल सही कहा। ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग केवल संसाधनों को ही नहीं प्रभावित करता, बल्कि प्रकृति पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। और इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है कि पारंपरिक ऊर्जा के अत्यधिक प्रयोग से पर्यावरण को क्या क्षति पहुंच रही है।
0: पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंच रही है। इनके दहन से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा अन्य हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का कारण बनती हैं। इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, हिमनद पिघल रहे हैं तथा बाढ़, सुरक्षा और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ रही हैं। इसके अलावा अतिरिक्त खनन और तेल उत्खनन से वनों की कटाई, भूमि क्षरण और जैव विविधता को हानि भी हो रही है। जल स्रोत भी प्रदूषित हो रहे हैं, जिससे मानव और जलीय जीवों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण के लिए ऊर्जा संरक्षण एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। रानी जी
1: बिल्कुल, और ऐसी स्थिति में तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है।
0: जी बिल्कुल।
1: ऐसे में हम किस प्रकार ऊर्जा संरक्षण द्वारा पर्यावरण की रक्षा में योगदान कर सकते हैं?
0: हाँ, हम ऊर्जा संरक्षण द्वारा पर्यावरण की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। ऊर्जा का विवेकपूर्ण एवं सीमित उपयोग करने से जीवाश्म ईंधनों की भी खपत कम होती है, जिससे वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं में कमी आती है। हम कुछ उपायों द्वारा ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं, जैसे अनावश्यक बिजली उपकरणों को बंद रखना। हमें बच्चों को भी ये बताना चाहिए कि अनावश्यक बिजली उपकरण यदि कार्य हो जाए तो उसे बंद कर दें। एलईडी बल्ब एवं ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग करना। ऊर्जा दक्ष मीन्स 5 स्टार रेटिंग वाले उपकरणों का ही उपयोग करें, हालांकि वे थोड़े कॉस्टली होते हैं, लेकिन फिर भी उनका उपयोग करना इस कुछ हद तक इसमें कमी ला सकता है। सार्वजनिक परिवहन, साइकिल या पैदल चलने को बढ़ावा देना। सौर एवं पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना। जल और ईंधन की बर्बादी रोकना। वृक्षारोपण एवं पर्यावरण जागरूकता फैलाना। इन सब द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की बचत हम कर सकते हैं, प्रदूषण को कम कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सकता है। इसलिए ऊर्जा संरक्षण केवल आर्थिक बचत ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।
1: बिल्कुल, और यदि हम सब मिलकर थोड़ी सावधानी बरते तो बड़ा परिवर्तन संभव है।
0: बहुत बड़ा परिवर्तन भी संभव है।
1: हाँ बिल्कुल। और रश्मि जी, अब दुनिया पारंपरिक ऊर्जा के साथ नए विकल्पों की ओर भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि वैकल्पिक ऊर्जा किसे कहते हैं, इससे ऊर्जा संकट को दूर करने में कैसे मदद मिल सकती है?
0: वैकल्पिक ऊर्जा तो वो ऊर्जा होती है जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे कोयला

0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के स्थान पर उपयोग की जाती है। यह मुख्यतः नवीकरणीय एवं पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोतों पर आधारित होती है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा तथा जैव ऊर्जा इसके प्रमुख उदाहरण है। वर्तमान समय में पारंपरिक ऊर्जा स्रोत तेजी से समाप्त हो रहे हैं, जिनके कारण ऊर्जा संकट की समस्या उत्पन्न हो रही है। वैकल्पिक ऊर्जा इस संकट को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह ऊर्जा के असीम एवं नवीकरणीय स्रोत प्रदान करती है, जीवाश्म ईंधनों पर हमारी निर्भरता को कम करती है, प्रदूषण एवं ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को घटाती है, ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में भी ऊर्जा उपलब्ध कराती है, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देती है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण करती है। इस प्रकार वैकल्पिक ऊर्जा न केवल ऊर्जा संकट का समाधान प्रदान करती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, लेकिन जागरूकता के बिना किसी भी बदलाव की कल्पना अधूरी है। विशेष रूप से बच्चों और युवाओं में सही सोच विकसित करना समय की मांग है। ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों और युवाओं में ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए।
0: बच्चे और युवा किसी भी राष्ट्र का भविष्य होते हैं। यदि उन्हें प्रारंभ से ही ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता विकसित की जाए तो एक जिम्मेदार और पर्यावरण सचेत समाज का निर्माण संभव है। इसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए। पहला कदम है शिक्षा में पर्यावरण विषय का समावेश। विद्यालयों और महाविद्यालयों में ऊर्जा संरक्षण, वायु परिवर्तन तथा पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित विषयों को व्यावहारिक रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा है जागरूकता अभियान लाना, जैसे सेमिनार, रैली, पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध लेखन, भाषण, क्विज प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों को जागरूक किया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: तीसरा उपाय है व्यवहारिक प्रशिक्षण, जैसे बच्चों को बिजली और जल की बचत करना सिखाना, वृक्षारोपण करना, कचरा प्रबंधन एवं पुनर्चक्रण जैसी गतिविधियों में शामिल किया जाना चाहिए। और डिजिटल एवं सोशल मीडिया का उपयोग, सोशल मीडिया, शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री तथा ऑनलाइन अभियानों द्वारा भी युवाओं तक पर्यावरण संदेश प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है। रानी जी, परिवार की भी काफी भूमिका होती है, क्योंकि अभिभावकों और समाज को स्वयं ऊर्जा संरक्षण का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि बच्चे व्यवहार से सीख सके।
1: जी बिल्कुल।
0: ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चों और युवाओं में जागरूकता विकसित करें और हम भविष्य में एक स्वच्छ, सुरक्षित और सतत पर्यावरण का निर्माण करें।
1: बिल्कुल, बच्चों को छोटी उम्र से ही ऊर्जा बचाने की आदत सिखानी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी रश्मि जी आपने। और अंत में एक ऐसा सवाल जो हमारे आने वाले भविष्य से जुड़ा है, आने वाली पीढ़ियों के लिए ऊर्जा बचाना क्यों आवश्यक है?
0: देखिए रानी जी, आने वाली पीढ़ियों के लिए ऊर्जा बचाना काफी आवश्यक है, क्योंकि ऊर्जा मानव जीवन, औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति का आधार है। वर्तमान समय में उपयोग होने वाले अधिकांश ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सीमित एवं गैर नवीकरणीय है, क्योंकि इनका रिसाइकल नहीं हो सकता। इनके अत्यधिक उपयोग से ये संसाधन तेजी से समाप्त हो रहे हैं। यदि आज ऊर्जा का संरक्षण नहीं किया गया तो भविष्य की पीढ़ियों को गंभीर ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऊर्जा बचाने से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है तथा पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं में भी कमी आती है। इससे पृथ्वी का पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा संरक्षण सतत विकास को बढ़ावा देती है, जिससे वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ भविष्य की जरूरतों का भी ध्यान रखा जा सकता है। इसलिए आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल और स्वस्थ भविष्य के लिए ऊर्जा बचाना काफी आवश्यक है।
1: बिल्कुल बहनों, ऊर्जा संरक्षण केवल बिजली बचाने तक सीमित नहीं, बल्कि ये पर्यावरण और भविष्य को सुरक्षित रखने का महत्वपूर्ण कदम है। रश्मि जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे कार्यक्रम में दिया, इस महत्वपूर्ण विषय पर इतनी बातें की, इतनी सारी अच्छी अच्छी जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहनों, अभी आप सुन रहे थे ये बातचीत ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा। हमारी आज की मेहमान थी डॉक्टर रश्मि मिश्रा और इनसे बातचीत कर रही थी हमारी रेडियो सखी रानी शुक्ला। आइए बहनों, अब सुनते हैं एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

0: बहनों, जैसा कि आप सब गर्मी से अभी बहुत परेशान होंगी, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। हम अक्सर बड़े बुजुर्ग के लिए उचित खान पान का ख्याल रखते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, ठीक उसी प्रकार शिशुओं को भी तो सही खान पान का ध्यान रखना जरूरी है।
1: तो गर्मियों के सर्वोत्तम जो आहार है उसके लिए विकल्प है तो ये है कि जो 6 माह के छोटे बच्चे हैं उनको केवल स्तनपान करें, बाकी बच्चों को आप तरल पदार्थ दे सकते हैं, यानी कि 6 माह के से जो ऊपर के बच्चों को आप तरल पदार्थ दे सकते हैं। नारियल का पानी दे सकते हैं, नींबू पानी और ताज़े फलों का रस, और साथ ही साथ कोशिश करें कि चीनी मतलब कम दें या ना दें तो बेहतर होगा।
0: जी बिल्कुल, और इसके अलावा मौसमी फल को जरूर दें, मतलब उनका जूस दें, छाछ पेट को ठंडा रखता है। दाल का पानी उनके लिए बहुत सही होगा बहनों। हल्का भोजन में मूंग दाल की खिचड़ी आप दे सकती हैं बच्चों को। बहनों, बच्चों को ज़्यादा फास्ट फूड और पैकेट फूड पसंद होते हैं, उन्हें बाहर के खाने पर रोक लगाएं, इन सारी चीज़ों को देना बंद करें।
1: बहनों, अब समय है आपसे इजाज़त लेने का। बता दें कि इस कार्यक्रम की प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की, अब दे महजबीन
0: और रानी को दे जाने की अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गृहलक्ष्मी, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रायोजक हैं NCERT।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी

0: श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
0: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
0: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
1: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया।
0: जी,
1: योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
0: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
1: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
0: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा
1: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
0: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
1: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
0: अजीत जी, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
1: जी मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
0: अजीत जी, आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
1: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
0: जी श्रोताओं, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
1: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
0: बिल्कुल सही। जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
1: विमलेश जी, आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा
0: जी,
1: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
0: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
1: विमलेश जी, एक और बेहद रोचक बात मैंने फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
0: जी बिल्कुल सही। और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं, आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
0: जी
1: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
0: इस समय शहरों, गांवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
1: और वो ये है कि इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
0: जी।
1: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
0: जी, दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं।
1: जी।
0: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं, जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
1: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
0: जी,
1: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
0: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही हैं। इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसके पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
1: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं
0: जी।
1: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
0: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है
1: जी।
0: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
1: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें
0: जी।
1: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है
0: जी। बिल्कुल। तो श्रोताओ, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
0: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की। सुनते हैं कार्यक्रम।
1: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू, सिंगिंग द पोएम श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।
2: चिल्ड्रन, Have you ever visited a zoo?
3: A zoo?
2: Yes, a zoo.
3: Oh, yes.
2: All right. So tell me, what do you see in a zoo?
3: Tiger. Lion.
2: Yes.
3: Monkey. Birds of different kind.
2: Very nice.
3: Camel. Giraffe. And so on.
2: Oh, wow. So, here is a child like you who wants to go to a zoo. Now, let's recite this poem and you all repeat after me. Ready?
3: Ready!
2: The poem goes like this. We are going to the zoo to see a kangaroo.
3: We are going to the zoo to see a kangaroo.
2: And a lion too.
3: And a lion too.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The monkeys swing and climb.
3: The monkeys swing and climb.
2: They know it's feeding time.
3: They know it's feeding time.
2: The polar bear and seals.
3: The polar bear and seals.
2: Enjoy their fishy meals.
3: Enjoy their fishy meals.
2: Yes, we are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The snakes all slide along.
3: The snakes all slide along.
2: The skunk just makes a pong.
3: The skunk just makes a pong.
2: The tiger gives a roar.
3: The tiger gives a roar.
2: He wants to eat some more.
3: He wants to eat some more.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: Yes, we are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: So children, you all have listened to this poem just now. Hope you have enjoyed, isn't it?
3: Yes!
2: All right. So now,

0: This was Kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
0: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी
2: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
3: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।

0: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है।
1: बिल्कुल ठीक है।
0: आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
2: वीर जोरावर की जय। वीर जोरावर की जय। जय जेरापुर, जय भारत।
3: जय जेरापुर, जय भारत।
4: राजा जोरावर सिंह, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
5: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
4: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
5: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
6: महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनमाने का कोई मौका ही ना मिले।
0: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
6: जी।
0: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
6: जी महाराज। महाराज, अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
0: बिल्कुल,
6: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
0: जी मंत्री जी।
6: जी महाराज।
4: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
2: होशियार, खबरदार, रियासत जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
1: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह
7: आइए हमारे दोस्त। तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखिए और बताएं।

0: हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
1: जी।
0: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
2: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
3: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
4: जी हाँ, जीरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
2: ए सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
5: बिल्कुल।
2: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साय की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब न हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
5: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
2: लेकिन जरा होशियारी से।
5: जो हुकुम सरकार।

0: क्या है?
1: You are under arrest.
0: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ। आओ सामने।
1: बाउट हो गई तुम्हारी बहादुरी। फौजियों,
2: हुजूर,
1: बांधो इस बच्चे को जंजीर से।
2: जी।
0: छोड़ो मुझे। हाथ मत लगाओ मुझे। मुझसे हाथ हटाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे। हटो यहाँ से।
1: शाबाश, शाबाश, सालार जंग। मैं खुश हुआ। तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा हुजूर।
0: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है। एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है। लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था।
1: ले चलो इसको।
0: चलो मुझे। छोड़ो मुझे।
3: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों ना गंवानी पड़े।
4: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
5: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
0: अप्पा, ये नहीं हो सकता।
5: देखो देखो, तुम्हें हमारी दोस्त

0: हिस्ट्री की कसम। बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
1: ये नामुमकिन है।
0: Why?
1: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे।
0: yeah.
1: अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
0: तो नहीं मानोगे। देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा
1: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
0: एक्चुअली यू आर अ फूल।
2: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
3: काला पानी की सजा?
2: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
3: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
2: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
1: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
3: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
4: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रायोजक थे NCERT, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। इस समय दिन का 1 बजने को है। हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार थोड़ी ही देर में। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीरों पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा, फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: Economic resilience should be promoted.
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। संयुक्त प्रेस बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश को प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 76,327 जबकि निफ्टी 19 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर था। ओस्लो में नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और डी कुकेश ने क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ रहने के बाद बेहद रोमांचक टाई ब्रेकर में जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में प्रज्ञानंद ने टाई ब्रेकर में वेस्ली सो को हराया, कुकेश ने विंसेंट कीमर को पराजित किया। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने कहा कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: countries in this sector. The Quad Initiative on Indo-Pacific Energy Security and Technology Management Policy, International Market Analysis and Emergency Response Exercises was also announced today. In his statement after the Quad Foreign Ministers meeting, Dr. Jaishankar underlined that as democratic nations, they have also devoted their attention to countering the common threat of terrorism.
1: As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. A free and open Indo-Pacific has many dimensions and facets. Our meeting today took stock of the progress in many of them while encouraging exploration in others. In the coming days, whether it is economic activity, energy trade, or maritime commerce, the Indo-Pacific will become even more important to the world.
0: In his statement, U.S. Secretary of State Marco Rubio said the Quad Critical Minerals Framework will guide these four nations to leverage economic policy tools and coordinate investment to strengthen critical mineral supply chains, including in mining and processing and in critical minerals recycling.
2: On the areas of cooperation. And it's also interesting that on the areas that we are working together on have become even more relevant and more important because of recent events around the world. And so today, I think we'll make even further progress on operationalizing our relationship on the areas that we can cooperate on. And by the way, the most interesting thing about the Quad is not simply that it is a gathering of four strategic allies in which we come together to sort of compare notes about areas of common interest, but also not only is it increasingly becoming a forum by which we begin to take action.
0: India and the U.S. today signed a key bilateral framework aimed at securing the supply, mining and processing of critical minerals and rare earth elements. The landmark agreement was exchanged between External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio in Delhi. The External Affairs Minister said the framework will strengthen resilient and diversified supply chains, help both nations collaborate on financing and also help with effective management of critical minerals and rare earths. Union Home Minister Amit Shah today visited the Sanchu border outpost along the India-Pakistan international border in Rajasthan. He interacted with Border Security Force personnel deployed in the area and lauded their dedication in safeguarding the nation's borders. During the visit, the Home Minister dedicated the Vibrant Villages Program 2 to border regions of the state. Former BJD Rajya Sabha MP Debashish Samantarai has joined the Bharatiya Janata Party BJP. He was inducted into the party in the presence of senior party leaders, including BJP General Secretary Arun Singh and Odisha BJP President Manmohan Samal at the party headquarters in New Delhi. Tensions between the United States and Iran have escalated after U.S. forces carried out what Washington described as self-defense strikes in southern Iran, even as top Iranian officials held ceasefire talks in Doha. U.S. Central Command said the strikes targeted missile launch sites and Iranian boats allegedly attempting to lay mines near Bandar Abbas, which hosts Iran's main naval base. Benchmark domestic equity indices were trading with losses in the afternoon session today. The Sensex fell 162 points to 76,327, while the Nifty dipped 19 points to 24,013 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
3: Akashvani Ranchi se prastut hai pradeshik samachar. नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दी बधाई। कहा, श्री मोदी के नेतृत्व में देश विकसित राष्ट्र की दिशा में बढ़ रहा आगे। भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में राज्यसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी उतारने का निर्णय। झामुमो ने निर्वाचन आयोग को पत्र भेज विशेष निगरानी की मांग की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज स्कूली शिक्षा साक्षरता और महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की करेंगे समीक्षा। रांची में प्रस्तावित रिम्स 2 अस्पताल परियोजना पर 4,200 करोड़ रुपए होंगे खर्च, मरीजों को मिलेगी सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं और झारखंड में गुटखा, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए आज से एक महीने तक चलेगा विशेष महाअभियान। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर 12 वर्ष पूरे होने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास, आत्मनिर्भरता, गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव देखे हैं। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि नारी शक्ति से राष्ट्र शक्ति के संकल्प के साथ देश विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर हजारीबाग के लोगों में खुशी की लहर है। लोगों ने योजनाओं और अन्य सुविधाओं को लेकर सरकार के कार्यों की सराहना की है।
4: समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्तियों को क्या जरूरत है, क्या समस्या है, आम आदमी को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए 12 वर्षों से हमारी सरकार के मुखिया मोदी जी लगे हुए हैं।
5: 12 वर्ष मोदी जी का राज हुआ, आज तक अपने जीवन में कभी हमने नहीं पाया है। हर तरह की सुख सुविधा, हर तरह की व्यवस्था, रोड को देखिए, जहाज को देखिए, माने सब तरह की व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। मैं मोदी सरकार से बहुत खुश हूँ।
3: साहिबगंज जिले में आदिम जनजाति समुदाय के समग्र विकास के उद्देश्य से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया जा रहा है। जिले के कुल 336 गांवों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। समेकित जनजातीय विकास अभिकरण साहिबगंज के परियोजना निदेशक संजय कुमार दास ने बताया कि अभियान का उद्देश्य आदिम जनजाति समुदाय के लोगों को योजनाओं से जोड़ना है।
6: जितने भी मूलभूत सुविधाएं हैं या अन्य तरह के कार्य करने हैं, जैसे वहाँ आंगनबाड़ी नहीं चल रहे हैं तो भवन में आंगनबाड़ी चलाया जा सकता है या NM वगैरह आती है। इतना ही नहीं, वहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो अपना किसी भी तरह का बैठक हो, ग्राम सभा करना हो, उस मल्टीपर्पज बिल्डिंग में बैठ करके अपने उन कार्यों को संपादित कर सकते हैं। इसके अलावा धरती आवा योजना के तहत हमारे कई पीवीटी विद्यालयों में अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण स्वीकृति प्राप्त हुआ है।
3: भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में आगामी राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया है। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया। बैठक में आगामी 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा की गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारत निर्वाचन आयोग से राज्यसभा चुनाव के दौरान विशेष निगरानी की मांग की है। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र भेजकर विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका जताई है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने झामुमो के हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की ओर से ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या उनके पास 56 विधायक हैं?
7: उन लोगों को खुद ही अपने में एक सहमति नहीं है। जो 56 के वो दावे कर रहे हैं, 56 में 56 है क्या? आज उनके अंदर ही अंतर्कलह है और जो बात एलिगेशन हम लोगों को लगा रहे हैं, वो उस मत के अब खिलाड़ी हो गए हैं जिन्होंने झारखंड को बेचने का और खरीदने का जिनका पुराना अनुभव है, और दूसरे को ज्ञान ना दे तो अच्छा है। हॉर्स ट्रेडिंग उन्हीं लोगों ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया और राज्यसभा में यहाँ क्या हुआ, कलंकित हुआ, ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का पुराना इतिहास रहा है।
3: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित सहर घाटी पंचायत में बड़े पैमाने पर अवैध बालू कारोबार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक संरक्षण में प्रतिदिन 50 से 60 ट्रैक्टरों के जरिए अवैध बालू का उठाव और भंडारण किया जा रहा है। उन्होंने दुमका पुलिस और जिला प्रशासन से मामले में FIR दर्ज कर माफियाओं तथा संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज स्कूली शिक्षा, साक्षरता और महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक विभाग की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इस दौरान विभाग के कार्यों का मूल्यांकन और योजनाओं को लागू करने में आ रही परेशानियों को दूर करने पर भी चर्चा होगी। भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद हजारीबाग, खूंटी, गुमला, गिरिडीह समेत कई जिलों के थानों के बाहर और आम लोगों के लिए प्याऊ की व्यवस्था की गई है। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक विमल कुमार ने बताया कि मुफस्सिल और पचम्बा थाना परिसर के बाहर प्याऊ की व्यवस्था की गई है।
8: गर्मी बढ़ गया है, इसको लेकर गिरिडीह जिले में जितने भी थाना है सभी जगह शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। जो मुफस्सिल पचम्बा में ये आज से व्यवस्था लागू की गई है और हम लोग का ये प्रयास है कि आने वाले एक दो दिनों के अंदर में सभी थाना में ये व्यवस्था रहेगी।
3: रांची में प्रस्तावित रिम्स 2 अस्पताल परियोजना पर 4200 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक करीब 2600 करोड़ रुपए का लोन देगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में एडीबी टीम के साथ बैठक में निर्माण, वित्तीय प्रबंधन और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा हुई। रिम्स 2 को सिर्फ अस्पताल नहीं बल्कि सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं, आधुनिक चिकित्सा शिक्षा और रिसर्च केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि झारखंड के लोगों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़े। सरकार का लक्ष्य 6 महीने में लोन प्रक्रिया पूरी कर दिसंबर 2026 या जनवरी 2027 से निर्माण शुरू कर 2 वर्षों में अस्पताल चालू करना है। झारखंड सरकार ने राज्य को तंबाकू मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए गुटखा, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों के खिलाफ आज से विशेष महाअभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस दौरान प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री, भंडारण और अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए छापेमारी की जाएगी। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,48,100 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,78,000 रुपये प्रति किलो है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 76,327, जबकि निफ्टी 19 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर था। आगामी ईद उल जुहा बकरीद को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट मोड में है और डीजीपी तदाशा मिश्रा ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में सभी जिलों को सख्त निर्देश जारी किए। डीजीपी ने संवेदनशील और हॉटस्पॉट इलाकों को चिन्हित कर विशेष सतर्कता बरतने, धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी, वीडियोग्राफी और ड्रोन से निगरानी और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई, प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी रोकने, अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर निगरानी और शांति समितियों के साथ समन्वय पर जोर दिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दी बधाई। कहा, श्री मोदी के नेतृत्व में देश विकसित राष्ट्र की दिशा में बढ़ रहा आगे। भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में राज्यसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी उतारने का निर्णय। झामुमो ने निर्वाचन आयोग को पत्र भेज विशेष निगरानी की मांग की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज स्कूली शिक्षा, साक्षरता और महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की करेंगे समीक्षा। रांची में प्रस्तावित रिम्स 2 अस्पताल परियोजना पर 4,200 करोड़ रुपए होंगे खर्च, मरीजों को मिलेंगी सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं और झारखंड में गुटखा, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए आज से 1 महीने तक चलेगा विशेष महाअभियान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं अनुरंजनी कार्यक्रम में उपशास्त्रीय संगीत। हमारे आज के कलाकार हैं शोभा गुट्टू, इनसे आप सुनेंगे मिस्र पहाड़ी में ठुमरी और दादरा। तबले पर संगत दे रहे हैं अनीश प्रदा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे दादरा श्रीमती शोभा गुरटू से। तबले पर संगत दे रहे थे अनीस प्रधान, सारंगी पर ध्रुव ज्योति घोष, हारमोनियम पर पी वालावलकर। और इसी के साथ आज का अनुरंजनी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे सुगम संगीत थोड़ी ही देर में।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। हमारे आज के कलाकार हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह। लीजिए सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

0: Hajj pilgrims spent the night at Mina. They are now converging at Plains of Arafat for the main ritual of Hajj, reciting prayers. They will spend the day there praying and asking for God's forgiveness. The pilgrims will listen to the Khutbah-e-Hajj or Hajj sermon at Nimra Mosque and offer midday and afternoon prayers together before leaving for Muzdalifah in the evening. The Indian Meteorological Department, IMD, has issued a yellow alert for heatwave conditions today in Delhi. Heatwave conditions in the national capital are expected to continue till tomorrow, with maximum temperatures remaining between 44 and 46 degrees Celsius. IMD also predicted severe heatwave conditions in places over Haryana, Chandigarh, East Madhya Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, Vidarbha and West Rajasthan today. Meanwhile, the southwest monsoon is expected to reach Kerala today or tomorrow. An official declaration on the onset of the monsoon is expected from the Met Department. More from our Thiruvananthapuram correspondent.
1: The IMD has issued an yellow alert for isolated heavy rainfall today in the districts of Thiruvananthapuram, Kollam and Alappuzha in Kerala. The southwest monsoon will be officially declared over Kerala once at least 60% of the 14 weather monitoring stations across Kerala and Lakshadweep record a minimum of 2.5 millimeters of rainfall for two consecutive days after May 10. Wind speed and inset satellite data will also be considered before confirming the onset of the monsoon. While districts from Thrissur northwards have not received significant rainfall since this morning, several southern regions continue to witness steady showers. Places including Kochi, Moonar, Kumaragam, Nilakkal, Kummali, Shabarimala, Varkala and Ponmudi have recorded around 5 millimeters of rainfall since 10 o'clock this morning. Nidhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
0: On sports, the playoffs in IPL cricket are beginning today with Gujarat Titans taking on defending champions Royal Challengers Bengaluru in qualifier 1 in Dharamshala this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. The winner of the match will directly advance to the final, while the losing side will get another opportunity in qualifier 2. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chairs Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi. Quad commits to stable and secure energy markets. India and the US sign key agreement to strengthen supply, mining and processing of critical minerals and rare earths. Union Home Minister Amit Shah visits Sanchu border post in Rajasthan, launches Vibrant Villages Program 2 in border regions of the state. Millions of pilgrims begin main ritual of Hajj pilgrimage in Saudi Arabia. And in the IPL qualifier 1, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in Dharamshala this evening. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी

0: अपनी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
1: As democratic nations,
2: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
1: Action.
0: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री 27वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की

0: चली गई और 10 के से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं, बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,000

0: 238, जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मीना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वॉशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वे 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब आइए हम आपको सुनवाएंगे जय भारती कार्यक्रम। हमारे सभी फौजी भाइयों को हमारा दिल से सलाम। आइए सुनते हैं आपके लिए ये प्यारा सा नगमा।

हमारे सभी फौजी भाई हमेशा खुश रहें, उनकी सेहत अच्छी रहे और उनमें हमेशा अजेय साहस भरा रहे। आप हमारे सरहद पर देश की रक्षा करते हैं और हम सभी अपने अपने घरों पर सुरक्षित चैन से सो पाते हैं। आपके इस सर्वोच्च बलिदान और समर्पण को हम हमेशा सलाम करते हैं।

हमारे फौजी भाइयों की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है उनका हौसला, जो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। उनके और उनके परिवार को हमेशा भगवान नई ऊर्जा, शक्ति और सफलता दें।

हम अपने देश की सेवा में रत सभी फौजी भाइयों के बारे में बातें करते हैं तो बस ऐसा लगता है कि वो अपने परिवार से दूर रहकर भी कितने पास हैं, क्योंकि आजकल वीडियो कॉल का ज़माना है और वो उनसे रोज़ मिलते होंगे, तो फिर हम यही चाहते हैं कि वो उनसे रोज़ इसी तरह से मिलते रहें जब तक सरहद पर डटे रहें और अपने परिवार के साथ खुशियां बांटें। और वो जो त्याग करते हैं उन पर हम सभी भारतीयों को गर्व है। वो हमेशा मुस्कुराते रहें और देश की सेवा में तत्पर रहें।

हमारे सभी फौजी भाई जो सर फरोशी की तमन्ना दिल में लिए, चाहे कैसा भी मौसम हो, ठंड कितनी भी हो, उनका हौसला हमेशा देश को सबसे ज्यादा गर्माहट देता है। वो सरहद पर खड़े हैं, इसलिए पूरा हिंदुस्तान महफूज है और चैन की नींद सोता है। चाहे नया साल हो या कोई भी त्योहार, उनका पहला और आखिरी प्यार सिर्फ हमारा देश ही है, और इसीलिए हम अपने सभी फौजी भाइयों का दिल से सम्मान करते हैं, क्योंकि उनकी वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि 144 करोड़ भारतीयों के गर्व का प्रतीक है। आप भले अपने घर से दूर हैं, लेकिन आपका हर भारतीय के दिल में धड़कन में बसते हैं, और इससे ज़्यादा हम अपने भारतीय सेनाओं के लिए जितना भी कहें वो कम हो जाएगा। इसीलिए हम अपने फौजी भाइयों का फिर से एक बार दिल से स्वागत करते हैं और सम्मान करते हैं, और इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में आज दूसरे दिन भी विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। वे आज स्कूली शिक्षा, साक्षरता एवं महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक विभाग की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज विभिन्न सरकारी विभागों के काम का लेखा जोखा लेंगे और अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश भी देंगे। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है।
1: मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना, और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। हमारे देश की जनता उनके रोम रोम में रमी है, उनकी हर एक सांस में बसी है।
0: झारखंड रेल पुलिस के आईजी माइकल राज एस और डीआईजी आलोक प्रियदर्शी ने चांडल रेल थाने का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने थाने के कागजात, मालखाना

0: और हाजत को देखा। उन्होंने पुराने मामलों को जल्दी निपटाने के निर्देश दिए। अफसरों ने जवानों से बात कर उनके रहने और खाने की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दिया। सिमडेगा में आज हजारों राम भक्तों ने सड़कों पर उतरकर भारी विरोध प्रदर्शन किया। लोग प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री राम रेखा धाम को पर्यटन स्थल बनाने का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष कौशल राज सिंहदेव ने कहा कि पर्यटन स्थल बनने से धाम की पवित्रता भंग होगी, इसे सिर्फ धार्मिक स्थल ही रहने दिया जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्षों के काम से सिमडेगा की महिलाओं के जीवन में बड़ा सुधार आया है। खासकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए बड़ा सहारा बनी है। मुफ्त गैस मिलने से महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिली है। इससे उनके स्वास्थ्य और समय दोनों की बचत हो रही है। सिमडेगा की रहने वाली रेणु देवी ने इस मदद के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है।
1: पहले जैसे तैसे कर करके लकड़ी लाते थे, खाना बनाते थे, बच्चा लोगों का स्कूल लेट भी हो जाता था। अभी तो गैस आया है, तब से समय भी बचता है, कुछ और काम भी कर लेते हैं। हम तो उनका धन्यवाद करना चाहेंगे।
0: रामगढ़ पुलिस ने राहुल दुबे गैंग के 7 कुख्यात शूटरों को गिरफ्तार किया है। एसपी मुकेश कुमार लोनायत ने बताया कि ये अपराधी पतरातू इलाके में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे थे। पुलिस ने छापेमारी कर इन्हें दबोच लिया। पकड़े गए अपराधियों के पास से एक लोडेड पिस्तौल, 34 जिंदा कारतूस और 3 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिज्जान की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं, ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन अराफात में अपना पूरा दिन नमाज और दुआओं में बिता रहे हैं। और अब मौसम का हाल। राज्य में मौसम का दोहरा रूप देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू और चतरा में भीषण लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं धनबाद, बोकारो और रांची समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य के दक्षिणी, उत्तर पूर्वी और आसपास के मध्य भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि गढ़वा और पलामू में लू का असर बरकरार रह सकता है। इन इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए हम आपको सुनवाते हैं अगला कार्यक्रम, नॉन स्टॉप अंताक्षरी। जी हाँ, इसका इंतजार तो आप ठीक 3 बजते ही करने लगते होंगे, मुझे जैसा लगता है। और अपने साथ में इन गर्मियों की छुट्टी में कितने लोगों के साथ आपने टोलियां बनाई होंगी और अपने मनपसंद कार्यक्रम यानी कि नॉन स्टॉप अंताक्षरी का इंतजार कर रहे होंगे। तो चलिए अब ये इंतजार अब खत्म और शुरू करते हैं म अक्षर से ये प्यारा सा

0: आपको मिला है यह अक्षर। यह अक्षर का गीत हम आपको सुनवाएंगे इस संदेश के बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: Cinema.
1: श्रोताओं, इस संदेश के बाद आपको हमने छोड़ा था य अक्षर पर। य अक्षर पर आप अंताक्षरी सुन रहे थे, तो चलिए हम सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रांची से नॉन स्टॉप अंताक्षरी, और अभी आपको मिला है न अक्षर, जाने तो या जाने ना। तो चलिए न अक्षर से हम आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा नगमा।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का अंताक्षरी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है और अब आइए हम आपको अगला कार्यक्रम सुनाते हैं कुछ ही पलों में, रांची मेलोडीज़।

श्रोताओं, रांची मेलोडी इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और चलिए इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं कुछ प्यारे प्यारे गीत। लीजिए सबसे पहले सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में ये प्यारा सा गीत, उसने कहा था फिल्म से, लोफर फिल्म से ये गीत है।

आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे लोफर फिल्म से। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाज लता मंगेशकर की। और अगला गीत आइए हम आपको सुनवाते हैं तीसरी कसम फिल्म से। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। आवाज है लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से रांची मेलोडीज कार्यक्रम, और इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ पुराने गीत। लीजिए अगला गीत सुनिए, लता मंगेशकर की ही आवाज में, फिल्म खामोशी का। गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हैं हेमंत कुमार।

धूल का फूल। लीजिए इस फिल्म का गीत सुनिए महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजों में। एन दत्ता का लिखा, साहिल लुधियानवी का लिखा ये गीत है और एन दत्ता का संगीत।

आन मिलो सजना। लीजिए इस फिल्म का गीत सुनिए। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत है और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाज लता मंगेशकर की।

मधुमती। लीजिए इस फिल्म का ये आखिरी गीत सुनिए रांची मेलोडीज कार्यक्रम में। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं सलील चौधरी। आवाज लता मंगेशकर की है।

0: श्रोताओं, इसी प्यारे से गीत के साथ आज का रांची मेलोडीज कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है और अब आइए इस समय हम आपको सुनवाते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में आज दूसरे दिन भी विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। वे आज स्कूली शिक्षा, साक्षरता और महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक विभाग की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज विभिन्न सरकारी विभागों के काम का लेखा जोखा भी लेंगे। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने में नया रिकॉर्ड बनाया है। आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने नई दिल्ली में बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में खादी का कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पशुपतिनाथ मिश्रा ने आज गढ़वा जिले के 35वें उपायुक्त के रूप में पदभार संभाल लिया है। पदभार लेने के बाद उन्होंने कहा कि जिले का विकास और सुशासन उनकी पहली प्राथमिकता होगी। विश्व हिंदू परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। विहिप के महामंत्री वीरेंद्र साहू के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपकर राज्य में गौवंश की हत्या पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में साल 2025 से ही इस पर प्रतिबंध लागू है। झारखंड रेल पुलिस के आईजी माइकल राज एस और डीआईजी आलोक प्रियदर्शी ने चांडल रेल थाने का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने थाने के कागजात, मालखाना और हाजत को देखा। उन्होंने पुराने मामलों को जल्दी निपटाने के निर्देश दिए। रांची में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। संगठन ने झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल में फैले भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। मौसम विभाग ने आज गढ़वा, पलामू और चतरा में भीषण लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं धनबाद, बोकारो और रांची समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका व्यक्त की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं क्रीड़ा जगत कार्यक्रम में परिचर्चा। रांची में एथलेटिक्स प्रतियोगिता के बारे में, आईपीएल के बारे में भी खास जानकारी होगी और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द वीक में विराट कोहली, वैभव और गुरविंदर सिंह होंगे। रिपोर्ट और संकलन है अमित अखौरी का, प्रस्तुति और संयोजन प्रभु शरण की।

0: जगत। क्रीड़ा जगत कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को अमित का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको बता दें कि आज हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। आज सबसे पहले हम बातचीत करेंगे, रांची में एथलेटिक्स का महाकुंभ शुरू हुआ, यानी रांची एक बार फिर बड़े आयोजन का गवाह बना है। रांची में 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता शुरू हुई है। पर्सनालिटी में बात करेंगे विराट कोहली, वैभव की, खास खास में बात करेंगे टीम इंडिया की। अफगानिस्तान के साथ भारत की सीरीज शुरू होने वाली है और उस टीम इंडिया की हम बात करेंगे। इसके अलावा खेल खबरें तो होंगी ही। तो सबसे पहले बातचीत रांची में आयोजित होने वाली 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता की। राजधानी के बिरसा मुंडा स्टेडियम में शुक्रवार से 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का शानदार आगाज हुआ। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, खेल विभाग झारखंड और झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में यह प्रतियोगिता 25 मई तक चली। देश भर से करीब 750 से ज़्यादा एथलीट रांची आए और इस प्रतियोगिता में ट्रैक और फील्ड दोनों स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। पहले दिन 7 स्पर्धाओं के फाइनल हुए। इसमें लॉन्ग जंप 1000 मीटर दौड़ पुरुष, 10000 मीटर दौड़ महिला, डिस्कस थ्रो महिला, हैमर थ्रो पुरुष, 3000 मीटर स्टीपल चेज महिला और 3000 पुरुष की प्रतियोगिताएं शामिल हुई। महिलाओं की लंबी कूद में एनसी सोजन और साहली सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया। उनके बीच शानदार मुकाबला देखने को मिला और आखिर में एनसी ने 6.7 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया और साहली सिंह ने पिछले साल बने 6.64 मीटर के मीट रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। पुरुषों के 10000 मीटर में उत्तराखंड के दीपक भट्ट ने स्वर्ण पदक जीता। महिला वर्ग में महाराष्ट्र की रवीना गायकवाड ने गोल्ड हासिल किया। पुरुषों के हैमर थ्रो में सेना के आशीष जाखड़ ने 68.52 मीटर के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। दूसरे दिन भारतीय एथलेटिक्स ने एक ऐसा ऐतिहासिक पल देखा जिसे लंबे समय तक याद किया जाएगा। पंजाब के तेज धावक गुरिंदर वीर सिंह ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.09 सेकंड का समय निकालकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही हुआ 10.10 सेकंड से कम समय में दौड़ पूरी करने वाले पहले भारतीय एथलीट भी बन गए। गुरिंदर वीर ने फाइनल में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अनिमेश कुजूर को पीछे छोड़ते हुए शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने अनिमेश से 0.11 सेकंड तेज दौड़ लगाई और करीब 2 फीट आगे रहते हुए फिनिश लाइन पार की। इस मुकाबले ने भारतीय एथलेटिक्स को रोमांच से भर दिया। गुरिंदर वीर ने 10.07 के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा था, लेकिन महज 5 मिनट बाद उड़ीसा के अनिमेश ने 10.15 सेकंड का समय निकालकर रिकॉर्ड फिर अपने नाम कर लिया था। हालांकि फाइनल में गुरिंदर वीर ने जोरदार वापसी करते हुए इतिहास रच डाला। उनका 10.09 सेकंड का समय इस सीजन में एशिया का दूसरा सबसे तेज समय भी है और इस सूची में केवल जापान के युवा धावक फुकुतु कोमुरु उनसे आगे हैं। इस नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के बाद पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.09 सेकंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले गुरिंदर वीर ने फिनिश लाइन पार करने के बाद अपना बीब उतारा और उसके पीछे लिखा संदेश कैमरे में दिखाया। संदेश में लिखा था, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के तीसरे और अंतिम दिन लंबी कूद में मुरली श्री शंकर ने 8.08 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के क्वालिफाइंग स्तर पर 8.05 मीटर से बेहतर प्रदर्शन किया। ऊंची कूद में महाराष्ट्र के सर्वेश अनिल कुसारे का दबदबा रहा। उनकी 2.28 मीटर की छलांग ने उन्हें स्वर्ण पदक हासिल कराया, जो राष्ट्रमंडल खेलों में क्वालिफाइंग मार्क 2.22 मीटर से बेहतर रही। कुशारे ने तेजस्विन शंकर द्वारा बनाए गए मीट रिकॉर्ड की बराबरी भी की। उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड 2.29 मीटर को बेहतर करने के लिए 2.30 मीटर की छलांग लगाने का प्रयास किया, लेकिन उनके तीनों प्रयास असफल रहे। रजत पदक विजेता आदर्श राम 2.22 मीटर ने राष्ट्रमंडल खेलों का क्वालिफाइंग मार्क हासिल कर लिया। पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में रेजस सिरसे ने 13.50 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने अपने ही मीट रिकॉर्ड 13.61 सेकंड का सुधार किया, लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों के लिए निर्धारित क्वालिफाइंग समय 13.39 सेकंड से वो चूक गए। इससे पहले सुबह के सत्र में हरियाणा की रवीना ने महिलाओं की 10,000 मीटर पैदल चाल में 44:29.66 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता। उनका प्रदर्शन राष्ट्रमंडल खेलों के लिए निर्धारित क्वालिफाइंग समय 44:44.58 सेकंड से बेहतर रहा। तो दोस्तों, ये तो सारे रिकॉर्ड रांची में बने और रांची में इस प्रतिस्पर्धा में 750 से ज़्यादा एथलीटों ने हिस्सा लिया। और अब हम चर्चा में बात करने जा रहे हैं आईपीएल की। मुंबई को 30 रन से हरा राजस्थान की टीम ने क्वालिफाई किया, और हम आपको विस्तार से बता दें कि राजस्थान रॉयल्स ने 2022 सीजन के बाद पहली बार आईपीएल के अंतिम चार में जगह बनाई है। रविवार को मौजूदा सीजन के अपने आखिरी करो या मरो मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से शिकस्त दी। इस रोमांचक मुकाबले में रॉयल्स ने 206 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन मेजबान मुंबई की टीम 175 रन पर ही सिमट गई। राजस्थान ने 16 अंकों के साथ चौथी टीम के रूप में क्वालिफाई किया। वहीं पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की उम्मीदें इस नतीजे के साथ समाप्त हो गई। दोनों टीमें राजस्थान की हार पर निर्भर थी। अब बुधवार को मुल्लापुर में एलिमिनेटर मैच में रॉयल्स का सामना तीसरे स्थान पर रही सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। वहीं मुंबई ने यह सीजन 9वें स्थान पर फिनिश किया। बानखेड़े में रॉयल्स का गजब साझा प्रयास दिखा। टीम बिना किसी अर्धशतक के 205 रनों के स्कोर तक पहुंच गई, और यह आईपीएल के इतिहास में इस तरह का पांचवां सबसे बड़ा स्कोर रहा। वहीं पारी में बिना किसी 50 से अधिक रन के साझेदारी के तो यह तीसरा बड़ा स्कोर रहा। यशस्वी जायसवाल ने 27, दुर्जुरेल 38, शनाका 29, आर्चर 32 का योगदान दिया, जबकि यंग स्टार वैभव सूर्यवंशी नहीं चले और मात्र 4 रन उन्होंने बनाए। रॉयल्स के लिए 7 अलग अलग बैटर्स ने कम से कम एक छक्का लगाया, जो उसकी ओर से लीग इतिहास में सबसे ज़्यादा है। जवाब में मुंबई की टीम खराब शुरुआत के साथ बिखर गई। सूर्या 60, विल जैक्स ने 33, हार्दिक 34 ने अच्छे प्रयास किए, लेकिन रोहित शर्मा नहीं चले, वो शून्य पर आउट हुए। नमन धीर ने 6 रन बनाया, रिकेल्टन ने 12 रनों का योगदान दिया, और इन लोगों का फ्लॉप होना टीम के लिए महंगा पड़ा। रॉयल्स की ओर से आर्चर ने सबसे ज़्यादा 3 और ब्रजेश शर्मा ने 2 विकेट लिए। अब टर्निंग पॉइंट की बात करें तो मुकाबले में राजस्थान की जीत की कहानी जोफ्रा आर्चर के इर्द गिर्द रही। आर्चर ने 7वें नंबर पर बैटिंग करते हुए 15 गेंद में 32 रन ठोके, जो आईपीएल में उनका सर्वश्रेष्ठ और टी20 में दूसरा सबसे अच्छा स्कोर रहा। इस पारी में 1 चौका और 3 छक्के शामिल थे। आर्चर ने यह पारी ऐसे समय में खेली जब रॉयल्स की टीम 16वें ओवर में 139 रन पर 6 विकेट खो चुकी थी और 200 तक पहुंचना मुश्किल लग रहा था। इसके बाद गेंदबाजी में आर्चर ने रोहित शर्मा को 0 पे, नमन धीर को 6 पे और हार्दिक पांड्या को भी सस्ते में निपट दिया, और ये आर्चर ही थे जिनके दम पर रॉयल्स ने शुरुआती 6 ओवर में 49 रन तक मुंबई के 4 विकेट झटक लिए थे और ये दबाव बनाने के लिए काफ़ी थे। हालांकि इसके बावजूद मुंबई एक समय 15.3 ओवर में 149 के स्कोर पर थी। हार्दिक और सूर्या 25 गेंद में 48 रन जोड़ चुके थे, लेकिन आर्चर ने वापसी कराई। उन्होंने हार्दिक को बर्गर के हाथों कैच आउट कराकर मुंबई को पीछे कर दिया। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रनों से हराया और मामला फिनिश कर दिया। 7 मैच में 6 जीत के साथ प्लेऑफ की रेस में रहने के बाद भी कोलकाता नाइट राइडर्स की हार के साथ विदाई हुई। रविवार को दिन के दूसरे मैच में उसे दिल्ली कैपिटल्स ने 40 रन से हराया। हालांकि यह मैच शुरू होने के साथ ही डेड रबर बन गया था, क्योंकि राजस्थान ने मुंबई को हराकर कोलकाता को पहले ही बाहर कर दिया था, जबकि दिल्ली एक दिन पहले एलिमिनेट हो गई थी। इस तरह कोलकाता ने सातवें स्थान पर रहकर सीजन खत्म किया, वहीं दिल्ली ने छठे स्थान पर रहकर 14 अंक के साथ सीजन खत्म किया। सीजन के अंतिम लीग मैच में दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 203 रन बनाए। केएल राहुल ने 60 रन बनाए, जबकि अक्षर पटेल ने 39, मिलर ने 38 अच्छी पारी खेली। जवाब में कोलकाता की टीम घरेलू ईडन गार्डन्स पर कुलदीप यादव के 29 रनों पर 3 विकेट लेने से फंस गई। ओपनर और कप्तान रहाणे को छोड़कर कोई भी बैटर लंबा नहीं टिक सका। रहाणे ने 63 रन बनाए और टीम 163 पर ऑल आउट हो गई। तो दोस्तों, अब आईपीएल का दूसरा दौर शुरू होगा और देखना है कि अब 4 टीमें किस तरह से अपना दमखम दिखाती हैं। और कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पर्सनालिटी में विराट कोहली और वैभव सूर्यवंशी की। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल अब सिर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर स्पोर्ट्स लीगों में शामिल होती जा रही है। इसी बढ़ते बाजार का सबसे बड़ा चेहरा बने हैं विराट कोहली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज 18 साल पुराने आईपीएल इतिहास के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ताज़ा रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो कोहली अब तक आईपीएल में 230 करोड़ रुपए कमा चुके हैं और उन्होंने इस मामले में रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है। आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था और इस बार इसका 19वां सीजन है। कोहली 2008 से लगातार आरसीबी के लिए खेल रहे हैं और लीग के सबसे बड़े ब्रांड हैं। मुंबई के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा 227.2 करोड़ की कमाई के साथ दूसरे स्थान पर हैं, वहीं चेन्नई के महेंद्र सिंह धोनी 200 करोड़ रुपये कमाई के साथ तीसरे स्थान पर हैं। धोनी आज भी आईपीएल और भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े कमर्शियल आइकन में गिने जाते हैं। आईपीएल में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो हमने आपको बता ही दिया, सबसे ज़्यादा विराट कोहली की कमाई है 230 करोड़, रोहित शर्मा 227.2 करोड़, महेंद्र सिंह धोनी सीएसके की तरफ से खेलते हैं 200 करोड़। देश की अगर सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी की बात करें तो इसमें पहला नंबर आता है केकेआर का, जिसका वैल्यूएशन अगर किया जाए तो 19,200 करोड़ रुपये हैं। एमआई का वैल्यूएशन है 18,400 करोड़ और सीएसके का 18,400 करोड़। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह हॉकी इंडिया लीग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी कमाई सिर्फ 78 लाख रुपए है। इसके बाद अभिषेक नयन है 72 लाख और हार्दिक सिंह है 70 लाख, और ये दिखाता है कि भारतीय स्पोर्ट्स मार्केट में क्रिकेट का दबदबा कितना है। यानी एक आईपीएल लीग में जहां विराट कोहली, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी सरीखे खिलाड़ी 200 करोड़ से ऊपर के कमाई के रेंज में हैं, वहीं भारतीय हॉकी के जो खिलाड़ी हैं उनकी कमाई 60 से 80 के बीच है। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और अब हम बात करने जा रहे हैं सिक्सर किंग वैभव की। राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में इतिहास रच चुके हैं। वैभव आईपीएल के एक सीजन में 50 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रेयस का बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। वैभव के अब तक 53 छक्के हो गए हैं और वह आईपीएल इतिहास में एक सीजन में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उनका अगला निशाना टी20 क्रिकेट में सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाने वाले क्रिस गेल का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ना है। लखनऊ के खिलाफ वैभव ने 10 गगनचुंबी छक्के लगाए और इस सीजन में अपने कुल छक्कों की संख्या 53 पहुंचा दी। रसेल ने आईपीएल 2019 में 52 छक्के लगाए थे, जबकि वैभव उनसे आगे निकल गए हैं। आईपीएल के इतिहास में एक सीजन में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अभी क्रिस गेल के नाम है। गेल ने 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए 59 छक्के जड़े थे। वैभव जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं उसे देखते हुए रिकॉर्ड भी खतरे में नजर आ रहा है। अब हम पर्सनालिटी में बात करने जा रहे हैं। भारत के सबसे तेज धावक बनने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है और इनका नाम है गुरिंदर वीर सिंह। साल 2008 में मशहूर धावक उसैन बोल्ट ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था दोस्तों, और तब 7 साल के गुरिंदर वीर सिंह ने टीवी पर यह देखा था और उन्होंने बोल्ट को रिकॉर्ड बनाते हुए देखा तो काफ़ी प्रेरित हुए और तभी उन्होंने ठान लिया था कि एक दिन वह भी भारत के सबसे तेज धावक बनेंगे। उन्हें प्रेरित करने के लिए कांस्टेबल पिता कमलजीत सिंह अक्सर वोल्ट के किस्से उन्हें सुनाते थे और अब पंजाब के 25 साल के गुरिंदर वीर ने रांची में फेडरेशन कप में 100 मीटर की दौड़ 10.09 सेकंड में पूरी करके नेशनल रिकॉर्ड बनाया और अपने बचपन का सपना पूरा किया। जब गुरिंदर वीर ने दौड़ शुरू की थी तब धारणा थी कि पंजाबी धावक 100 मीटर में सफल नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। वे कहते थे, इस सोच को गलत साबित करके ही दम लूंगा, और अपने नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर उस सोच को उन्होंने खत्म किया। कोविड में जब ट्रैक और जिम बंद थे तब जालंधर में गुरिंदर वीर कोच सरबजीत सिंह के साथ चोरी छिपे स्थानीय पार्कों के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर दौड़ते थे और उन्हें सुरक्षा कर्मियों की नज़रों से बचकर ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। 2017 की एशियन यूथ चैंपियनशिप से पहले गुरिंदर वीर ने 6 महीने तक स्मार्टफोन से दूरी बना ली थी, लेकिन बैंकॉक में 100 मीटर हीट में वे आखिरी रहे तो रूममेट कहने लगे कि फाइनल भी पूरा नहीं कर पाओगे। गुरिंदर वीर ने पिता को फ़ोन किया और कहा कि दूसरा तीसरा रैंक शायद मिल जाए। यह सुनकर पिता बोले, अगर सोच ही यही है तो कभी नहीं जीतोगे, और यही डांट जो है आगे के लिए प्रेरणा बनी और गुरिंदर वीर ने अगले ही दिन गोल्ड जीत लिया। तो दोस्तों एक बात तो है कि अगर आप ठान लेंगे कि आपको कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है, देश के लिए परिवार के लिए कुछ करना है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और अब हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हम खास में बात करने जा रहे हैं अफगानिस्तान और भारत के बीच क्रिकेट सीरीज की। अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भारत की टेस्ट और वनडे टीमें घोषित की जा चुकी हैं। राहुल को टेस्ट और श्रेयस को वनडे टीम की उपकप्तानी मिली है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी घरेलू सीरीज के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी है। शुभमन गिल की अगुवाई में टीम एक टेस्ट और 3 वनडे खेलेगी। यह सीरीज 6 जून से शुरू होकर 20 जून तक चलेगी। इस चयन में सबसे बड़ा नुकसान स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंत को हुआ है। पंत से टेस्ट टीम की उपकप्तानी वापस ले ली गई और उनकी जगह अब केएल राहुल यह जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा पंत को वनडे टीम से पूरी तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वनडे फॉर्मेट में उपकप्तानी का जिम्मा श्रेयस अय्यर को मिला है। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के नेतृत्व वाली समिति ने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया है। बुमराह जुलाई में सीधे इंग्लैंड दौरे पर वापसी करेंगे। वहीं रविंद्र जडेजा आईपीएल के अंतिम चरण में लगी मामूली चोट के कारण टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है। वापसी करने वालों में तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा का नाम अहम है, जो पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बाद टेस्ट टीम में लौटे हैं। इसके बाद वनडे टीम में ईशान किशन को बतौर बैकअप विकेट कीपर चुना गया है। ईशान ने आखिरी वनडे अक्टूबर 2023 में खेला था। टेस्ट से संन्यास ले चुके रोहित और विराट वनडे के हिस्सा बने हुए हैं। सेलेक्टर्स ने 2027 के वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए दोनों सीनियर खिलाड़ियों को सीरीज के लिए चुना है। 4 युवाओं को घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है। इस सिलेक्शन में लेफ्ट आर्म स्पिनर मानव सुधार और हर्ष दुबे के साथ साथ तेज गेंदबाज गुरनूर बराट को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। गुरनूर और हर्ष दुबे वनडे टीम का हिस्सा हैं। वनडे में पेसर प्रिंस यादव भी एक नया चेहरा है और इस बीच अनुभवी ऑलराउंडर और T20 के उपकप्तान अक्षर पटेल दोनों ही टीमों का हिस्सा नहीं है। जिन खिलाड़ियों को मौका मिला है उसमें पहले खिलाड़ी का नाम है मानव सुधार, जो राजस्थान के 23 साल के गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं। 29 फर्स्ट क्लास मैचों में 129 विकेट लिए हैं, 945 रन बनाए हैं और इंडिया ए से खेलते हैं। हर्ष दुबे विदर्भ के 23 साल के गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं, 27 फर्स्ट क्लास मैचों में 133 विकेट झटके हैं और 1026 रन उन्होंने बनाए हैं। गुरनूर बराट की बात करें तो पंजाब के 6.8 फीट लंबे 26 साल के पेसर बराट का नाम काफी है और 18 फर्स्ट क्लास मैचों में 52 विकेट दर्ज हैं। प्रिंस यादव दिल्ली के 24 साल के तेज गेंदबाज हैं, 14 लिस्ट ए मैचों में 29 विकेट लिए हैं और आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा है। टेस्ट और वनडे सीरीज की शेड्यूल की बात करें तो पहला टेस्ट एकमात्र टेस्ट है जो 6 से 10 जून तक चंडीगढ़ में होगा। पहला वनडे 14 जून को धर्मशाला में, दूसरा वनडे 17 जून को लखनऊ में और तीसरा वनडे 20 जून को चेन्नई में होगा। भारत अफगानिस्तान के बीच अब तक केवल एक ही टेस्ट मैच खेला गया है। 2018 में बेंगलुरु में हुए उस मुकाबले में भारत 2 दिन में ही एक पारी से जीत गया था। तो दोस्तों अब देखना है कि नए खिलाड़ी किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। और अब अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम पहुंच गए हैं और खेल जगत की खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं। अनुभवी मिडफील्डर सलीमा टेटे की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए सोमवार को यहां चुनी गई भारतीय महिला टीम में पहली बार फॉरवर्ड ललथावलु आंगी को मौका मिला है। पर्थ में 26 से 30 मई तक होने वाला यह दौरा FIH महिला हॉकी नेशंस कप 2025-26 की तैयारियों का अहम हिस्सा माना जा रहा है। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 15 से 21 जून के बीच ऑकलैंड में आयोजित होगा। भारतीय टीम इस दौरे में पूरे आत्मविश्वास के साथ उतर रही है और इसी वर्ष अर्जेंटीना दौरे पर टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 मैचों की सीरीज में 2 मुकाबले अपने नाम किए थे। सलीमा टेटे के नेतृत्व में टीम को अनुभव और युवा जोश का संतुलित मिश्रण मिलेगा। 2022 राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता सलीमा के साथ सबिता सुशीला चानू पुकराम बाम लाल रेमसियामी और नवनीत कौर जैसे अनुभवी खिलाड़ी टीम में मौजूद रहेंगे। स्टार स्ट्राइकर नेमार को उनके फिटनेस को लेकर संदेह के बावजूद ब्राजील की विश्व कप टीम में शामिल किया गया है। यह फुटबॉलर इस तरह से अपना 4th विश्व कप खेलेगा। 34 साल के नेमार के नाम पर ब्राजील की तरफ से सबसे ज्यादा 79 गोल करने का रिकॉर्ड है, लेकिन वह अक्टूबर 2023 में बाएं ACL में चोट लगने के बाद से अपनी सर्वश्रेष्ठ फिटनेस हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ताइजुल इस्लाम के 6 विकेट की मदद से बांग्लादेश ने बुधवार को यहां दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को 78 रनों से हराकर सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप किया। पाकिस्तान की टीम 437 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 358 रन पर आउट हो गई। बांग्लादेश ने पहला टेस्ट मैच 104 रनों से जीता था। पाकिस्तान ने मैच के 5वें और अंतिम दिन सुबह अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 316 रन से आगे बढ़ाई, लेकिन उसने 11.2 ओवर में अपने बाकी बचे विकेट भी गंवा दिए। बाएं हाथ के स्पिनर ताइजुल ने 5वें दिन गिरे 3 विकेटों में से 2 विकेट लिए। BCCI ने 2026-27 घरेलू क्रिकेट सीजन के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। इस सीजन में पुरुष और महिला वर्ग के विभिन्न आयु समूहों में कुल 1788 मुकाबले खेले जाएंगे। खिलाड़ियों के वर्कलोड मैनेजमेंट, रिकवरी और युवा प्रतिभाओं को ज़्यादा मौका देने के उद्देश्य से कई अहम बदलाव किए गए हैं। रणजी ट्रॉफी और कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी 2 चरणों में आयोजित होगी, जबकि कई जूनियर टूर्नामेंट अब T20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे। घरेलू सीजन की शुरुआत दलीप ट्रॉफी से होगी। यह टूर्नामेंट 6 जोनल टीमों के बीच खेला जाएगा और इसके बाद 1 अक्टूबर से पारंपरिक ईरानी कप का आयोजन किया जाएगा। रणजी ट्रॉफी 2 चरणों में होगी। एलिट ग्रुप में कुल 32 टीमें शामिल होंगी, इन्हें 4 ग्रुपों में बांटा गया है। प्लेट ग्रुप में 6 टीमें खेलेंगी। कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी विनर्स बनाम रेस ऑफ इंडिया मुकाबले को फिर से कैलेंडर में शामिल किया गया है। यह मैच 1 से 4 अक्टूबर 2026 तक खेला जाएगा। BCCI का मानना है कि इसे अंडर-23 खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। और अब कुछ स्थानीय खेल खबरें। रायपुर में आयोजित सीनियर तथा जूनियर राष्ट्रीय वुड बॉल चैंपियनशिप में झारखंड के बालक बालिका पुरुष और महिला टीम ने विभिन्न वर्गों में विजेता और उपविजेता बनकर झारखंड का नाम रोशन किया। सीनियर पुरुष स्ट्रोक में झारखंड विजेता, महिला फेयरवे इवेंट में विजेता, जूनियर बालक स्ट्रोक इवेंट में उप विजेता, जूनियर बालिका फेयरवे इवेंट में उप विजेता और जूनियर बालक फेयरवे इवेंट में झारखंड उप विजेता बना। ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित सेंट्रल एंड साउथ एशिया सीनियर मेंस रग्बी चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर सिल्वर मेडल जीतने वाले झारखंड के खिलाड़ी डेविड मुंडा का रांची में भव्य स्वागत किया गया। झारखंड के रग्बी खिलाड़ियों ने उनका अभिनंदन किया। डेविड ने उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 10-10 स्कोर कर कुल 20 अंक बनाए और टीम को बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने बेहतरीन डिफेंस किया। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय कांके में 19 से 21 मई तक आयोजित 3 दिवसीय समर कैंप संपन्न हो गया और कैंप में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से खेल, योग, चित्रांकन एवं विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि रांची जिला के जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज थे। उन्होंने विद्यार्थियों के साथ वॉलीबॉल खेलकर उनका उत्साह बढ़ाया। तो दोस्तों, ये तो थे खेल समाचार और इसी के साथ ही आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं प्रभु शरण और इसी के साथ अपने दोस्त अमित को विदा दीजिए। नमस्कार।
1: क्रीड़ा जगत, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रस्तुति स्वर था अमित अखौरी का, प्रस्तुति व संयोजन थी प्रभु शरण की। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको जानकारी दिए चलते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में, कार्यक्रम विवरण के माध्यम से।

शाम 5:02 पर आप सुन पाएंगे युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युवाणी। प्रस्तुत करता होंगे गौरव कुमार पांडे, सूत्रधार होंगी तनिष्का और समृद्धि। पांच बजकर 30 मिनट पर कामगार बंधुओं का दैनिक कार्यक्रम श्रमिक लोक, सूत्रधार कुमारी आरती और आकांक्षा सिन्हा। प्रस्तुति है प्रशांत गौरव की।

शाम 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 6:02 पर हम लेकर आएंगे किसान वाणी कार्यक्रम। इसके अंतर्गत चर्चा होगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आज की बात में आप सुनेंगे फलदार पौधों की नर्सरी के संदर्भ में जानकारी। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर महबूब आलम, भेंटकर्ता होंगे मनोज कुमार। कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। 6:32 का वक्त होगा हमारी दुनिया कार्यक्रम का। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे चर्चा स्वयं सहायता समूह, साथ ही सूचना सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ते कदम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप अपने पसंद के लोकगीत भी सुन पाएंगे। प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। शाम 7:15 का वक्त होगा आदिवासी अखड़ा कार्यक्रम का। ये कार्यक्रम आज आप सुनेंगे खड़िया भाषा में। इसके अंतर्गत चर्चा होगी घर या व्यावसायिक स्थल पर सोलर पैनल लगाने के फायदे। पीएम सूर्य घर सोलर स्कीम के बारे में भी आप जानकारी पाएंगे, साथ ही अपने पसंद के लोकगीत भी आप सुन पाएंगे। प्रस्तुत करता होंगे प्रदीप कुमार।

शाम 7:45 का वक्त होगा अंग्रेजी वार्ता कार्यक्रम का। इसके अंतर्गत वार्ता होगी सेव नेचर सिक्योर फ्यूचर। वार्ताकार होंगी शुमाइला तहजीब, प्रस्तुति होगी नूतन प्रसाद की। रात्रि 8 बजे का वक्त होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम रजनीगंधा का। 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में।

रात्रि 10:30 का वक्त होगा शास्त्रीय संगीत के आयोजन का। आज के इस आयोजन में आप सुनेंगे अभिराम पाठक से राग बहार में आलाप और धमार गायन। तबले पर संगत करेंगे संदीप चटर्जी, हारमोनियम पर गायत्री चक्र।

मुकद्दर का सिकंदर, अभी आप ये गीत सुन रहे थे इस फिल्म का। आवाजें थी लता मंगेशकर, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की। शब्दकार थे अनजान, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। आगे बढ़ते हुए आपको सुनवाते हैं फिल्म बाजीगर का ये युगल गीत। आवाजें हैं कुमार सानू और सोनाली वाजपेयी की।

ये फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से सांझ सरगम कार्यक्रम के अंतर्गत। आगे बढ़ते हुए आपको सुनवाते हैं सत्यमेव जयते 2 का ये गीत। आवाजें हैं रोचक कोहली, जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की। शब्द हैं मनोज मुंतशिर के और संगीत रोचक कोहली का।

और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं फिल्म माशूक का ये युगल गीत। आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति और अभिजीत की। गौहर कानपुरी के शब्दों को संगीतबद्ध किया है श्याम सुरेंद्र ने।

0: इस गीत के साथ ही सांझ सरगम कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, शाम के 5 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी शैक्षणिक योजनाओं का लाभ समय पर विद्यार्थियों तक पहुंचे। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों और नए वर्ष 2026-27 की कार्य योजना पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने आज रांची में आदिनिवास डिजिटल ऐप का शुभारंभ किया। मौके पर उन्होंने कहा कि यह ऐप देश भर के आदिवासी समुदाय को एक सूत्र में जोड़ने का काम करेगा। इससे आदिवासियों की संस्कृति, भाषा, भूमि और परंपरा के संरक्षण के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। रांची में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल कॉरपोरेशन में नियमों को ताक पर रखकर चहेते अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया गया है। बकरीद त्योहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए पाकुड़ जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। उपायुक्त मेघा भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने शहर के मुख्य मार्ग और संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। खूंटी पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत लोगों को खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें वापस लौटाए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में एसपी ऋषभ गर्ग ने कुल 56 लोगों को उनके गुम हुए मोबाइल फोन सौंपे। जामताड़ा पुलिस ने लूट और छिनतई की घटनाओं में शामिल एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि पकड़े गए अपराधी के पास से एक देसी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस, मोटरसाइकिल और लूटा गया सामान बरामद हुआ है। जमशेदपुर के गोविंदपुर इलाके में भीषण गर्मी के बीच पिछले 48 घंटे से पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप है। जलापूर्ति ठप होने से नाराज ग्रामीणों और महिलाओं ने जिला परिषद सदस्य डॉ. परितोष सिंह के नेतृत्व में पानी टंकी परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे थे मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। सांध्यकालीन सभा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, मैं हूँ छवि। श्रोताओं, आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में हम आपको बता देते हैं कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत।

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद यानी संध्या के 5:05 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही संगीतकार के संगीत पद के कुछ गीत। उसके बाद 5:30 पर आप

करेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। इसमें चर्चा के अलावा आप सुनेंगे मनोरंजन करवाएंगे आपका हो लोकगीत से मेलानी बोदरा और साथियों के स्वर में, साथ ही आप भेंट वार्ता सुनेंगे। इसके अलावा बाजार भाव भी बतलाया जाएगा। संथाली लोकगीत आप सुनेंगे मातंग हास्ता और साथियों के स्वर में। संध्या के 6 बजे आपको लिए चलेंगे हमारे रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे मुख्य समाचार। संध्या के 6:02 पर आप सुनेंगे बंगला कार्यक्रम सात रंग। 6:30 पर होगा संथाली कार्यक्रम। 6:55 पर आपको लिए चलेंगे हमारे रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जेल में आज कल।

संध्या के 7:15 पर आपको हम सुनवाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद, जो कि श्रोताओं के पसंद पर आधारित कार्यक्रम है। रात्रि के 8 बजे से 8:45 पर आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:45 पर आपको लिए चलेंगे हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात्रि के 9 बजे से 9:15 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से ही। रात्रि के 9 बजे से 9:15 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार, और 9:15 से रात्रि के 10 बजे तक आपको हम सुनवाएंगे आकाशवाणी राज्य के कार्यक्रम। रात्रि के 10 बजे से 10:30 पर होगा महफिल कार्यक्रम, जो कि गजलों का कार्यक्रम है हमारे चाईबासा केंद्र से। 10:30 से 11 बजे तक आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि के 11 बजे से 11:05 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। 11:05 से 11:10 तक आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से ही। और रात्रि के 11:11 पर हमारे सभा समापन की उद्घोषणा की जाएगी।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही संगीतकार बप्पी लहरी के संगीतबद्ध के कुछ गीत।

कार्यक्रम गुलदस्ता सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गुलदस्ता में एक ही संगीतकार बप्पी लहरी के संगीत बद के कुछ गीत। तो सबसे पहले सुनिए डिस्को डांस फिल्म का ये गीत विजय और कोरस की आवाज़ में। अनजान के बोल हैं और जैसा कि मैंने पहले बताया, संगीत है बप्पी लहरी का।

श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म डांस डांस का ये गीत एलिशा चिनॉय की आवाज़ में। अनजान के बोल हैं।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही संगीतकार बप्पी लहरी के संगीतबद्ध किए कुछ गीत। अब आपको सुनाने जा रहे हैं फिल्म का नाम है नमक हलाल। किशोर कुमार की आवाज़ है, अनजान के बोल हैं।

0: अरे हम तो गिर पड़े।
1: श्रोताओं, नमक हलाल फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम गुलदस्ता यहीं संपन्न होता है। आज आपने सुना बप्पी लहरी के संगीत पद के कुछ गीत। तो अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम किसानवाड़ी, बस कुछ ही पलों में।

0: इस कार्यक्रम की प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। कार्यक्रम किसानवाणी सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को आशा मनीगोप और
1: सुनीता हांसदा का
0: जोहार। आप सबका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। सुनीता जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आशा मनी।
0: सुनीता जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे आप कैसी हैं। इन दिनों हम देख रहे हैं गर्मी भी काफ़ी बढ़ रही है।
1: बिल्कुल, मैं अच्छी हूँ और मैं बहुत ख्याल रखती हूँ। जैसे आपने कहा कि इन दिनों गर्मी काफ़ी बड़ी है और निकलने से पहले मैं बहुत तैयारी के साथ निकलती हूँ, खूब पानी पी लेती हूँ और जितना हो सके धूप से बचती हूँ, क्योंकि हम लोग देखते हैं अधिकतर कि बहुत ज़्यादा गर्मी रहने पर थोड़ी देर में ही जो है एक थकावट सी महसूस होती है, बहुत पानी प्यास लगता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं भी हम जा रहे हैं, अगर काम से ही निकल रहे हैं, तो हमें अपने जो भी तैयारी होती है सुरक्षा को लेकर के वो सारी करके निकलनी चाहिए।
0: साथ ही सुनीता जी, अगर किसी भी तरह की शारीरिक कमजोरियां, किसी तरह की लू लगने की संभावना है, तो ऐसे में अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और किसी तरह की लापरवाही बरतने से वो हमें नुकसान पहुंचाएगा।
1: बिल्कुल
0: सुनीता जी, हमारे किसान भाई बहन सालों भर किसी न किसी साग सब्जियों की खेती करते हैं, फसलों की खेती करते हैं, तभी हमें बाज़ार में सही समय में जो साग सब्जी वो भी मिलता है।
1: बिल्कुल,
0: और इसके साथ ही आज हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चर्चा से, मिट्टी जाँच से होने वाले लाभ। सुनीता जी, कृषि में मिट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका है। फसलों के विकास के लिए मिट्टी में सभी पोषक तत्वों का होना बहुत ही जरूरी है। अगर किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो इससे जो फसलों में नुकसान पहुंचता है, साथ ही उनका सही बढ़वार भी नहीं होता है, और इससे जो हमारे किसान भाई बहनों को आर्थिक नुकसान भी पहुँचता है।
1: बिल्कुल,
0: मिट्टी के पोषक तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नत्रजन।

0: फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जस्ता, मैग्नीज, तांबा, लोह, बोरोन, क्लोरीन। मिट्टी में क्षारीयता, अम्लीयता, इन सब का संतुलित मात्रा में होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये सब संतुलित मात्रा में है तो जो पैदावार है वो भी सही समय में होता है।
1: बिल्कुल,
0: मिट्टी में लवणता, क्षारीयता और अम्लीय की जो जांच है, इसी से मिट्टी के में सुधार होने की भी संभावना होती है।
1: बिल्कुल, और अगर हम मिट्टी की जो जांच करने के प्रमुख लाभ के बारे में बात करें तो आशा जी, अगर हम देखें तो अगर हम उर्वरकों का जैसे इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी हम बचत कर सकते हैं, क्योंकि हमें जांच से यह पता चल जाता है कि खेत में किन पोषक तत्वों की कमी है और किसकी अधिकता है। तो इससे हमें जो है, किसान जितने भी हमारे किसान भाई बहन हैं, केवल ज़रूरत के अनुसार ही खाद डालेंगे और जिससे जो है अनावश्यक खर्च भी बचता है, उपज में वृद्धि होती है, क्योंकि सही अनुपात में अगर हम पोषक तत्व मिलाते हैं तो पौधों का विकास अच्छा से होता है, जिससे पैदावार में भी वृद्धि होती है, साथ ही साथ मिट्टी का जो है सुधार होता है, क्योंकि जांच द्वारा मिट्टी के, जैसे आपने अभी कहा कि अम्लीय या क्षारीय होने का पता चलता है, इसके आधार पर जिप्सम या चूने का इस्तेमाल करके बंजर या खराब भूमि को हम फिर से उपजाऊ बना सकते हैं। फसल का चयन, अगर रिपोर्ट के अनुसार हम देखें तो किसान भाई बहन हमारे जो है वो यह तय कर सकते हैं कि उनकी मिट्टी किस विशेष फसल के लिए या किस सब्जी के लिए ये उपयुक्त है, और साथ ही साथ मिट्टी की सेहत भी बरकरार रहती है। जैसे हम लोग अपनी सेहत के लिए जिस तरह से ख्याल रखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह हमारे मिट्टी को भी संतुलित उर्वरकों के प्रयोग करने से उनकी जो प्राकृतिक स्वास्थ्य और उपजाऊपन होता है वो लंबे समय तक बना रहता है।
0: बिल्कुल सुनीता जी, और हमारे किसान भाई बहन फसल की बुआई रोपाई से एक महीने पहले मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। वर्ष में 2 या 3 बार मिट्टी की जांच करवाना बहुत ही जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: जांच के लिए मिट्टी के लिए ATM या BTM से संपर्क कर सकते हैं या स्वयं से जिला कृषि कार्यालय में ले जाकर जमा कर सकते हैं मिट्टी जांच प्रयोगशाला केंद्र में। और इसके साथ ही हमारे किसान भाई बहनों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें बताया जाता है कि किस पोषक तत्व की कमी है। सुनीता जी, यह हमारे किसान भाई बहनों के लिए बहुत ही लाभकारी है, और हमारे किसान भाई बहन मिट्टी की जाँच पर जरूर ध्यान दें, इससे जो फसलों का पैदावार है वो सही तरह से होगा।
1: बिल्कुल
0: सुनीता जी, इस चर्चा के बाद अब हम कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये संदेश।
2: जलवायु क्या है और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है? जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक, लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। लेकिन आज हमारी जलवायु पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस का निकलना है। इस वजह से गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और समुद्र का जलस्तर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इससे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है, ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सकें कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जो आपको दिखाएगी कि जलवायु परिवर्तन हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसमें साफ पानी, बेहतर स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। यह प्रदर्शनी अब कई भाषाओं में उपलब्ध है। इसे पहले से ही भारत, भूटान और श्रीलंका में साझा किया जा रहा है। इसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और वे अपने आप को बदलती जलवायु के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए, अधिक जानिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। हम सभी के लिए जलवायु के बारे में जानना बेहद जरूरी है।
0: किसान भाई बहनों, अब हम आनंद लेते हैं होलो गीत का मिलानी बोद्रा और साथियों के स्वर में।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22

0: 2022 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
1: प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया।
0: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
2: हमने 1800 रुपए प्रीमियम भरा था, अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ।
0: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूँ व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
3: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मील चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गाँव में खुशहाली आ रही है।
0: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
4: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
0: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
5: मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है, उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया।
0: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
6: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है।
0: कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।

0: फसल बीमा कर।
1: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
2: अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।
2: बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
0: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
4: कार्यक्रम किसानवाणी में आप सबका पुनः स्वागत है। किसान भाई बहनों, अब हम जानकारी लेते हैं प्राकृतिक तरीके से खाद बनाने की विधि। इस विषय में जानकारी दे रही है हीरामणि पाड़िया और उनसे बातचीत कर रही है सुनीता हांसदा।
5: आज हमारे साथ है हमारे एक किसान मित्र, आइए उनसे जानते हैं उनका परिचय और जानेंगे कि किसान जो हमारे महिला मित्र है वो खेती करती हैं, खेती बाड़ी करती हैं तो किन किन साग सब्जियों की खेती बाड़ी करती है उस विषय पर। तो सबसे पहले आइए जानते हैं उनका परिचय।
6: मेरा नाम है हीरामणि पाड़िया, गांव पहाड़पुर है और मेरा समूह का नाम है पुनः इमरसर, उसमें मैं अध्यक्ष भी हूँ और समूह से ही हमको चुना गया है कृषि मित्र, जो हम बागान सबका देख रेख करते हैं और खाद दवा सब भी बनाने का ट्रेनिंग लिए हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं दीदी लोगों को।
5: बहुत अच्छी बात है हीरामणि जी, आपने परिचय अपना जो दिया है बहुत अच्छा दिया है कि आप महिला समिति से जुड़ी हैं, उनकी अध्यक्ष भी और कृषि मित्र भी है, जो कि सबसे हमारे लिए जो ज़रूरी है, कृषि जो हमारे जीविका का सबसे बड़ा साधन है। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि आपने किस किस साग सब्जियों की खेती अभी की है।
6: टमाटर, बैंगन, मिर्चा, साग सब्जी और मतलब और कुछ भी साग धनिया जैसे जी सबको लगाए हैं और खाद सब तो अपने से बना के लगाते हैं
5: जी। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि मतलब किस तरह से आप खेतों की तैयारी करते हैं और किस तरह से जो है कोई भी फसल लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं।
6: हल जोतते हैं, फिर उसको हाथ से मिट्टी को नरम करते हैं, उसके बाद में हल्का गोबर वाला खाद मिला के उसको या बनाते हैं, तैयार करते हैं, फिर साग सब लगाते हैं
5: जी।
6: और जो बीज तो उसको उसके लिए अलग से बनाते हैं बीज लगाने वाला, और साग तो छिड़का देते हैं
5: जी। हाँ, तो बीज जब आप लगाते हैं किसी को, मतलब पौधा अगर रोपने के लिए लगाते हैं तो उसकी क्यारी कैसे बनाते हैं।
6: क्यारी लाइन में लगाते हैं, चार कोना करके
5: जी,
6: किनारे किनारे थोड़ा सा मिट्टी को ऊपर करते हैं ताकि पानी बहा के बाहर ना जाए, उसका अंदर में ही रहे
5: जी। तो लगाने के बाद कितने कितने दिनों के अंतराल में जैसे खाद वगैरह देना होता है, सिंचाई की कैसे व्यवस्था आप करते हैं।
6: सिंचाई की अभी तो तालाब से पानी लेते हैं तो उसका सिंचाई करते हैं वो से मोटर से
5: जी।
6: हाँ, मोटर से करते हैं और उसको ज़्यादा एक बार में ही ज़्यादा ज़्यादा करके डाल देते हैं तो 2-3 दिन तो छोड़ देते हैं और उसके बाद में उसको या मिट्टी को भी थोड़ा सा
5: सूखने देते हैं।
6: हाँ, सूखने देते हैं
5: जी।
6: हाँ,
5: खाद में किस तरह का खाद का इस्तेमाल आप करते हैं, रासायनिक खाद करते हैं कि जैविक खाद करते हैं।
6: रासायनिक तो नहीं करते हैं
5: जी।
6: हाँ, अपने से बनाते हैं गोबर खाद को।
5: अच्छा। हाँ, तो जैसे आपने कहा हीरा जी अपने से खाद बनाते हैं। हाँ, तो हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई भी जाने कि अगर उनको भी जैविक खाद बनाना हो तो किस तरह से वो बनाते हैं, मतलब कैसे बना सकते हैं।
6: गोबर लेते हैं और गौमूत्र लेते हैं, गुड़ थोड़ा सा लेते हैं
5: जी,
6: और धीमा मिट्टी लेते हैं। अच्छा। उसको मिला के 20 लीटर पानी में
5: जी
6: मिला के उसको 3 दिन तक छोड़ देते हैं
5: जी,
6: या मैं ड्राम या तो बाल्टी वगैरह में। फिर ओला तैयार हो जाता है, फिर ओला 20 लीटर पानी में उसको 1.5 लीटर मिला के उसको या करते हैं, छिड़का देते हैं
5: फसलों में।
6: हाँ, फसलों में। हाँ, तो उसको खाद मतलब यह मिल जाएगा तो थोड़ा हरा भरा बन जाएगा
5: जी। हीरा जी, आपने कहा कि आप जो है कृषि मित्र है और आप ट्रेनिंग भी देती हैं, तो किस तरह का ट्रेनिंग देती हैं, कैसे मतलब।
6: खाद बनाने का
5: जी,
6: और जो फल फूल में कीड़े सब लगते हैं, जड़ते हैं फूल सब, उसके बारे में।
5: जी, तो थोड़ा सा विस्तार से हमें उस पर बताइए।
6: उसका जैसे अभी फूल सब जड़ जाता है तो उसका अलग से एक टुकात है जो उसका अंडा एक टू और 15 टू नींबू उसको निचोड़ के उसका अंडा को उसमें रखते हैं और 15 दिन उसको ढक्कन में रख के 15 दिन तक उसको छोड़ देते हैं
5: जी।
6: हाँ, तो उसको 15 दिन में तैयार हो जाता है और उसका एक बूंद

0: हैं पानी में, उसको 15 दिन तक उसको रखते हैं, फिर बन के तैयार होता है और उसको चलनी करके और पानी से हम लोग पानी में मिला के छिड़का देते हैं
1: जी। हाँ, तो वो मतलब ऐसा जहर का काम तो नहीं होता है, मतलब इंसान के लिए तो कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता?
0: नहीं नहीं,
1: केवल जो हमारे फसल में जो कीड़े सब लगे हैं
0: सब होते हैं उस
1: जी। तो हीरा जी, ये तो बहुत अच्छा तरीका है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे भी ऐसी खाद के बारे में नहीं पता था और रासायनिक दवाओं के बारे में भी नहीं पता था। तो ये ट्रेनिंग आपने कहीं से प्राप्त किया है?
0: हाँ, समूह से जुड़े हैं, फिर समूह में हमको बताया कि ट्रेनिंग लेना चाहोगे, तो हम बोले कि हाँ लेना चाहेंगे, तो फिर हमको यहाँ सरायकेला RCT उसमें लिए
1: जी
0: 15 दिन का
1: जी। हाँ, तो बहुत फ़ायदा इससे हुआ होगा?
0: हाँ, अभी हम लोग उसी में करके करते हैं बागान का
1: जी,
0: कुछ अपना बाड़ी सब में लगाए हैं
1: जी,
0: खाद सब अपने से बना के उसमें मिला के जी। बाहर का अभी रासायनिक सब नहीं लेते हैं, अभी हम लोग सीख गए तो उसी से बना के
1: जी। और इसमें कीड़े वड़े नहीं लगते हैं?
0: नहीं नहीं लगते हैं, नहीं लगते हैं कीड़े सब, अभी हम लोग उसी से ही कर रहे हैं
1: जी। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जानकारी या फिर ये जो खाद बनाने का जो तरीका है या फिर जो दवा आपने जिस तरह से बनाने का तरीका बताया, हमारे किसान भाई ज़रूर सुनेंगे और जिन्हें नहीं पता है वो भी इस तरह से जो है अपने फसलों के लिए दवा बना करके अपने मतलब फसलों में डालेंगे ताकि रोग नियंत्रण वो कर सके। और हीरा जी, आप समिति से भी जुड़ी हैं तो उसमें आपके लिए फ़ायदा और ये भी होता है कि जब भी समिति में कुछ ज़रूरी जानकारियां आती है तो आप जान लेते हैं और फिर जानने के बाद आप ट्रेनिंग के दौरान भी जो है सबको सिखाते हैं।
0: हाँ
1: जी, तो आशा करते हैं और आपको बधाई भी देना चाहेंगे कि आप अपने जो सीखा है वो लोगों को भी सिखा रही हैं, तो उससे और लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। तो हीरा जी, आपने इतना कीमती समय देकर इतनी कीमती जानकारी हमारे किसानों के लिए रखा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: किसान भाई बहनों, अभी हम जानकारी ले रहे थे प्राकृतिक तरीके से खाद बनाने की विधि, इस विषय में जानकारी दे रही थी हीरामणि पाड़िया और उनसे बातचीत कर रही थी सुनीता हांसदा।
3: किसान मानधन योजना मिले

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इंसानों के कारण जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। कोयला, तेल और गैस जलाना, पेड़ काटना और पशुओं को पालना जैसे मानवीय काम ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 8 लाख सालों या 800 हजार सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुद्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है जिससे जमीन, समुद्र और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है।
4: किसान भाइयों बहनों, इन्हीं संदेशों के साथ ही आज का हमारा किसानवाणी कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत।

0: सरकार। नई जानकारियों के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए कार्यक्रम से मुझे यानी सुनीता हांसदा और
1: आश्रमिनी गुप्त को दीजिए विदा।
0: जोहार, जोहार।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से देश की आबादी के ढांचे में हो रहे बदलावों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नौलेकर इस समिति के अध्यक्ष होंगे। गिरिडीह में आज जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पानी, बिजली और शहर की सफाई का मुद्दा मुख्य रूप से छाया रहा। बकरीद त्योहार को शांति और भाईचारे के साथ मनाने के लिए राज्य भर में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इस सिलसिले में खूंटी नगर भवन में जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीसी मोहम्मद जावेद हुसैन और एसपी ऋषभ गर्ग ने सभी समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। गुमला में आज उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन सौंपे। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को तय नियमों के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। खूंटी जिले की कर्रा थाना पुलिस ने 18 मई को पदमपुरा गांव में हेरमेन होरो को गोली मारकर घायल करने वाले दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पकड़े गए अपराधियों की निशानदेही पर पदमपुर के जंगल से हथियार और कारतूस समेत कई चीजें बरामद की हैं। सरायकेला जिले के कपाली क्षेत्र अंतर्गत फॉरेस्ट एरिया में आज एक युवक का अधजला शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान कर ली गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने आज अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया। उपायुक्त ने जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आए नागरिकों की फरियाद सुनी और उनके निदान की पहल की। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे हमारे रांची केंद्र से प्रसारित मुख्य समाचार। अब आपको सुनवाते हैं बंगला कार्यक्रम सात रंग।

কাজী নজরুল ইসলাম সঙ্গীতের জগতের গজলের পথিকৃত ছিলেন।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे बंगला कार्यक्रम सात रंग। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको सुनवाते हैं संथाली कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱱᱩ ᱨᱟᱢ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱫᱮᱞᱟᱵᱚᱱ ᱱᱤᱛ ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱤ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱧᱚᱜᱟ
1: सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गयी है।
3: परिवार जो इन बेटा क्रांति बेसरा आले नेहर बोले नुकन परिस्थिति रे बोले सब वापस को रुड़ना धरा रे बोले रुड़ तबन में आले परिवार से मतलब पूरे ये
4: गाँव तो जंगल गया है तो आउका कहाँ मैंने आए वो लोग आउका वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रणबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आई ने हमरे घर है बहुत दुख के बात होते कम बात हो जाए
6: तुम लोग बुरा मिसिंग काम सोए अनुता थामसोए भरूपा ऐसा करना ऐसे दुकुरा में ना आया यापा में रिया तपा में रिया वाह बेटा निका
7: अन्य न तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम दूर कोड़ा अन्य हम दो कोदमरी कोड़ा दो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मैंने मैं बुरी ने बागिया तो कि मैं दोनों से यार की कोलो पुलिस कोलो मैं लड़ाई चलाओ तमा दुर्गम गई तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काका मेरे मिया
8: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिना हीरो जिता हुरा रे मिना हीरो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका अले आया न तुम कहीं ना मिले आप ही लेता ना
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण निशुल्क चिकित्सा बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क कन्यादान हेतु अनुदान उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
0: बयाम सिखो गलानित बोन आजम संगे अमित थूती सामाजिक परसी रिया उतनाव नवा थूती किन लई सदोरा का वीर प्रताप मुर्मू तकिन
9: परसी दो मनमिया मैंने तन रोल अड़ांगे नवा होते ते मनमी आजा भाव विचार आर उहेरे सदोर किया नवा के मित नोंकन जरिए करना जहां ते भाव विचार एपेम चपल गनवा पर्सी दो दरिया रेया दा लेका लेतार गे लिंगी एका चलाव का तहना पर्सी रेया निजेरा गुण से स्वभाव गे पर्सी रेया आसोल जथात से सरी दो कना जो तो पर्सी रेया अपन अपीन जथात स्वभाव आर ओनारे गुण आर बड़ी तीत तहना पर्सी दो मी सामाजिक दाड़े कना जहां दो जनम तोरा गे मनमी दो इयामा मनमी नवा दो निजेरिन हपराम ठेन खोने चेदा आर ओना उठनो रेया एक रुमटिया नवा दो पीढ़ी खोन पीढ़ी चला आ आर चिमित हरा जहां पुरसी रे सरी आर जोथात दाड़े ती तहना ओना दो लेताड़ गे ओक्तो सांते किसीन अका गे तहना पुरसी दो तिसोम आर ओक्तो लेकाते आयमा रूप रे हटी अकना ओना ते नवा धरती रे अड़ी आयमा पुरसी गे रड़ो कना सांताली पुरसी दो अबो सांताल को जनाम पुरसी कना नवा पुरसी दो बिहार पश्चिम बंगाल उड़ीसा आर आसाम पनोत रेगे जस्ती रड़गो कना ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ, ᱵᱷᱩᱴᱟᱱ, ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱟᱨ ᱢᱚᱨᱤᱥᱟᱥ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱚᱨᱚᱲ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱚᱨᱚᱲ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱢᱚᱴ 1 ᱠᱟᱨᱚᱲ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱱᱟᱝ ᱫᱚ 2 ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱢᱤᱫ ᱫᱚ ᱟᱹᱜᱤᱞ ᱥᱮ ᱯᱨᱟᱪᱤᱱ ᱟᱨ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱥᱮ ᱟᱹᱫᱷᱩᱱᱤᱠ ᱾ ᱟᱹᱜᱤᱞ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱫᱚ 1947 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱥᱮᱫᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱤᱧᱚᱛ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱯᱩᱱ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱥᱟᱦᱮᱵ ᱠᱚ ᱜᱚᱵᱚᱞ ᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱩᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱤᱥᱟᱹᱭ ᱢᱤᱥᱚᱱᱟᱨᱤ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱪᱟᱨᱪᱟᱣ ᱟᱨ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱣᱮᱱᱟ ᱾ ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱱᱟᱜᱟᱲᱤᱭᱟ, ᱜᱤᱨᱤᱰᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱚᱪᱟᱢᱵᱟ, ᱩᱲᱤᱥᱥᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱞᱮᱥᱥᱚᱨ ᱟᱨ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱜᱟᱞ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱨᱮᱝᱜᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟᱨᱮ ᱤᱥᱟᱹᱭ ᱢᱤᱥᱚᱱᱟᱨᱤ ᱠᱚ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱞᱮᱫᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱥᱟᱶ ᱡᱩᱲᱟᱹᱣ ᱜᱟᱹᱠᱷᱩᱲ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ, ᱦᱚᱲ ᱥᱮᱨᱮᱧ, ᱥᱟᱵᱟᱫ ᱵᱟᱹᱫᱤ, ᱵᱮᱭᱟᱱ ᱟᱨ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱾ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱵᱟᱯᱴᱤᱥᱴ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱪᱟᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱤᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱡᱮ ᱯᱷᱤᱞᱤᱯᱥ ᱟᱨ ᱮᱞᱤᱱᱚᱭᱮᱥ ᱫᱚ 1845 ᱥᱟᱞᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱚᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱦᱟᱨᱚᱯᱛᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱮᱫᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ 1852 ᱨᱮ ᱮᱱ ᱤᱱᱴᱨᱳᱰᱟᱠᱥᱚᱱ ᱴᱩ ᱫᱟ ᱥᱟᱱᱛᱷᱟᱞᱤ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱞᱮᱫᱟ ᱾ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱱᱟᱠᱷᱟᱨᱮ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱪᱟᱨᱪ ᱢᱤᱥᱚᱱᱟᱨᱤ ᱥᱳᱥᱟᱭᱴᱤ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱢᱟᱬᱛᱮ ᱢᱟᱱ ᱤᱹᱮᱞ ᱯᱩᱠᱥᱞᱮ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱵᱟᱫ ᱠᱚ ᱡᱟᱴᱟᱜ ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱮ ᱵᱷᱳᱠᱟᱵᱩᱞᱟᱨᱤ ᱚᱯᱷ ᱥᱟᱱᱛᱷᱟᱞᱤ ᱞᱮᱝᱜᱩᱭᱮᱡᱽ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱯᱚᱛᱚᱵ 1868 ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱞᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱵᱟᱭᱵᱮᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤᱛᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱞᱮᱫᱟ ᱵᱟᱯᱴᱤᱥ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱵᱮᱱᱟᱜᱟᱲᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱡᱩᱲᱟᱹᱣ ᱢᱟᱱ ᱠᱮᱨᱟᱵ ᱥᱟᱦᱮᱵ ᱟᱨ ᱢᱟᱱ ᱡᱟᱱᱥᱚᱱ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱪᱟᱪᱟᱞᱟᱣ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸᱠᱤᱱ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱾ 1873 ᱥᱟᱞᱨᱮ ᱮ ᱜᱨᱟᱢᱟᱨ ᱚᱯᱷ ᱫᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱞᱮᱝᱜᱩᱭᱮᱡᱽ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱵᱟᱱᱟᱨᱚᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱤᱱ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱯᱟᱨᱥᱟᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱯᱨᱮᱥ ᱵᱮᱱᱟᱜᱟᱲᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱠᱚ ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱯᱨᱮᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱢᱟᱱ ᱨᱟᱭ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱡᱟᱴᱟᱜ ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱚᱞ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚᱨᱤᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱫᱚ 1908 ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱞᱮᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले।
3: ना,
2: पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया,
3: जाओ भाई।
4: आरबीआई कहता है,
1: वित्तीय समझदारी।
5: बुयाम सिखो दिलाते हैं आंकड़ा मुझे रितोंग सरिंते बुन रस्का जुगा सप्लाव काको मोदन सोरे ना सांतन को।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे थे संथाली कार्यक्रम। अब आपको ले चलते हैं हमारे रांची केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने अवैध घुसपैठ और आबादी में बदलाव की जांच के लिए की बड़ी पहल। राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक ढांचे पर खतरों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित। गिरिडीह में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में हुई दिशा की महत्वपूर्ण बैठक। विकास कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने की शिक्षा विभाग की समीक्षा। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या बढ़ाने के निर्देश। महिला और बाल विकास विभाग की योजनाओं का भी लिया जायजा। राज्य के 11 जिलों में कल तेज आंधी और बारिश, वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट। 28 मई से भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना। और राज्य के 8 खिलाड़ियों के साथ भारतीय अंडर 18 हॉकी टीमें एशिया कप के लिए जापान रवाना। महिला टीम में 6 और पुरुष टीम में राज्य के 2 खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दम। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से देश की आबादी के ढांचे में हो रहे बदलावों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नौलेकर इस समिति के अध्यक्ष होंगे। इस समिति में जनगणना आयुक्त सहित कई पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और अर्थशास्त्री शामिल किए गए हैं। गृहमंत्री ने कहा कि अप्राकृतिक रूप से बदलती आबादी देश की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और आदिवासी समाज के संरक्षण के लिए एक गंभीर चुनौती है। गिरिडीह में आज जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पानी, बिजली और शहर की सफाई का मुद्दा मुख्य रूप से छाया रहा। केंद्रीय मंत्री ने जिले में चल रही विकास योजनाओं में तेजी लाने और अधूरी सड़कों के मामले की जांच करने के निर्देश दिए।
2: लगभग 7-8 सड़क और ये कई बार ये चर्चा हुई है और इसके तहत कमेटी इस बार जैसे डीसी को कहा गया है कि इसकी जितना जल्द हो सके जांच करके आप भेजें रिपोर्ट। जो काम नहीं कर रही है वैसे जो कॉन्ट्रैक्टर है निश्चित रूप से उसे ब्लैकलिस्ट करना चाहिए और वैसे लोगों को आइंदा से भविष्य में काम न मिले इस पर कार्रवाई करनी चाहिए।
1: बैठक के बाद राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि विकास कार्यों की कमियों को जल्द दूर किया जाएगा।
3: तमाम योजनाओं की समीक्षा की गई, उस योजनाओं की प्रगति संतोषप्रद है। तमाम विभागों को निर्देशित किया गया और मैं यह मानता हूं कि इस बैठक के फलाफल जिले के लिए बेहतर है।
1: पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। रांची में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल कॉरपोरेशन में नियमों को ताक पर रखकर चहेते अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया गया है। उन्होंने वर्ष 2026 में हुए 80 करोड़ रुपए के एम्बुलेंस टेंडर में भी भारी गड़बड़ी का दावा किया है। श्री मरांडी ने ट्रेजरी घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि जांच के बावजूद बड़े अधिकारियों को बचाया जा रहा है।
4: राज्य में जो बैठी हुई सरकार है काम नहीं करती बल्कि सरकार गंवाने में लगी। आप सबके ध्यान में है ट्रेजरी घोटाला जो लगातार जिसके चलते पैसे की जो निकासी हो रही है। सरकार जांच करा रही है, फलाफल क्या निकलेगा नहीं पता है क्योंकि उम्मीद नहीं कर सकते सरकार से, क्योंकि ये जो वर्तमान सरकार जब वही सारे पदाधिकारी पदस्थापित रहेंगे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर करप्शन कैसे समाप्त।
1: रांची में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। संगठन ने झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल में फैले भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने आरोप लगाया कि काउंसिल में छात्रों से नामांकन और परीक्षा के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है।
5: फार्मेसी एक्ट अगर 2015 से देश भर में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से लागू हुआ है तो आखिर झारखंड में वो एक्ट क्यों नहीं लागू, इसका भी जवाब राज्य सरकार को देना चाहिए। और जिस प्रकार से झारखंड

0: में जो चल रहा है, झारखंडी बच्चों के जो सपने बेचने का काम कर रहे हैं, हम उनकी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों और नए वर्ष की 2026-27 की कार्य योजना पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने और सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की संख्या बढ़ाकर 5,000 करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं और बच्चों से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सामाजिक सुरक्षा और कुपोषण उन्मूलन योजनाओं का लाभ समय पर जरूरतमंदों तक पहुँचाया जाए। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण के तहत चलाई जा रही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड की औलंजा पंचायत में इस योजना ने गरीब महिलाओं को लकड़ी के चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाई है।
2: हमको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, उसमें हमको गैस सिलेंडर मिला है, चूल्हा भी मिला है, उस पर हम लोग खाना बनाते हैं। और अब है कि गैस पे खाना बनाते हैं तो हम लोग का समय भी बचता है, बच्चे लोग को टाइम पर हम लोग कुछ भी बना के दे सकते हैं, लंच वगैरह भी देते हैं।
3: गैस अब मिल गया तो उससे समय भी बचता है, खाना जल्दी बनता है, बच्चा सबको समय से खाना दे पाते हैं।
4: जाते थे पहले लकड़ी झुड़ी तोड़ के आना पड़ता था, अब गैस मिल गया तो बहुत ही आराम है खाना बनाने में, बना के आराम से खा सकते हैं, खा रहे हैं।
1: इधर रांची में भी इस योजना के बाद महिलाओं को पारंपरिक चूल्हे की परेशानियों से बड़ी राहत मिली है। अब गैस पर खाना बनाने से महिलाओं का समय आधा से भी कम लग रहा है। इस बचे हुए समय का उपयोग महिलाएं अन्य कार्यों और स्वरोजगार में कर रही हैं।
5: हम पारो देवी और गैस भी उठाते हैं और सरकार घर दिया है, राशन देता है, सब सुविधा है। हम गैस उठाते हैं हर महीना, गैस पर खाना उना बनाते हैं, लकड़ी में नहीं बनाते हैं, जब से गैस मिला है गैसे बनाते हैं।
1: खूंटी पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत लोगों को खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें वापस लौटाए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में एसपी ऋषभ गर्ग ने कुल 56 लोगों को उनके गुम हुए मोबाइल फोन सौंपे। जन शिकायत सेल और टेक्निकल टीम की मदद से इन फोनों को खोजा गया था। बकरीद त्योहार को शांति और भाईचारे के साथ मनाने के लिए राज्य भर में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। खूंटी नगर भवन में आयोजित जिला शांति समिति की बैठक में उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन और एसपी ऋषभ गर्ग ने सभी समुदायों से संवाद किया। प्रशासन ने मस्जिदों में बिजली, पानी और साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर पाकुड़ में उपायुक्त मेघा भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में 28 मई से भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के कारण राज्य के कई जिलों में बारिश होगी, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विभाग ने कल राज्य के 11 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के 8 खिलाड़ियों के साथ भारतीय अंडर 18 महिला और पुरुष हॉकी टीमें एशिया कप 2026 में हिस्सा लेने के लिए जापान रवाना हो गई है। जापान में 29 मई से 6 जून तक आयोजित होने वाले इस बड़े टूर्नामेंट में भारतीय टीमें खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। आपको बता दें कि भारतीय महिला टीम में झारखंड की 6 प्रतिभावान महिला खिलाड़ियों और पुरुष टीम में 2 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने अवैध घुसपैठ और आबादी में बदलाव की जांच के लिए की बड़ी पहल। राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक ढांचे पर खतरों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित। गिरिडीह में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में हुई दिशा की महत्वपूर्ण बैठक, विकास कार्यों में तेजी लाने के

0: दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने की शिक्षा विभाग की समीक्षा, सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंस की संख्या बढ़ाने के निर्देश, महिला और बाल विकास विभाग की योजनाओं का भी लिया जायजा। राज्य के 11 जिलों में कल तेज आंधी और बारिश, वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी, 28 मई से भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद। और राज्य के 8 खिलाड़ियों के साथ भारतीय अंडर 18 हॉकी टीमें एशिया कप के लिए जापान रवाना, महिला टीम में 6 और पुरुष टीम में राज्य के 2 खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे रामगढ़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे रामगढ़ संवाददाता।
1: झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री दीपक रोशन ने बीते दिनों रामगढ़ व्यवहार न्यायालय में शिरकत किया। न्यायालय परिसर पहुंचने पर जिला प्रशासन एवं न्यायालय परिवार द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया तथा गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। मौके पर जोनल जज रामगढ़ सह एडमिनिस्ट्रेटिव जज रामगढ़ न्यायाधीश दीपक रोशन, न्यायाधीश हाईकोर्ट झारखंड ने बताया कि वनरेबल विटनेस जो होते हैं वैसे केस जिनको सोसाइटी के सामने लाने से मना किया जाता है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ही आदेश निर्गत किए थे।
2: यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज का अभाव था, जो वल्नरेबल विटनेस जो होते हैं, ये उस तरह के विटनेस होते हैं एक जो सोसाइटी के सामने जिसको लाने से मना किया गया, जैसे पॉक्सो एक्ट के विक्टिम्स या 376 जो ओरिजिनल था उसके विक्टिम्स, जिससे जिस जो अगर आ जाएंगे तो हमारा सोसाइटी अभी भी वो नहीं है जो कि ऊपर माने बहुत ज़्यादा ओपन है, वो अभी भी विक्टिम को ही एक्यूज समझता है।
1: न्यायालय में पेपरलेस वर्क एवं लंबित मामलों का त्वरित गति से निष्पादन जैसे प्रश्नों के जवाब में न्यायाधीश ने बताया कि पेपरलेस का काम अब न्यायालय में शुरू हो गया है। प्रत्येक जज अपने अपने कामों को अगर करे तो लंबित मामले घटेंगे।
2: पेपरलेस काम तो धीरे धीरे अब हो ही रहा है, शुरू हो गया है। लंबित मामले में मैं यही कहना चाहूँगा, हर एक जज अपना अपना काम करे तो लंबित मामले थोड़े घटेंगे। और दूसरा, केस तो घर से शुरू हो रहा है, हस्बैंड वाइफ का केस मैट्रिमोनियल 17% अभी पूरे हिंदुस्तान में, उसका सरकार भी कोई दोषी नहीं है और जजेस भी दोषी नहीं।
1: अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर रामगढ़ के सदर अस्पताल में पिछले दिनों रामगढ़ विधायक ममता देवी एवं सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार के द्वारा नर्सों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर रामगढ़ सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि हमारे रामगढ़ जिले में प्रतिमा 300 से ज्यादा सिजेरियन ऑपरेशन होते रहते हैं, जिनका स्क्रीनिंग फर्स्ट हैंड में यह हमारी नर्सें ही करती हैं। हमारे अस्पताल को जितने भी पुरस्कार मिलते हैं उसमें इन नर्सों का महत्वपूर्ण योगदान होता है।
3: विश्व नर्सिंग दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, स्वास्थ्य विभाग अति संवेदना के साथ लोगों से बातचीत करते हुए उनकी तकलीफ में उनकी बातों को सुनना और सेवा देना, तो संवेदना के साथ सेवा देने वाले इस विभाग में जो कुछ भी हमने उपलब्धियां की, उस सेवा में जो सफलताएं मिली उसकी रीढ़, उसकी बुनियाद हमारी बहनें जो ANM है, GNM है, स्टाफ नर्स हैं, ये लोग हैं।
1: मौके पर पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित विभिन्न अपराधों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पूरे जिले में प्रहरी पहल की शुरुआत की गई है।
4: इस पहल के तीन हिस्सा हैं, पैदल गश्ती, अड्डेबाजी के विरुद्ध अभियान एवं एंटी क्राइम चेकिंग।
1: रामगढ़ पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत के ताबड़तोड़ कार्रवाई एवं विशेष पहल अपराध नियंत्रण में सहायक सिद्ध हुआ है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़।
0: अभी आप सुन रहे थे रामगढ़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे थे हमारे रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:17 होने को हैं। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद।

कार्यक्रम आपकी पसंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी पसंद में सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं फिल्म नमक हलाल का ये गीत आशा भोसले की आवाज़ में। बप्पी लहरी का संगीत है और इस गीत को सुनना चाहते हैं संतोष कुमार भगत, श्रीमती बासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, मास्टर आयुष भगत, राजकुमार भगत, ये सब हैं गांव चांदपुर पोटका से। कॉलेज रोड घाटशिला से सोना रूपा, मोनिका, शिवम, मौसमी, संतोष और आनंद। आमना टोला चाईबासा से रविंद्र कुमार सिन्हा, हर्ष राज सिन्हा और पूनम नारायण। तूरी टोला चाईबासा से मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, रोहित ठाकुर, संगीता देवी, लाडो, हरी, खुशी कुमारी, रिया कुमारी और अर्पिता कुमारी। आमना टोला चाईबासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, शीतल गुप्ता और अभिषेक सोनू। चलिए इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म नमक हलाल का ये गीत आशा भोसले की आवाज़ में।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, फिल्म का नाम है नमक हराम। किशोर कुमार की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है राहुल देव वर्मन का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं चांडिल ग्राम हारूडी से तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनमहनी महतो, मनोरमा और दीनबंधु महतो। ग्राम उघड़िया से

नायडू महतो, उषा महतो, प्रिया महतो, डोली महतो, तरुण महतो एवं खेत्रोस मन साहू, कैलाश बाबा और बाकी परिवार सदस्य के। सराकेला पाड़ापुर देशावली ग्राम पहाड़पुर से शिवम शिवाजी मुंडरी, सुरुमानी मुंडरी, हीरामानी मुंडरी, हेमांती मुंडरी, डोबरो मुंडरी, साजन मुंडरी, सिद्धेश्वर मुंडरी, पाड़ापुर शिवाजी, डोबरो मुकेश, कुशल मुंडरी, जानम से मुंडरी, सिद्धि बोस, सोना बाबू सोना और FM शिवा मुंडरी। चलिए इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं नमक हराम फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं नसीब फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज़ में। इस गीत को सुनना चाहते हैं अस्तुपुरा जिला मऊ यूपी से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद। बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, शाइना, विशाल मिगलानी, सुप्रिया, अनमोल धर्मपाल, महावीर संधू और रमेश मिगलानी। चलिए, इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत आपको हम सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है न्यू दिल्ली, किशोर कुमार की आवाज़ है। और इस गीत को सुनना चाहते हैं दादरी केट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा। गांव दलाई किला पोस्ट पदमपुर जिला सरायकेला से लक्ष्मण सोई, बिरसा सोई, राज सोई, अनीता सोई, मनीषा सोई, पूनम सोई और समस्त सोई परिवार। कुचाई बिद्री से केपी सोई, दुर्गामती, सरिता, रेशमी, राजकुमारी, विशाल, मुन्ना और सन्नी। ग्राम सूराबेड़ा से बासी सरदार, धनी सरदार, कमल सरदार, सुखमती सरदार, रमेश, अंशु और बीरू सरदार। मोहल्डिया सोनवा से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी, वंदनी, संतोषी, दीपक, राहुल, बिट्टू, आयुष, गीतेश, अनुतनु, डिस्को महतो, भाई नंदू महतो। मेन रोड सोनवा से गुरुचरण नायक, अनसुईया नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, पिनाक प्रधान, तनुश्री प्रधान और नीलपानी प्रधान। चलिए इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं न्यू दिल्ली फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
3: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
4: बड़ा परिवार जो तो बनवा इन मरन बेटा क्रांति बेसरा आले मगे नहर में ना बोले नुकन परिस्थिति रे बोले सब उड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे हम बोले रुड़ तबन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
5: वरना मंगलोर आको गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आऊ का कहाँ बना है वो लोग आऊ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
6: नाम है रनबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आई में हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
7: मुकुम बुरन सिंह तमसाय अनिता तमसाय भरूपा सेना करना ऐसे दुकुर मिना जापा में रिया तपा में रिया वाह बेटा मिका
8: अन्याम तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्याम हम दो कोदमरी कोड़ा रो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा दोनों में बुरी बुरी ने बागिया तो कि दोनों से यार फी कोलो पुलिस कोलो में लड़ाई चलाओ तमे बुरुरम गई हैं तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काको मेल मिया
9: अलिंग मुनि सुरन पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिने रो जिता हुरा रे मिने रो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आ गया बेटा हुरा का अली आया न तुम ते ना मिल आप ही लेता ना।
3: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
10: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: ಸ್ವಯಂಗೆ ಕಟ್ಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: श्रोताओं, इन महत्वपूर्ण संदेशों के बाद आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम आपकी पसंद में. आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ. अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है निशान. लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं, गुलशन बावरा के बोल हैं, संगीत है राजेश रोशन का. इस गीत को सुनना चाहते हैं सरगुजा मैन पार्ट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिपा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वाली डोम, कुमारी डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अक्रम आसमा बेलदार, उल्ला आसमा बेलदार, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा, लक्षणपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, मोपका भाटापारा से भेवेंद्र नाथ साहू, लक्की हर्षित, सुमित्रा साहू. चलें, इन सब की पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म निशान का ये गीत.

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, फिल्म का नाम है पड़ोसन। किशोर कुमार, मन्ना डे और महमूद की आवाजें हैं। इस गीत को सुनना चाहते हैं तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहत मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परू मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारेकर। मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरशद तड़वी, आरिश अरसलान, यूनुस तड़वी। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहत जिला बुरहानपुर से मुशरफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, बीटिया रोजमीन तड़वी, तैमूर तड़वी और समस्त तड़वी परिवार। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा, साहिल कांगड़ा। चलिए इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म पड़ोसन का ये गीत।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम आपके पसंद अब यहीं संपन्न होता है। आशा करती हूँ आपको सभी गीत पसंद आए होंगे। अब मुझे इस कार्यक्रम से इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा।

श्रोताओं, इस समय रात्रि के 8 बज रहे हैं। शुरू करते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम रजनीगंधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भर नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, सबसे पहले पेश कर रहे हैं थानेदार फिल्म का ये नगमा, बप्पी लहरी और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में अनजान के बोल हैं और बप्पी लहरी का संगीत है। इस गीत को सुनना चाहते हैं औरंगाबाद से राजेश शाबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। सहावा टाउन जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक। कोटवा नारायणपुर बापापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। चलिए, इन सबकी पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म थानेदार का ये नगमा।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा छवि के साथ। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, फिल्म का नाम है दो आंखें बारह हाथ। कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं। इस गीत को सुनना चाहते हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राहे, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, चांडी ग्राम हारूडे से तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनोरमा मनी महीन महतो और तीन बंधु महतो, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, कोटवा नारायणपुर बापापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबेहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म दो आंखें बारह हाथ का ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा छवि के साथ। अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है डुप्लीकेट। कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ें हैं, अनु मलिक का संगीत है। और इस गीत को सुनना चाहते हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरभ शर्मा, आदर्श नगर मौलट पंजाब से, ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर। कस्बा बरड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, प्रियंका, जय प्रकाश, राहुल, नूर, नमन, सिमरत कौर, कीरत, गुरशब्द और राहुल। चलिए, इन सब के पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म डुप्लीकेट का ये गीत।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोत,
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीकंधा। अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है 10। केके और शान की आवाज़ है, पंची जालून के बोल हैं और संगीत है विशाल शेखर का। इस गीत को सुनना चाहते हैं बड़ा निमडी चाईबासा से तुलसी पथिक, मीला देवी, बजरंगी ठाकुर, मितु रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार और शुभम कुमार। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सांपले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। गांधी चौक पंजाब से, रोपड़ से हैं हरदेव मिका, बलविंदर बीरक, जेतिंग बीरक और मिका बीरक। इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनाते हैं फिल्म 10 का ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा छवि के साथ। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, फिल्म का नाम है फिजा। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं, गुलजार के बोल हैं। इस गीत को सुनना चाहते हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, लितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बपेश पवार, डैनी पवार और मास्टर मनीष। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, करनाल से जग्गी दुआ। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवेनकर और धीरज सवासरे। इन सबकी फरमाइश पर आइए सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा। अभी आप सुन रहे थे कभी खुशी कभी गम का ये गीत अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ में। अनिल पांडे के बोल थे और संगीत था संदेश शांडली का। कार्यक्रम के अंत में आपको हम सुनवा रहे हैं फिल्म खाके का ये गीत सोनू निगम और श्रेय घोषाल की आवाज़ में। समीर के बोल हैं, इस गीत को सुनना चाहते हैं शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता आदित्य कुमार और श्री श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवली श्रीवास्तव।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम रजनीकंठा अब यही संपन्न होता है। अब छवि को इजाजत दीजिए, नमस्कार। अब आपको ले चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: लिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की, आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे, ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी

0: से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
0: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
3: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ।
4: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
3: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14

0: समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9.

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं महताब आलम। मरकज ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात के बाइस होने वाली आबादियाती तब्दीली के चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। अमित शाह ने कहा है कि एंटी ड्रोन निजाम 6 महीने के अंदर अंदर नसब कर दिए जाएंगे। क्वाड मुल्कों ने भारत बहरुल काहिल समंदरी निगरानी ताउन का आगाज किया है। उन्होंने हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत की है। हुकूमत ने प्याज की कम अज कम यकीनी खरीदारी की कीमत MAPP को 1,270 रुपये फी क्विंटल से बढ़ाकर 1,580 रुपये फी क्विंटल कर दिया है। खेलकूद के वजीर मनसुख मांडविया ने मुस्तकबिल के ओलंपिक गेम्स में योग आसन को शामिल करने पर जोर दिया है। अहमदाबाद अगले महीने पहले आलमी योग आसन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्रमोहन ने वियतनाम में मर्दों के फ्री स्टाइल मुकाबले में तलाई तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। मरकज ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात के बाइस होने वाली आबादियाती तब्दीली के चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में मरकजी वजीरे दाखला अमित शाह ने आज बताया कि इस कमेटी की सदारत सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नौलेकर करेंगे। मर्दुमशुमारी के कमिश्नर के साथ साथ साबिक IAS अफसर दुर्गा प्रसाद मिश्रा, साबिक IPS अफसर बालाजी श्रीवास्तव और माहिर माशियात डॉक्टर शमिका रवि को कमेटी के रुकन की हैसियत से मुकर्रर किया गया है। वजारत दाखिला में ज्वाइंट सेक्रेटरी गैर मुल्क की एक कमेटी में मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। जनाब शाह ने कहा कि दरअंदाजी और दीगर वजूहात गैर कुदरती आबादियाती तब्दीली का बाइस बन रहे हैं, जो कि किसी भी मुल्क के हाल और मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गए हैं। उन्होंने कहा कि आबादियाती तब्दीली एक संजीदा मामला है जो न सिर्फ इकतदार आला बल्कि कौमी सलामती, अमन कानून, समाजी ढांचे में बड़ी तब्दीली और कबायली माशरे के तहफ्फुज़ के लिए भी एक संजीदा मामला है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये आला सतही कमेटी पूरे भारत में होने वाली आबादियाती तब्दीली का जामे तौर पर जायजा लेगी, जो गैर कानूनी इमिग्रेशन और दीगर गैर फितरी वजूहात के बायस हो रही है। ये कमेटी मजहब और समाजी कम्युनिटीज की सतहों पर होने वाली गैर मामूली आबादी की मुंतकली के तौर तरीकों का भी जायजा लेगी और इसके लिए एक मंसूबाबंद और मुकर्रर वक्त में हासिल होने वाले हल पेश करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता साल लाल किले से यौम आज़ादी की अपनी तकरीर में आबादियाती तब्दीली से मुतालिक आला सतही कमेटी के बारे में ऐलान किया था।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: ये कमेटी एक साल के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अगर जरूरी हुआ तो इस कमेटी की मुद्दतकार में 6 महीने तक की तौसी की जा सकती है। आकाशवाणी से विष्णु की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने आज कहा कि हुकूमत ड्रोन्स के जरिए मनशियात और हथियारों की स्मगलिंग को खत्म करने की गरज से आइंदा 6 महीनों के अंदर अंदर एंटी ड्रोन निजाम नसब कर रही है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सरहदी चौकी पर सरहदी हिफाजती फोर्स के अमले से खिताब करते हुए वजीर दाखला ने कहा कि सरहद पार से उभरने वाले खतरात तो अहमियत के हामिल हैं ही, अलबत्ता मुल्क के अंदर इस तरह के खतरात की मदद करने वाले अंदरूनी अनासिर पर भी इतनी ही तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो इस तरह के मामलात में मुलविस हों उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने ऑपरेशन सिंध

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम मंथन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। भारत में पोषण से स्वास्थ्य को मजबूत करने की दिशा में हाल ही में सेहत मिशन की शुरुआत हुई और आज हम सेहत मिशन के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आज हम सेहत मिशन पर दो विशेषज्ञों से विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में उप महानिदेशक डॉक्टर डीके यादव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर प्रियंका बंसल। तो हाल ही में लॉन्च हुए सेहत मिशन पर हम बात करने के लिए अब सीधे जुड़ रहे हैं डॉक्टर डीके यादव, फसल विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका।
1: धन्यवाद।
0: साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सेहत का पूरा फुल फॉर्म है और इसमें जो हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि हम किस तरह से खेती के जरिए, फसलों के जरिए सेहत में पोषक तत्वों को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं सेहत मिशन में खेती के रोल को और किस तरह से इसमें आपकी भूमिका है?
1: सेहत मिशन का जिस तरह से आपने भी जो इलोबोरेट करके बताया कि साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप जानते हैं भली भांति जो हमारा भोजन का जितना भी सप्लाई है उसमें कृषि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और हम विभिन्न खाद्य फसलों में, जो बागवानी फसलों में किस्मों का विकास करते हैं जो हमारे भोजन का हिस्सा बनती है, तो उनके द्वारा किस तरह से हम हमारे हेल्थ को सुधार सकें, किस तरह से आम जन का जो स्वास्थ्य संबंधित बहुत सी, जैसे हम बात करें कुपोषण की समस्या है, न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है, तो एक बड़ी भारी, ना कि भारत में पूरे विश्व में एक बड़ी समस्या है, तो उस समस्या को कृषि के द्वारा किस तरह से हम एक तरह से उसको एड्रेस करें, क्योंकि हम देखते हैं कि जो पोषण कार्यक्रमों के द्वारा और जिस तरह का सेहत पर जो आम जन के असर पड़ता है तो उससे देश को काफी, जो जीडीपी में काफी नुकसान होता है, और उस नुकसान को किस तरह से कम करें और जो भी हमारे आम जन है, चाहे वो खेतिहर मजदूर है चाहे किसान है, सभी को कहीं ना कहीं इम्बेलेंस न्यूट्रिएंट्स की वजह से, कुपोषण की वजह से उनकी जो क्षमता है या बीमारी पकड़ने की जिस तरह की एक टेंडेंसी रहती है वो अधिक रहती है। तो इस मिशन का मेन मुद्दा यही है कि जैसे जो कृषि में हमने जिस तरह से पोषण युक्त विभिन्न किस्में उत्पन्न की, उन किस्मों को किस तरह से हम आमजन तक ले जाएं और उसको ले जाने के बाद उसका क्या इम्पैक्ट होता है। सेहत मिशन के द्वारा जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद है, तो उन दोनों का जो एक कोलैबोरेशन हुआ है, तो उसमें एक तरह से हमने चार पांच मुद्दे उसमें रखे हैं, जिसमें एक जो मुख्य मुद्दा है, इसमें एक कंपोनेंट है कि पौधों और पशुओं से मिलने वाले बायोफोर्टिफाइड प्रोडक्ट का स्वास्थ्य पर असर। तो इसमें जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो बायोफोर्टिफिकेशन का कार्य सिर्फ फसलों में ही नहीं है, जैसे खाद्य फसलों और बागवानी में, उसमें हम पशुओं में, मछलियों में भी उस पर कार्य कर रहे हैं, और उससे किस तरह से हमारे दिन प्रतिदिन के भोजन में जो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो, तो उसके लिए इसमें अध्ययन हम ICMR के साथ मिलकर करेंगे। तो उसमें जो हमारा मुख्य जो उद्देश्य होगा कि किस तरह से हम ज्यादा बायोफोर्टिफाइड किस्में पैदा करें और इन किस्मों को किस तरह से हम आम जन तक जो हमारी फूड चेन में ले जाएं। उसके बाद जो ICMR का जो मेन मुद्दा, जो उनके रिसर्च के कंपोनेंट रहेंगे, उसमें एक बायो अवेलेबिलिटी का इश्यू होता है कि आपने किसी किस्म में आपने कहा कि जो प्रोटीन है वो 12% है, गेहूं में जैसे हम कहते हैं 12.5% है और आमतौर पर जो गेहूं में प्रोटीन 8-9% होता है, तो 12.5% की बायो अवेलेबिलिटी कितनी है कि भाई वो जो भी कंज्यूमर उसको खाता है उसका एक्चुअल में अवेलेबिलिटी उसको कितनी होती है, उस तरह की स्टडी हमारे सिस्टम से हम नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से बायोमार्कर का रिस्पॉन्स क्या आता है और उसका ओवरऑल हेल्थ पर उनके नतीजे जो आते हैं उनका मूल्यांकन कैसे करें कि आपका नॉर्मल भोजन करता है और उसमें जो बायोफोर्टिफाइड जो भोजन करता है तो उससे कितना उसके हेल्थ पर उसका असर पड़ता है, उसकी स्टडीज हम ICMR के साथ मिलकर साइंटिफिक तरीके से करेंगे।
0: जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि वो कौन सी किस्में या फसलें हैं जिन पर काम हो रहा है जिससे कि ज्यादा मात्रा में पोषण मिल सकता है।

0: और बायोफोर्टिफाइड फसलों के उन किस्मों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, और खासतौर पर किसान उन फसलों को पैदा करने की ओर प्रोत्साहित हों इस बारे में भी क्या कुछ ICAR की तरफ से कुछ काम हो रहा है?
1: हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने ये प्रश्न पूछा। अभी हम हाल में जो है 16 खाद्यान्न फसलों में और 16 ही बागवानी फसलों में बायोफोर्टिफिकेशन पर कार्य कर रहे हैं। तो जो उसमें मुख्य उद्देश्य यही है कि जिन जिन फसलों में, जैसे जो आमतौर पर जितने भी पोषक तत्व, जैसे प्रोटीन है, आयरन, जिंक है, और कुछ एक में जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं उनको भी रिमूव करने का, क्योंकि उनका भी स्वास्थ्य पर जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो अभी तक हमने पिछले जो 11 वर्षों में 203 बायोफोर्टिफाइड किस्मों का विकास किया, जिसमें जैसे मैंने बताया 16 खाद्य फसलों की 187 किस्में हैं, जिसमें चावल की 16 किस्में हैं, गेहूं की 70 हैं, जौ की 1 है, मक्का की 43 हाइब्रिड्स हैं, बाजरा के 18 हाइब्रिड्स हैं, रागी के 4 हैं, कुटकी की 2 किस्में हैं, कंगनी की 1 है और मसूर की 2 तथा चना और फावा बीन की 1-1 किस्म है।
0: अंत में थोड़ा सा ये भी बताएं कि किसानों तक इनके बीजों को पहुंचाने के लिए, किसान इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित हों, इस मामले में क्या कुछ किया जा रहा है?
1: इस मामले में हमने निश्चित रूप से पिछले ये माननीय आपके 8-9 वर्षों में काफी प्रयास किए। तो बीज का, जब किसान तक बीज जाता है, उसकी पहली श्रेणी होती है प्रजनक बीज का उत्पादन, जो कि हमें विभिन्न राज्यों से और सीड प्रोडक्शन की एजेंसी से उसको ICAR में प्राप्त होता है मिनिस्ट्री के द्वारा, कृषि मंत्रालय के द्वारा। तो उनको हम जितनी बायोफोर्टिफाइड किस्में हैं, जब हम इसका स्टेट का सीड रोलिंग प्लान बनाते हैं, जो ब्रीडर सीड के लिए जब डिस्कशन होता है स्टेट्स की सीड एजेंसी, प्राइवेट सेक्टर और जितने भी जो बीज उत्पादक होते हैं, पब्लिक NGO हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, तो हम उनसे डिस्कस करते हैं और हमारा एक यही प्रयास रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा बायोफोर्टिफाइड किस्मों के इंडेंट दें ब्रीड सीड उत्पादन के लिए। उसके अलावा जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का, उसमें भी NFSM में भी जो बायोफोर्टिफाइड किस्मों के लिए एक विशेष उसको प्रोत्साहन देने के लिए एक घटक रखा गया है, ताकि किसानों के पास ज्यादा से ज्यादा उसका बीज पहुंचे। फार्मर्स के लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम जितने भी दूरदर्शन के द्वारा, रेडियो के माध्यम से और हमारे KVK जो काम करते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, कृषि विश्वविद्यालय, ICAR के इंस्टीट्यूट, तो हमारा प्रयास रहता है कि हम बायोफोर्टिफाइड किस्मों के बारे में किसानों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें और उनका बीज पैदा कर किसानों तक पहुंचाएं।
0: बिल्कुल, तो ICMR और ICAR की जो ये संयुक्त पहल है प्रिवेंटिव हेल्थ की, कि पोषण के जरिए हम अपने स्वास्थ्य को मजबूत करें देश भर में, तो इस पहल के हमें निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में वो सकारात्मक नतीजे जरूर दिखेंगे, जिस तरह से अभी हमने डॉक्टर डीके यादव के साथ चर्चा की कि किस तरह से बायो फोर्टिफाइड फसलों के जरिए हमारे शरीर तक पोषण को पहुंचाने का काम अब तेजी से हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर डीके यादव, आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को सेहत मिशन के जो एग्रीकल्चर का पहलू है, खेती का पहलू है, उसके बारे में विस्तार से बताया।
1: धन्यवाद।
0: हम बात करने जा रहे हैं इस सेहत मिशन पर डॉक्टर प्रियंका बंसल के साथ। डॉक्टर प्रियंका बंसल ICMR में सीनियर साइंटिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
0: डॉक्टर प्रियंका बंसल। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि सेहत मिशन में प्रिवेंटिव हेल्थ पर ज्यादा फोकस किया गया है, कि बीमारी से पहले ही देश इतना स्वस्थ हो जाए कि पूर्ण पोषण के जरिए गंभीर बीमारियों तक हम ना पहुंचे, तो कैसे आप देखती हैं इस मिशन के मकसद को?
2: आपने बिल्कुल सही बोला है कि सेहत मिशन पे हम प्रिवेंटिव की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, जहां पे हम ये कह रहे हैं कि लोग जहां बीमार होने से पहले ही हम किस तरीके से उनके लाइफस्टाइल में, उनके जीवन के तरीके में हम चेंजेस ला पाए जो उनको हेल्थ की तरफ ले जाए। तो अगर मैं सरल भाषा में बोलूं तो जो ये सेहत मिशन है, इसकी सोच बहुत सरल है, जो कहती है कि जैसा भोजन वैसा मन और वैसा तन। तो हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता के लिए, जो हमारे देश के लोग हैं, हम उनकी थाली को अधिक पौष्टिक कैसे बना पाएं। तो जो हम खाना खाते हैं, हम उसी खाने को, उनको कुछ अलग से नहीं करना पड़े, मगर हम उसी खाने में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषण तत्व हैं, उसको कैसे बढ़ा पाएं। और इसी सोच के साथ ये सेहत मिशन स्टार्ट किया गया है, एक संयुक्त राष्ट्र का मिशन है, जिसमें ICAR जो है वो अपने बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स और अपनी फसलें बनाएंगे जिनमें पोषक तत्व ज्यादा हैं, और उन्हीं चीजों को हम, उनका जो वैज्ञानिक प्रमाण है कि उनका स्वास्थ्य पे लाभ क्या होता है, वो ICMR टेस्ट करेगा, और जिससे कि हमारे को पता चले कि कौन सा खाना, कौन सी क्रॉप, कौन सा इनोवेशन जो एग्रीकल्चर में हुआ है, हम उसको बेहतर हेल्थ के लिए यूज कर सकते हैं।
0: जी डॉक्टर प्रियंका बंसल, कुपोषण के

0: हैं और उसको कम कर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ ये भी एक सच बात है कि हमारे देश में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, मोटापा है, ये सब बढ़ रहा है। तो इन्हीं चीजों के लिए ये सेहत मिशन बना है। जैसे मैंने बोला कि इसमें हम क्या करेंगे, जो पोषक फसलें हैं, बेहतर आहार प्रणालियां हैं, इन सबको हम टेस्ट करेंगे और हम ये देखेंगे कि इनको हम अपने राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रभावी ढंग से कैसे शामिल कर सकते हैं। जो हमारे देश में इतने राष्ट्रीय कार्यक्रम है, चाहे वो कुपोषण को लेकर है, अनीमिया को लेकर है, उनमें हम क्या बदलाव ला सकते हैं फूड से रिलेटेड, जो कि सेहत हमें बताएगा और इससे हम अनीमिया, कुपोषण और गैर संचारी रोगों की रोकथाम में हमें मदद मिलेगी। तो सरल शब्दों में स्वस्थ खेत से स्वस्थ भारत हमारा मिशन है
1: जी। तो जो स्वास्थ्य के मानक है, हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले सालों में सेहत मिशन के जरिए उसमें हम सुधार देख पाएंगे, जिससे कि सूक्ष्म पोषण लोगों तक जब इस मिशन के जरिए पहुंचेगा तो क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है भविष्य में?
0: मुझे पक्का यकीन है कि इस मिशन से और इससे जो हम डेवलप कर पाएंगे फसलें या मॉडल, हम किस तरीके से फार्मर्स की हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं, किसान भाइयों की हम हेल्थ पे भी इस मिशन के अंडर काम कर रहे हैं, तो इससे जो मुझे लगता है कि एक तो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, जिसकी आपने भी बात की थी, चाहे वो आयरन हो, विटामिन डी है, कैल्शियम है, जिसमें हमारे देश में कई लोगों में कमी पाई जाती है, हम उसको एड्रेस कर पाएंगे। और अनीमिया या जो भी आप माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की बात करते हैं, वो हमें उस तरीके से दिखती नहीं है, मगर वो हमारी वर्क प्रोडक्टिविटी, हमारा जो डेली का रहना सहना, काम, इन सबको इफेक्ट करता है, उसको कम करता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हम ये मानते हैं कि इस मिशन से हम उसको रोक पाएंगे, उसको कम कर पाएंगे डेफिशिएंसी को। दूसरा, कुपोषण को हम इससे देख पाएंगे। और तीसरा जो हमारा बड़ा एक इसमें हम जो देख रहे हैं वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को। हम इसमें इस तरीके का देख रहे हैं कि क्या कोई फसल ऐसी है जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिससे आपका जो खून में शुगर की मात्रा है वो पता चलती है, वो आपकी कम रेज हो उसको खाने से, या फिर आपका जो रक्तचाप है वो कम हो उस चीज को खाने के लिए। तो हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हमारे देश की तरफ है, वो हम किस तरीके से कम कर पाए।
1: हमने अभी थोड़ी देर पहले बातचीत की थी ICAR के उप महानिदेशक, जिन्होंने हमें बताया था कि किस तरह से फसलों के जरिए पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जाएगा। हम ICMR की भूमिका के भी बारे में थोड़ा संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि तकनीक के स्तर पर या चिकित्सा के स्तर पर ICMR की क्या भूमिका होने वाली है इस मिशन में?
0: देखिए, जैसे कि आपको यादव सर ने बताया कि ICAR ने क्रॉप्स बनाए हैं, फसलें बनाई हैं, जो कि नॉर्मल फसलों से ज्यादा पौष्टिक हैं, मगर उनका जो हमारे देश में और हमारे देश के राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है उसमें वो नहीं आ पाए हैं अभी तक। उसका रीजन ये है कि उसके साथ वैज्ञानिक प्रमाण नहीं जुड़ पाया है कि इसका स्वास्थ्य में लाभ क्या है। कि फसल तो बन गई, मगर उनको लोगों को खिलाकर उसका जो असर देखना है कि क्या असर हुआ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे, कुपोषण पे, वो हमारे पास अभी सीमित है। तो इस मिशन में ICMR का रोल है वो वैज्ञानिक प्रमाण को निकालना, उसको एविडेंस को जनरेट करना कि इसका स्वास्थ्य लाभ क्या है। तो हमारी जो भूमिका है, क्योंकि ICMR का जो रोल है वो यही है कि हेल्थ का, स्वास्थ्य का एविडेंस जनरेट करना, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कितना खाना चाहिए, ये हम सेहत में इसी उस पे चलेंगे।
1: बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रियंका बंसल, आप कार्यक्रम में जुड़ी।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल News on AIR Official और हमारे मोबाइल ऐप News on AIR पर भी सुन सकते हैं।
2: मंथन।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 10 बज रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं गजलों का कार्यक्रम महफिल। गजलों के कार्यक्रम महफिल सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम पेश

श्रोताओं, आप सुन रहे थे अभी चंदन दास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में ये गज़ल। उसके पहले आपको हमने सुनवाया था पंकज उदास और चंदन दास के स्वर में। तो इन्हीं गज़लों के साथ आज का कार्यक्रम महफिल अब यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 10:30 होने वाले हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सुरों के रंग।

कार्यक्रम सुरों के रंग सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, सुरों के रंग कार्यक्रम में आज कुछ झूम जाने वाले गीतों को लेकर मैं आया हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको हम सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है खूबसूरत। बादशाह और आस्था की आवाज़ें हैं, तो चलिए इस गीत का आनंद हम सब मिलकर लें।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों की रात। अब अगला रंग यानी अगला गीत हम पेश कर रहे हैं। फिल्म का नाम है किक। योयो हनी सिंह और जैस्मिन सैंडल्स की आवाज़ है। इस गीत का आनंद हम लेते हैं। चलिए

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों के रंग। अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है कोई मिल गया। ताज श्रेयोनाती की आवाज़ है, इब्राहिम अश्क के बोल हैं और संगीत है राजेश रोशन का।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों के रंग। अब अगला रंग हम यानी अगला गीत सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है कल हो ना हो। वसुंधरा दास और केके की आवाज़ है, जावेद अख्तर के बोल हैं।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों के रंग। अगला रंग यानी अगला गीत हम सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है मैं हूं ना। अनु मलिक और के की आवाज़ है, जावेद अख्तर के बोल हैं, संगीत है अनु मलिक का।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का ये गीत अभिजीत और उदित नारायण की आवाजों में। माया गोविंद के बोल है, संगीत है अनु मलिक का।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम सुरों के रंग अब यहीं संपन्न होता है। अब छवि को इजाजत दीजिए, नमस्कार। अब आपको ले चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार बस कुछ ही पलों में।

0: के बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये बात कही।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड

0: ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। The Center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Nilokar. Census Commissioner, along with the former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1, in the Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in a process of installing anti-drone system within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sanchu border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said, while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country.
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार
1: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू रोल आउट एंटी ड्रोन सिस्टम फॉर ड्रोन्स एंड सिमिलर एरियल थ्रेट विद इन द नेक्स्ट 6 months. However, since these drones eventually land on Indian territories, we must remain highly vigilant about those who may use the materials carried by them for anti-national activities. Effective neutralization will require strong coordination with civil authorities and district police, along with prompt and result-oriented action at every level. Mr. Shah said strict legal action should be taken against those involved. He stressed that since the drones land in the Indian territory, close coordination with the local police and civil administration is essential to identify those receiving such consignments and to neutralize the threats effectively. External Affairs Minister Dr. S. J. Shankar chaired the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi, and U.S. Secretary of the State Marco Rubio attended the meeting. Addressing a joint press conference after the meeting, Dr. S. J. Shankar emphasized on further strengthening cooperation among the Quad nations in addition to assisting others. He said that the Quad nations are open societies who foster innovation and creativity in the quest of growth for prosperity. He also laid emphasis on zero tolerance for terrorism. Foreign Affairs Minister of Australia Penny Wong today called on Prime Minister Modi in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi discussed the growing India-Australia comprehensive strategic partnership in areas such as defence, trade, technology and ensuring supply chain resilience. The Prime Minister said India and Australia will work together to continue for the work for free, open, secure and prosperous Indo-Pacific. The Ministry of Railway has given its nod to start operations of the country's first hydrogen-powered 10-coach demo train. It will run at a maximum speed of 75 km per hour between Jind and Sonipat under the Northern Railway Zone. The train will use hydrogen fuel cells to generate power instead of diesel or electricity-based traction. The government has revised the minimum assured procurement price MAPP of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. In IPL cricket, Royal Challengers Bangalore have set a target of 255 runs against Gujarat Titans in qualifier 1 in Dharamshala. In reply, Gujarat Titans were 106 for 8 in 12.4 overs when reports last came in. And Gujarat Titans won the toss and elected to bat. And that's the end of the news bulletin.
3: श्रोताओं, आप सुन रहे थे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:53 पर पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे श्रोताओं, आप सुन रहे थे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः